मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले करते हैं देश वंदना। स्वर हैं रजनी शर्मा और अनिता जैन के।

शरणागति गति दो हे भगवान, शरणागति दो हे भगवान, पंचतत्व काया पावन कर, पंचामृत प्रदान करो हे भगवान। प्रस्तुत है हरिओम शरण और नंदनी शरण के स्वर में ये भजन।

हे प्रभु, ये नयन आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। हे प्रभु, हम आपका नमन करते हैं। आप हमें सद्मार्ग दिखाएं, आप हमारा कल्याण करें। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण वंदना। स्वर है विष्णु प्रसाद पांडे का।

0: वंदना। अभी आप भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: हानि और लाभ का अंतर हम सभी जानते हैं। अपने सभी क्रियाकलापों का निर्धारण भी हम इसी आधार पर करते हैं। हमारा व्यवहार यदि असंतुलित हो तो संबंधित व्यक्ति रुष्ट और असंतुष्ट हो जाता है, साथ ही हमारा असहयोगी और विरोधी बन जाता है। हम न्याय और कर्तव्य को समझें, अशुभ न सोचें और न ही अनुचित कदम उठाएं। इसी में हमारी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता है। कर्म का फल सुनिश्चित विधान है। आज का लिया हुआ ऋण कल चुकाना ही पड़ेगा। यह नहीं सोचा जा सकता है कि कर्ज के नाम पर लिया हुआ धन हमें मुफ्त में मिल गया। इसी प्रकार पाप का दंड आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। सरकार और समाज से यदि पाप को छिपा लिया जाए तो भी आत्मा और परमात्मा से उसे छिपा सकना संभव नहीं है। पापी मनुष्य एक क्षण भी शांति का अनुभव नहीं करता। समाज में कुकर्मियों का तिरस्कार और अविश्वास होता है। लोग उनका सहयोग समर्थन नहीं करते और संपर्क बनाने से बचना चाहते हैं। व्यभिचारी भी अपने घर में दूसरे व्यभिचारी का और चोर भी अपने घर में दूसरे चोर का प्रवेश नहीं होने देता, क्योंकि वह उसे अविश्वस्त मानता है और भीतर ही भीतर घृणा करता है। शरीर की लालसा और आवश्यकता को पूरा

0: शोक संताप से बचें, सत्परिणाम का आनंद लेने के लिए अपना मार्ग स्वयं बनाने में समर्थ हों। संसार में समय समय पर अनेक महापुरुष होते रहे हैं जिनके कारण समाज और देश की प्रतिष्ठा बढ़ी जिसमें उन्होंने जन्म लिया। राम के जन्म से अयोध्या का और कृष्ण के जन्म से मथुरा का गौरव बढ़ा। वैज्ञानिकों ने रेल, तार, रेडियो, बिजली, वायुयान, चिकित्सा आदि के आविष्कार किए, उनसे सारी मानव जाति को लाभ हुआ। हम जो कर्म करते हैं उनका फल हमें तो प्राप्त होता है, अन्यों को भी प्राप्त होता है। एक व्यक्ति ने कोई धर्मशाला बनवाई तो उस श्रेष्ठ कार्य का थोड़ा थोड़ा फल वे लोग भी प्राप्त करेंगे जो उसमें कुछ समय के लिए ठहरेंगे। उसका अप्रत्यक्ष लाभ धर्मशाला बनवाने वाले को होगा। इस प्रकार उस शुभ कार्य के फल में सामूहिक भाग स्पष्ट है। विद्यालय, औषधालय, कुआं, छात्रावास, गौशाला, अनाथालय आदि शुभ कार्य कर्ता अपने आत्मकल्याण के लिए करते हैं, पर उसका लाभ उन कार्यों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी मिलता है। वह कर्ता जिस जाति, समाज, संप्रदाय या देश से संबंधित होता है उसकी भी प्रशंसा होती है। कभी कभी कर्म फल में देर होती है। ईश्वर मनुष्य की बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि वह अपने कर्तव्य धर्म को समझने और निष्ठापूर्वक पालन करने योग्य विवेक बुद्धि संचित कर पाया है अथवा नहीं। यदि कर्म फल तुरंत नहीं मिलता तो यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले अथवा बुरे परिणाम से सदा के लिए बच गए। मनुष्य का गौरव इसी बात में है कि वे दंड भय से डरे बिना दुष्कर्मों से बचे और सत्कर्मों तक सीमित रहे। दंड के भय से विवेक से रहित पशुओं को भी अवांछनीय रास्ते पर चलने से रोका जा सकता है। एक गड़रिया लाठी के बल पर सैकड़ों भेड़ों को इच्छित रास्ते पर चलाने में सफल रहता है। जब झूठ बोलते ही जीभ में छाला पड़ जाते, चोरी करते ही हाथ में फोड़ा हो जाते, बेईमानी करते ही बुखार हो जाता, कुदृष्टि डालते ही आँख में दर्द होने लगते, कुविचार आते ही सिर में दर्द होने लगता, इस प्रकार दंड मिलने की व्यवस्था तुर्त फुर्त रहती तो किसी के लिए भी दुष्कर्म करना संभव न होता। व्यक्ति के सत्कर्मों का लाभ पूरे समाज को मिलता है, इसी प्रकार उसके दुष्कर्मों का परिणाम भी अन्यों को भुगतना पड़ता है। हमें अपने काम से काम, अपने मतलब से ही मतलब, यह कहने से काम नहीं चल सकता। ऐसा करने से बुरे लोगों का विरोध न हो सकेगा। वे मनमानी कर दुष्टता बढ़ाकर दिनों दिन अधिक भयंकर बनते जाएंगे। इसी प्रकार सज्जनों के कार्यों में प्रोत्साहन न दिया जाना, सहयोग न दिया जाना, जो सज्जन निराश होकर चुप बैठे रहेंगे और उनके कार्यों से अनेक व्यक्तियों को जो लाभ प्राप्त हो सकते थे वे नहीं हो सकेंगे। हमारा कर्तव्य है कि दूसरों के भले बुरे कार्यों की ओर भी ध्यान रखें।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख और स्वर था लिखराम साहू का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन। स्वर है सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण का। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन

का कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

जाने अब उर्धर हूँ ब्रह्म बरवानी सत्य सदा संतत सुज जाने।

0: सुनहु
1: के घर पार्वती के रूप में जहां में ऐसा मन लगा जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

अभी आप श्री रामचरितमानस का गायन सुन रहे थे। स्वर था सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण चंद्रेशि का। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चो गोठ।

0: नंगत किसी मन आत उपास 120 ICPL 88039 ट्राम्बे जवाहर 501 JKM 7 JKM 189 ICPH 267 हारक फेर जाना एचो नंगत किसी मनात उपास 120 ICPL 88049 ट्राम्बे जवाहर तुअर 501 JKM 7 JKM 189 ICPH 267 एदाय जाना कि कितरो बीज लागे से आरु बीज बीज उपचार चो उवाट कसन आए झपके पाक तो बीती किसी मंचो 20 ले 20 किलोग्राम आरु मंजी समयाने पाक तो किसी मंचो 15 ले 20 किलोग्राम के बुनतो राय बुनतो पहिल कांदुल के फफूंदी नाशक दवाई 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम ले बीज के किलो हिसाब ने उपचारित करतो राय एनी होलो ने विटावैक्स 2 ग्राम और 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा गोटो किलो हिसाब ने उपचारित करतो राय खत भात बुनतो समय 20 ले 25 किलोग्राम नत्रजन 40 ले 50 ग्राम स्फूर 20 ले 25 किलोग्राम गंधक अड़ी एकड़ गोटोक हेक्टर चो हिसाब ने जिंक सल्फेट के सरासरी भीकरलो ने उपजन सकत बाड़े दे एदा एचो मिंजानी चो गोट के वले जाना लाटा बूटा मन के मरलालो ने मरलातो काजे 20 ले 25 दिन ने पहिल हार मिंजानी करतो राय फिर फूल फूट तो पहिल दूसरा हार मिजानी करतो राय मिजानी करतु वाट के फेर हार जाना लाटा बूटा के मरला तो काचे 20 ले 25 दिन ने पहली हार मिजानी करतो राय फिर फूल फूट तो पहिल दूसरा हार मिजानी करतो राय एचो आउर गोटक उपाय आसे हुन आए नींदा नाशक पेंडीमिथालिन 25 किलोग्राम सक्रिय तत्व एके अड़ी एकड़ चो हिसाब ने बुने कर लो पाछे उपयोग करतो राय एके बुनी कर लो पाछे उपयोग ने आनलोक जाले पाछे मिजानी करूक नी लागे किसान दादा दीदी मन असन नंगत उन्नत वाटले कांदूल चो कमानी करून तुम्ही आगर ले आगर फायदा कमाऊक सकास।
1: अभी आप कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चो गोट सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 होने को हैं। प्रस्तुत है हुलहुली। इसमें हम सुनवा रहे हैं भीमसन देवपाड़। कलाकार हैं भारत और साथी।

हुलहुली में अभी आप भीमसन देवपाड़ सुन रहे थे। वादक कलाकार थे भारत और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की सभाओं में प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 पर आप सुन सकेंगे चित्र भारती। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज 8:30 पर रात्रि में आप सुन सकेंगे आज रात सुबह 8:30 पर सुनिएगा डॉक्टर की सलाह, और सुबह 9 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम बातों बातों में। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण में सुन सकेंगे भवानी झा से कहानी पाठ, और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा।

प्रातः 9:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। इसमें हम सुनवाएंगे फिल्म विरासत के कुछ गीत। प्रातः 10:00 सुनिएगा आजीचो सगा। इसमें आपको सुनाएंगे शेर सिंह चावला आंचला से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। 10:30 पर गुरदुम में आप सुन सकेंगे छत्तीसगढ़ी लोकगीत एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम होगा दिन में 11:00 जो केंद्रित होगा अभिनेत्री रेखा पर।

दिन में 11:30 पर गुलदस्ता में महकेंगे गैर फिल्मी गीत और गजलें। दिन में 12 बजे सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की, संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। दोपहर 1:05 पर सुनिएगा कृषि सामयिकी की बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण। 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान।

रात्रि 8 बजे जोनी उजर में आप सुन सकेंगे हल्बी लोकगीत। कलाकार होंगे सुकोलू राम और साथी। 8:30 पर सुनिएगा पिलामन काजे गोट हल्बी बोली में। प्रस्तुति होगी अनीता निर्मल की। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा आमचो रान आमचो जीवना, इसमें सुनिएगा भेंट वार्ता। रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे होंगे खगपति और साथी। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में संस्कृत और फिर हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रूपये से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं 25A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्वकप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

आज ये कार्यक्रम लेकर आपके साथ है आपका रेडियो मित्र सागर श्रीवास्तव। श्रोताओं, आज का दिन खास है। आज के दिन की शुरुआत साथ निभाने से होती है। आज है सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। आइए इस शब्द का कुछ महत्व समझें और इसका अर्थ क्या है ये जानें। श्रोताओं, विश्व शांति के लिए, समाज में एकजुटता लाने के लिए, कार्यों में गुणवत्ता के लिए, सामाजिक असमानता खत्म करने के लिए, सामाजिक एकीकरण बढ़ाने के लिए, एक लोकतांत्रिक समाज गठित करने के लिए और ऐसे ही सकारात्मक विचारों को असल रूप देने के लिए सहकारिता शब्द का महत्व होता है। ऐसी समितियां जिनके माध्यम से समाज के लिए विशेष निर्णय लिए जाते हैं, कुछ खास कार्य किए जाते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को एकजुट होकर पूरा किया जाता है। अनेक सहकारी समितियां आत्मनिर्भर, निष्पक्ष और पारदर्शी विचारों के साथ कार्य करती है। समाज में गरीब वर्ग और अशिक्षित लोगों को आज उत्थान की आवश्यकता है। ऐसे में अनेक ऐसी संस्थाएं भी हैं जो इस ओर भी प्रयास कर रही हैं। सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। सहकारी समितियों द्वारा बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जनता के आर्थिक उत्थान के लिए विचार को दुनिया के सामने रखने का उद्देश्य लेकर इस दिन को निर्धारित किया गया, यानी साथ मिलकर चलना, अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाना, भेदभाव समाप्त करना और सामाजिक उत्थान पर बल देना, ऐसे कुछ उद्देश्यों के साथ ये दिन निर्धारित किया जाता है। सहकारी संस्था क्या है? सहकारी संस्था ऐसे लोगों का एक समूह है जिनमें किसी व्यवसाय, सामाजिक कार्य या किसी आर्थिक निर्णय को साथ मिलकर किया जाता है और ये सभी सदस्य लाभ और हानि साथ मिलकर साझा करते हैं। शायद इसीलिए ऐसा एक दिन निर्धारित किया गया जिसे हम सब साथ मिलकर सार्थक बना सकें।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पहले आइए सुनते हैं कुछ आवश्यक संदेश।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
3: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
1: या फोन करें 222150 या 222400,
2: 222150 या 222400।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
7: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
8: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
7: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
9: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर

0: 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं कहानी पाठ। कहानीकार हैं भवानी झा।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं भवानी झा आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है अधूरा पुल। एक पहाड़ी गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। उसका सपना था कि वह अपने गांव को दुनिया से जोड़े। गांव के पास एक चौड़ी और तेज नदी बहती थी। बरसात के दिनों में नदी इतनी उफान पर होती थी कि लोग महीनों तक दूसरी तरफ नहीं जा पाते थे। गांव वाले सालों से एक पुल बनने की बात करते थे, लेकिन किसी ने कभी कोशिश नहीं की। राघव ने एक दिन घोषणा की, मैं इस नदी पर पुल बनवाऊंगा। लोग हंस पड़े, अरे बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए और तू करेगा? तेरे पास पैसा कहाँ है? यह सपना नहीं पागलपन है। लेकिन राघव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उसने काम शुरू किया। सुबह मजदूरी करता, शाम को नदी के किनारे पत्थर इकट्ठा करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, फटे कपड़े फट गए, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। धीरे धीरे कुछ युवा भी उसकी मदद करने लगे। एक साल बीत गया, पुल का केवल छोटा सा हिस्सा ही बन पाया। लोग फिर हंसने लगे, इतने समय में बस इतना ही? मरते दम तक भी पुल पूरा नहीं होगा। राघव को दुख हुआ, लेकिन वह चुपचाप काम करता रहा। दूसरे साल भयंकर बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई। महीनों की मेहनत से बना पुल का वह हिस्सा बह चुका था। सुबह जब राघव वहां पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने सब बिखरा पड़ा था। जिस काम में उसने 2 साल लगाए थे वह एक रात में खत्म हो गया था। उसका दिल टूट गया, वह नदी किनारे बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि लोग सही कहते थे, शायद वह यह काम कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसी समय एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? राघव ने सारी बात बता दी। साधु ने ध्यान से सुना और फिर नदी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम इस नदी को देख रहे हो? राघव ने कहा, हाँ। क्या यह नदी कितने समय से बह रही है, यह अंदाजा है तुम्हें? उसने कहा, हाँ, यह नदी कई सालों से बह रही होगी, शायद सैकड़ों सालों से। और इसने इन बड़े बड़े पत्थरों को कैसे काट दिया? राघव बोला, लगातार

कहकर साधु मुस्कुराए। नदी ताकत से नहीं जीतती, निरंतरता से जीतती है। ये शब्द राघव के दिल में उतर आए। पहले ही की तरह वह अगले दिन फिर से वह काम पर लग गया। इस बार पहले से ज्यादा सावधानी बरती। उसने गलतियों से सीखा, मजबूत नींव बनाई, अच्छे पत्थरों का चुनाव किया। धीरे धीरे पुल फिर से बनने लगा। तीसरे साल उसके साथ काम करने वाले कई लोग हार मानकर चले गए। चौथे साल कुछ और लोग छोड़ गए। अब वह लगभग अकेला रह गया था, लेकिन उसने कभी काम छोड़ा नहीं। हर दिन एक पत्थर जोड़ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कभी कभी उसे लगता कि उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर वह खुद से कहता, आज का एक पत्थर भी मुझे मंजिल के करीब ले जा रहा है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में खबर फैली, पुल लगभग तैयार हो गया है। जो लोग कभी कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे देखने आने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, वह सपना जिस पर वे हंसते थे अब सच बनने वाला था। कुछ महीनों बाद पुल पूरी तरह तैयार हो गया। पूरा गांव जमा हुआ, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब आए वहां। जब पहली बार लोग उस पुल से होकर दूसरी तरफ गए, तो उनकी आंखों में खुशी की

0: केवल पत्थरों से नहीं बना है था, वह बना था धैर्य से, विश्वास से और हार न मानने की जिद से। दोस्तों, जीवन में बड़े लक्ष्य एक दिन में पूरे नहीं होते, वे रोज उठाए गए छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। कई बार आपको लगेगा कि प्रगति बहुत धीमी है, कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कई बार आपकी मेहनत बाढ़ की तरह बह जाएगी, लेकिन अगर आप फिर से उठ खड़े हुए तो कोई भी नदी आपके और आपके मंजिल के बीच नहीं रह सकती। सफल लोग असफल नहीं होते, ऐसा नहीं है। सफल लोग हर असफलता के बाद दोबारा शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगली मुलाकात में फिर नई कहानी के साथ मैं भवानी झा आपके सामने जल्द ही आऊँगी। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे कहानी पाठ भवानी झा से। आगे बढ़ने के पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
3: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
4: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
3: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें हो रही थी साथ चलने की, साथ निभाने की और कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ने की। ये सब बातें कितना महत्व रखती हैं, कैसे छोटे छोटे प्रयासों से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां इंसान ने साथ मिलकर कार्य किया और बड़े मुकाम हासिल किए। जरा सोचिए, एक छोटी सी चींटी भी जब मेहनत करके अपना परिवार और अपने साथियों का बल बढ़ा सकती है, तो फिर हम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते।

0: फिल्म संजू से आपने ये गीत सुना। आगे बढ़ने के पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
5: 870-001-4242।
0: प्रस्तुत है आज की मधुरिमा। मोहब्बत में नहीं होता है फर्क जीने और मरने का, उन्हें देखकर ही हम जीते हैं और उन पर ही मरा करते हैं।

सोचता हूँ तो लगती है उसमें और मुझमें सदियों की दूरियाँ, उसे देख लूँ तो दरमियाँ कोई फासला नहीं होता।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, मैं तेरे साथ एक शाम गुजार लूं। मेरा हर लफ्ज हो जाए आईना और मैं तुझे आईने में उतार लूं।

फिल्म धर्मात्मा, अमर अकबर एंथोनी, खुदा गवाह और अलबेला के गीतों के साथ ये थी मधुरिमा। इसी के साथ आज नमस्कार जगदलपुर का सफर यहीं तक।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे

सोशल मीडिया हैंडल XHIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्योर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों के ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल

0: उनके साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से

0: जी, तो जैसे मैंने कहा कि किडनी की बीमारियां बहुत छोटे बच्चों से लेके, इनफैक्ट जो बच्चे पैदा हुए हैं उनसे लेके 18 साल तक के बच्चों में सभी में मिलती हैं। और जो कंजेनेटल एबनॉर्मलिटीज, जैसे मैंने बताया कि काकुट जो बीमारी बोल रहे हैं, वो अमूमन छोटे बच्चों में होती है। मगर ऐसा नहीं होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि ये हमें बाद में यानी कि 13-14 साल की उम्र में भी पता चलती है। तो सारी उम्र, इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि पेट के अंदर से ही ये बीमारियां शुरू हो जाती है। तो आज के डेट में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कुछ किडनी की बीमारियां जो होती हैं वो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से 20वें सप्ताह में भी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी पता चल जाती है। तो ये सब जो बीमारियां हैं जो बच्चों की, वो सारे एज ग्रुप्स में देखी जाती हैं। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी है टिपिकली 3 से लेकर 8 साल की उम्र के बीच में बच्चों को देखी जाती है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ये सब बीमारियां हैं ये कुछ बड़े उम्र के बच्चों में भी, जैसे 13-14 साल के बच्चों में भी है, उनमें भी देखी जाती है। तो ये बीमारियां सारे एज ग्रुप को ही इन्वॉल्व करती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि जो काफी छोटे होते हैं उनमें भी किडनी डिसीज होती है, तो छोटे बच्चे तो जैसे उनमें कुछ तकलीफ होगी वो बता भी नहीं पाएंगे, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं?
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सामान्यतः बड़े जो होते हैं वो अपनी शुगर बीपी के बारे में वो जाके हॉस्पिटल में नपवा लेते हैं या शुगर का चेक करा लेते हैं, उसके बाद उनको पता होता है कि उनको किडनी की बीमारी हो सकती है तो वो टेस्ट कराते रहते हैं, या कुछ और कारण होता है जैसे पेशाब में जलन वगैरह होती है तो वो तुरंत बता देते हैं कि भाई पेशाब में जलन है, अस्पताल में जाके डॉक्टरों को दिखा देते हैं। मगर छोटे बच्चों के साथ ये मुश्किल होती है कि वो अपने लक्षण नहीं बता पाते, और लक्षण बता पाते हैं तो वो कुछ वेग होते हैं कि हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर भी किडनी के पेशेंटों में कुछ कुछ लक्षण होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे उनमें से सबसे कॉमन है वो है सूजन आना। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है। आंखों में आप देखेंगे तो सूजन आता है। अब दिक्कत ये होती है, कई बार ये सूजन है सुबह सुबह तो रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे सूजन चले जाती है। तो माँ बाप उनको लगता है कि ये कोई लक्षण बहुत चिंताजनक नहीं है, मगर यदि आंखों के नीचे यदि सूजन आ रहा है तो ये चिंताजनक विषय है और इसमें डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा जो कॉमन लक्षण होता है वो पेशाब में खून का आना, ये दिख जाती है तो तुरंत माँ बाप सलाह ले लेते हैं। तीसरा कॉमन लक्षण होता है कि पेशाब बहुत ज्यादा होना या बहुत कम होना, अगेन इसमें जो है माता पिता अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मगर कुछ चीजें होती है जो लक्षण जिनको हम इग्नोर करते हैं, उनमें से सबसे एक है कॉमन है वो है बुखार का आना। तो यदि बुखार आ रहा है किसी बच्चे को, 1 साल से नीचे बच्चे को या 2 साल से नीचे बच्चों को, और उसको कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, उसको वायरल फीवर नहीं लग रही है, सर्दी खांसी नहीं है और बुखार आया हुआ है, तो ये अमूमन लक्षण होता है कि किडनी में या यूरिनरी ट्रैक में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से बच्चों को यूटीआई हुआ है यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है। और इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि बार बार बच्चों को बुखार आ रहा हो, बुखार का कारण पता ना चल रहा हो, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और किडनी के बारे में सोचना चाहिए। एक और कॉमन लक्षण जो हम भूल जाते हैं वो है सरदर्द, और ये बड़े बच्चों में होता है। बड़े बच्चों में सरदर्द होता है तो हम उसको सोचते हैं कि ये सिंपल सरदर्द है और दर्द के दवाइयां दे देते हैं और उसके बारे में हम ज्यादा चिंता नहीं करते, और कई बार डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वहां पे भी यही होता है कि सरदर्द की दवाई देता है। हम ज्यादा नहीं सोच पाते हैं कि किडनी से समस्या से भी रिलेटेड हो सकता है। किडनी बीमारी जब होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर से सरदर्द होता है। तो हमें यदि सरदर्द हो रहा है तो एक बार जरूर से बच्चे का प्रॉपर तरीके से किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाके भी, क्योंकि हो सकता है कि सरदर्द भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किडनी की बीमारी होने का, और ये लक्षण हम अमूमन मिस करते हैं। इसी के तरीके से कुछ और तकलीफें होती हैं, जैसे कि किडनी के आसपास में एरिया में दर्द होना। ये दर्द हम पेट दर्द की तरह इग्नोर करते हैं, कई बार सिंपल पेट दर्द है इस तरीके से, मगर यदि ये पथरी का निशानी हो सकता है, तो इसलिए यदि पेट में दर्द हो रहा हो, बहुत तेज दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टरों को दिखाना चाहिए और आगे के टेस्ट कराने चाहिए। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं, हमें कभी भी इग्नोर करना नहीं चाहिए बीपी के बारे में, सर दर्द को, बुखार को, ये 3 चीजें जो हम इग्नोर करते हैं। बाकी चीजें पेशाब में कमी होना, पेशाब में खून का आना या सूजन आना, ये हमें दिख जाती है और इसके बारे में हम सलाह ले लेते हैं। तो मैं श्रोताओं से इसके बारे में सजग रहने के लिए कहूंगा कि छोटे बच्चों में यदि या बच्चों में सर दर्द हो रहा है या उनको इस तरीके की कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके प्रति, किडनी बीमारी के प्रति सजग रहें।
1: डॉक्टर साहब, हम बातें और करेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत सुने।
0: तो मेरी पसंद का एक गीत, हम तेरे प्यार में साला आराम को बैठे,
1: तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर वीना राठौर जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं एम्स रायपुर में, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और बाल रोग में MD भी हैं। डॉक्टर वीना जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे जो बच्चे हैं उनमें किडनी से संबंधित कुछ रोग के बारे में, तो आपने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जैसे सिम्टम्स होते हैं, उस सिम्टम्स से हम पहचान सकते हैं कि इनमें किडनी के रोग भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे जो बच्चे थोड़े बड़े हैं एज में, तो उनमें किस तरह के सिम्टम्स आमतौर पर देखे जाते हैं, जो प्राइमरी किडनी के डिसीज के सिम्टम हो सकते हैं?
1: जी, तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि छोटे बच्चों में तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, वो बता नहीं पाते,

0: लेकिन बड़े बच्चे में जो दिक्कतें होती हैं वो बता सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम बताते हैं वो पेशाब में जलन का है, पेशाब में रोक नहीं पाने का है, या पेशाब बार बार जाने का है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये किडनी डिजीज को बता सकते हैं। थोड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक और चीज जो हम बहुत किडनी की बीमारियों में दिखते हैं वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की कमी का, और ये माँ बाप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और ये अगेन एक ऐसी चीज है जो मिस हो जाती है। यदि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, यदि आप बच्चे की वेट नहीं बढ़ रही है, तो आप ये सोचते हैं कि ये खाना पीने की वजह से नहीं हो रहा है या किसी अन्य कारण से नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि हाइट नहीं बढ़ रही है और ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की, ये भी एक मार्कर हो सकता है कि बच्चे को किडनी की बीमारी है। और अगेन इसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत होती है। कंप्लेन बताते हैं कि पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, पेशाब में कुछ अलग तरीके से स्मेल आ रही है। ये एक कुछ लक्षण होते हैं जो बड़े बच्चे हमें बता सकते हैं, और ये गाइड करते हैं कि बच्चे को कोई किडनी की संभावित बीमारी हो सकती है। इसी बात में मैं एक और चीज जो बताना चाहूंगा कि पेशाब का धार, ये पर्टिकुलरली जरूरी होता है पुरुषों के लिए, जो मेल बच्चे होते हैं, तो पेशाब का धार में यदि कमी आ रही है वो भी एक मार्कर होता है कि पेशाब में बच्चे के मूत्र में तंत्र में कोई ना कोई दिक्कत है, और इसके लिए भी हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
1: जी जी तो डॉक्टर साहब, आप जब हमने इसके लक्षणों की बात की है, तो यदि बच्चों में कुछ इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट और जांचें हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा अब किडनी रोग से ग्रसित होने वाला है या हो गया है?
0: जी, तो जब भी हमें बच्चों में इस तरीके के लक्षण दिखें तो हमें पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए या नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं, बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं आजकल, इवन जिला अस्पताल और उससे भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी अवेलेबल होते हैं। वो है सिंपल पेशाब की जांच कि पेशाब में प्रोटीन कितनी जा रही है, पेशाब में माइक्रोस्कोपी करके देखा जा सकता है कि उसमें पस है कि नहीं है। दूसरा, खून के कुछ जांच होते हैं जिसको सीरम क्रिएटिनिन कहा जाता है। क्रिएटिनिन एक प्रोडक्ट होता है जो हमारी किडनी छान के हमारे शरीर से बाहर निकालती है, तो उसका लेवल यदि बढ़ा होता है वो एक मार्कर होता है कि किडनी की बीमारी है कि नहीं है। जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट अगेन आप जाके, अब बच्चों में ब्लड प्रेशर मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए पीडियाट्रिशियंस के पास हमें जाना होता है वो, ताकि वो तरीके से ब्लड प्रेशर ले सके। तो ये तीन मेजर टेस्ट होते हैं। इसके अलावा एडवांस टेस्ट में जैसे मैं बताऊं तो एक अल्ट्रासाउंड कराना कि पेशाब के रास्ते में किडनी कितनी है, क्या उसका आर्किटेक्चर है, ब्लेडर कैसा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। इसके अलावा कई बार जैसे मैंने बताया कि बच्चों का यदि पेशाब का फ्लो कम है तो यूरोफ्लोमेट्री नाम की एक टेस्ट होती है, MCU, एक्स्ट्रा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, कई बार CT स्कैन, ये कराने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि किस बच्चे को क्या बीमारी है, बट बेसिक टेस्ट जो है वो पेशाब की जांच, क्रिएटिनिन मेजर करना और एक सोनोग्राफी, ये तीन से अधिकतर बीमारियों का पता लगाया जा सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे इन सब जांचों के बारे में आपने बताया, और इन जांचों में यदि प्रारंभिक स्तर पर पता चल जाता है कि किडनी की डिसीज होने वाले हैं या किडनी की जो रोग है प्रारंभिक स्तर पर है, तो उसके ठीक होने या उससे रिकवरी के कितने चांसेस होते हैं?
0: जी, अब ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि हम कोई भी जांच इसलिए करते हैं कि हम उसका पेशेंट को इलाज करके रिकवरी कर सके, और यही मकसद भी होना चाहिए। तो इसमें सबसे जरूरी तो ये होता है कि दो तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे एक नेफ्रोटिक, एक एक्यूट किडनी इंजरी, एक क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो जहां तक एक्यूट किडनी इंजरी है वो रिवर्सिबल होता है, यानी उसका सही तरीके से इलाज हो जाए। डिजीज में कंप्लीट रिवर्सिबल पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, और मैनेज करके उनके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, अगेन एक बीमारी है जिसमें 70-80% पेशेंटों को हम इलाज करते हैं तो कंप्लीट रिकवरी होने की गुंजाइश होती है। इसलिए जरूरी यह है कि हमें बीमारी का पता जल्दी से जल्दी पता चले, ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करके मैक्सिमम आउटकम को हम ले सकें। यदि बीमारी का ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो अमूमन सारी किडनी की अधिकतर बीमारियां रिकवरी एक्सपेक्टेशन होती है।
1: तो डॉक्टर साहब, कई बार किडनी रोगों से ग्रसित लोगों या बच्चों के लिए कहा जाता है कि डायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये डायलिसिस क्या होता है?
0: जी, जैसे कि मैंने बताया कि कई बार लोग आश्चर्य करते हैं कि बच्चों में भी डायलिसिस होती है क्या, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों में भी डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस क्या होता है? हमारी किडनी मुख्यतः हमारे शरीर से जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। जैसे जैसे किडनी फेल होती जाती है तो वैसे वैसे हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब इसको आर्टिफिशियली तरीके से इसको शरीर के बाहर से निकाला जाता है, तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस दो मुख्य

0: दो प्रकार की होती है, एक जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट में हम एक कैथेटर लगा देते हैं, उस कैथेटर में हम एक पीडी फ्लूइड आता है, पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड, उसको हम पेट के अंदर डालते हैं और सारी शरीर की जो गंदगी होती है वो उस पेरिटोनियल फ्लूइड में इकट्ठा हो जाती है, फिर उस इकट्ठा फ्लूइड को हम शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। तो यह प्रक्रिया को पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। छोटे बच्चों में यही एक डायलिसिस का माध्यम होता है, क्योंकि जो मशीनें होती हैं, अगला बात मैं बताने वाला हूँ हीमोडायलिसिस के बारे में, वो इनमें करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो छोटे बच्चों में ये काफी कारगर तरीका होता है, जिससे ये डायलिसिस के माध्यम से हम वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा मैंने बताया हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में एक मशीन होती है जिसमें हम शरीर के से खून को एक डायलेजर कहा जाता है, जिसको जिसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसमें डाला जाता है, वहां से शरीर की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और फिर जो जो अच्छी खून है उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलने के बाद जो खून है उसको वापस पेशेंट के या बच्चे के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। तो इसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। हीमोडायलिसिस में एक मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, डायलिसिस टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, एक संस्थागत रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हॉस्पिटल में ही किया जाता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ट्रेनिंग दे देते हैं माँ बाप को, तो उसके माध्यम से वो घर बैठे बैठे भी अपने घर में पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, कोई बच्चा क्रोनिक किडनी डिसीज से पीड़ित है तो अब उसे डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ेगी?
0: जी, अब ये भी जैसे मैंने कहा कि कई बार हमें लोगों को समझाने में मुश्किल होती है कि बच्चों में भी किडनी की बीमारी हो सकती है क्या, उसी तरीके से माँ बाप को या लोगों को समझाने में ये भी मुश्किल होती है कि क्या बच्चों को भी डायलिसिस होता है।
1: जी।
0: तो जी, बच्चों का भी डायलिसिस होता है, और बच्चों को डायलिसिस की जरूरत तब पड़ती है जब किडनी बिल्कुल इस लेवल तक काम करना बंद कर दे कि उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो शरीर से बाहर ना निकल पाएं और शरीर को हार्म कर रही हूँ। अमूमन जो मेजर किया जाता है वो GFR में से, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है, उसके माध्यम से मेजर किया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब लेस देन 10-15 और 10 से लेस के आसपास होती है तब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। बट ये और भी बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है कि डायलिसिस की जरूरत बच्चे को कब पड़ेगी, इंक्लूडिंग उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसमें खून बन रहा है कि नहीं बन रहा है इत्यादि। जैसे मैंने बताया किडनी का सिर्फ एक ही काम नहीं होता कि वो पेशाब को हमारे शरीर के खून को छाने, खून भी बनाना एक हमारे किडनी का बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा किडनी हमारी हाइट, वेट, बोन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि इन सब चीजों में भी कमी आती है तो डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस दो तरीके के होते हैं। छोटे बच्चों में पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत इफेक्टिव और कारगर होती है, और हीमोडायलिसिस जो बड़े बच्चे हैं उनमें, कई बार छोटे बच्चों में हीमोडायलिसिस नहीं किया जा सकता। अमूमन 10 से 12 kg जब होता है या 5 से 6 साल उनमें ही हीमोडायलिसिस की संभावना दिखती है। ऐसे बच्चों में पेरिटोनियल डायलिसिस एक अच्छी मोडालिटी है, बड़े बच्चों में हीमोडायलिसिस भी किया जा सकता है।
1: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, अब जब डायलिसिस की नौबत आ गई है, और ऐसा भी पता चल रहा है कि कभी कभी इस तरह भी होता है कि डायलिसिस के बाद भी आराम नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि बड़ों में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा जाता है, तो क्या बच्चों में भी ऐसी नौबत आ सकती है?
0: जी बिल्कुल। जो जिन बच्चों को डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, या जैसे मैंने बताया आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्योंकि अब ये बीमारी रिवर्स नहीं हो सकती, तो ऐसी बीमारियों में बच्चों में भी ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है। और इनफैक्ट ट्रांसप्लांट बच्चों में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू डायलिसिस। जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है उनमें यदि ट्रांसप्लांट हो जाए तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि एक नई किडनी मिलने से बच्चे की ग्रोथ, हाइट और स्कूल जाना ये सब बहुत आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू डायलिसिस में रहने में। लेकिन अब इसमें डोनर्स होते हैं, वो अमूमन घर के रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये डोनेट करते हैं किडनी, और ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद, बाकी और टेस्ट करने के बाद यदि ट्रांसप्लांट हो जाता है तो बच्चों की जिंदगी बहुत हद तक नॉर्मल हो जाती है। छत्तीसगढ़ में अभी कैडेवर ट्रांसप्लांटेशन और डिसीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन का भी प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो उसके माध्यम से भी जिनके पास डोनर नहीं है, ब्लड ग्रुप मिल नहीं पा रहा है, ऐसे जो मरीज होते हैं वो उसमें अपना नाम लिखा सकते हैं इस प्रोग्राम में। और छत्तीसगढ़ की तरफ से एक बहुत अच्छा पहल ये लिया गया है कि यदि कोई ब्रेन डेड डोनर जो डोनेट करने वाला है वो बच्चा है तो वो किडनी बच्चों को ही अलोकेट की जाती है, या बच्चों को प्राथमिकता मिलती है उसमें अंगदान में के माध्यम से। और अभी अभी हाल ही में ये एक बच्चे को ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इस तरीके से बच्चों की किडनी की ट्रांसप्लांट एक बहुत ही अच्छी पद्धति है जब किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाए, और इसके माध्यम से काफी अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए जाते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो एम्स है, यहाँ भी कई तरह की आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं अभी उपलब्ध हो चुकी हैं, तो हम देखें तो किडनी डिसीजेस के बारे में, खासकर बच्चों के संबंध में, तो अभी एम्स में कौन कौन से

0: जो ऐसे चिकित्सक की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: जी, तो एम्स रायपुर में काफी हद तक किडनी, बच्चों की किडनी से रिलेटेड बीमारियों के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स है जो सबसे पहले बच्चों को देखता है और वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है। वहाँ पे बच्चों की अधिकतर किडनियों की बीमारी जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या यूटीआई है, इस तरीके की बीमारियों का वहाँ पे इलाज हो जाता है और वहाँ पे डेली ओपीडी चलती है, वहाँ पे संपर्क किया जा सकता है। सीरियस केसेस में पीडियाट्रिक इमरजेंसी है, वो 24/7 खुली रहती है, वहाँ संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी और डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी है, जहाँ पे बच्चों की पेशाब के रास्ते हैं उसमें यदि कोई समस्याएं होती हैं तो उनके ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, उनकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और उसमें वो चाहे जैसे मैंने बताया कि मेल बच्चों में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व एक नाम की एक बीमारी होती है जिसमें एक वॉल होता है हमारे पेशाब के रास्ते में, तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। या वेसाइटो को यूरेट्रिक रिफ्लक्स होती है जिसमें पेशाब हमारा बाहर निकलने के बजाय कई बार वापस बैक किडनी की तरफ जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, उसकी आधुनिक इलाज उसका उपलब्ध है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बात की कि यदि किडनी फेल हो जाए और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े तो डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में डायलिसिस, दोनों पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस बच्चों के लिए इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ट्रांसप्लांट के लिए अगेन हम एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक क्लिनिक चलाते हैं जिसको जिसकी ओपीडी हर गुरुवार को नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। वहाँ पे हम बच्चों के लिए डेडिकेटेड ओपीडी होती है, तो वहाँ ऐसे पेशेंटों को हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए जो टेस्ट होते हैं, जो तैयारियां होती हैं, वो उस ओपीडी में भी की जाती हैं।
0: डॉक्टर साहब, चलते चलते हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि किडनी डिसीजेस ना हो, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, हम किडनी के रोगों से कैसे बच सकते हैं?
1: जी, अब रोकथाम बहुत जरूरी है किडनी की बीमारियों में। आज जैसे आपने बताया कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इतनी चेंज हो चुकी है कि हम एक्सरसाइज, बच्चों में एक्टिविटी, खेलना कूदना ये बहुत कम हो गया है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। और इसके साथ साथ हमारा सेवन जो खाना है वो अब घर तक की घर का बना हुआ खाना से हटके बहुत हद तक फास्ट फूड की तरफ जा चुका है। और इस फास्ट फूड में अधिकतर बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल और खान पान ये हमारी किडनी को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। और लॉन्ग रन में जो बच्चे हैं, जो तो अभी हैं, उनको अगले 50 साल 60 साल तक की जिंदगी उनके सामने है, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करती जाती हैं नुकसान। तो इसलिए जैसे आपने पहले भी कहा था कि स्वस्थ लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये बहुत जरूरी चीज है। नमक का सेवन कम से कम रहना चाहिए, कोशिश बच्चों के लिए भी ये लागू होता है। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि हम एक्टिविटी बना के रखें, कम से कम बच्चे खेलें एटलीस्ट।
0: जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, और हमारे श्रोता जो भी कार्यक्रम सुन रहे होंगे वो डॉक्टर साहब की बताई गई बातों पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर होना अच्छा है। जब तक कोई अनहोनी ना हो उससे पहले हमें गंभीर हो जाना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और खासकर जब आप जब बात शरीर के अंदरूनी अंगों की होती है, किडनी जैसे अंगों की होती है, तो हमें जरूर सजग रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपने आज हमारे श्रोताओं को बच्चों से संबंधित किडनी रोग के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे बच्चों में किडनी से संबंधित रोग लक्षण कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर विनय राठौर से भेंट वार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। कुछ ही देर में अगला कार्यक्रम
0: के मद्देनजर किसानों को खेती संबंधी सलाह इस विषय पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्णदास से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
2: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो चुका है। हालांकि जून महीने में मानसून ने पिछले सालों के मुकाबले निर्धारित समय अवधि से थोड़ी देरी से छत्तीसगढ़ में दस्तक दी और दस्तक देने के बावजूद

0: विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास। डॉक्टर दास, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर दास, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पिछले सालों से यदि हम तुलना करें तो इस बार मानसून की स्थिति कैसी लग रही है, क्योंकि किसान थोड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ में अगर हम वर्षा के आंकड़ों को देखें
0: जी,
1: इस वर्ष मानसून थोड़ा सा देरी से प्रवेश किया है
0: जी।
1: वैसे तो लंबे समय के आंकड़ों का अध्ययन करें
0: जी
1: तो 2004, 2009, 2023 में भी मानसून जो है 24, 26 और 23 जून को पहुंचा था
0: जी।
1: तो ये इस प्रकार की स्थिति पहले भी निर्मित हुई है
0: जी।
1: मगर अपन खेती किसानी के संदर्भ में देखें
0: जी
1: तो मानसून निश्चित रूप से 10-15 दिन के डिले से यहाँ पर पहुंचा है
0: जी।
1: और अभी जो है खेती किसानी में धान की बुआई थोड़ा सा जो है पिछड़ा है
0: जी,
1: बाकी उत्पादन पर अभी प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना नहीं है।
0: अच्छा, एक बात और है डॉक्टर साहब, कि मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल अल नीनो का प्रभाव देखा जा रहा है, कुछ तो ये कह रहे हैं कि सुपर अल नीनो प्रभाव है। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या मानते हैं कि बारिश की स्थिति कैसी हो सकती है?
1: अल नीनो के कारण जो है यह देखा गया है
0: जी
1: कि भारतवर्ष में वर्षा की मात्रा में कमी या सूखे पड़ने की संभावना होती है
0: जी,
1: और अगर यह स्थिति जारी रहेगी तो इस प्रकार की आशंका जो है हो सकती है या इसकी स्थिति निर्मित हो सकती है
0: जी।
1: अभी वर्तमान में जो है ऐसा कोई लक्षण दिख नहीं रहा है
0: जी,
1: सामान्य रूप से थोड़ा डिले हुआ है जो कि पहले भी कई बार हो चुका है
0: जी।
1: तो अभी हम कुछ कहना जल्दीबाजी होगा परंतु सावधानी बरतना ही उचित होगा
0: जी। डॉक्टर दास, ये बताएं कि जैसे यदि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं और इस वर्ष जैसे मानसून ने देरी से दस्तक दी है और थोड़ी सी अनियमितता अभी देखी जा रही है, तो इन स्थितियों को देखते हुए ये जो फसलें हैं चाहे धान हो या दूसरी फसलें हो उनकी बुआई की अभी इस समय क्या स्थिति है?
1: छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से जो है धान की खेती की जाती है
0: जी,
1: लगभग खरीफ में 48-49 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है जिसमें 38-39 लाख हेक्टेयर में धान रहता है, बाकी क्षेत्रों में मक्का है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, तिल है, मूंगफली है,

0: इस क्षेत्र में समान रूप से जो है पानी नहीं गिर पाया है। अगर खेत ठीक से अगर गीला नहीं होगा या जमीन में जो है नमी का प्रवेश अंदर तक नहीं होगा
1: जी
0: तो बीज के अंकुरण के प्रभावित होने की संभावना है।
1: जी
0: तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि धान की जो है बतर बुआई करने के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करें।
1: जी
0: लगभग 1 से 1.5 फुट का जब जमीन गीला हो जाता है उसके बाद जब खेत बोने लायक स्थिति में आए तब बतर बुआई करना चाहिए, और इसी स्थिति में दलहन तिलहन की ही बुआई करनी चाहिए।
1: जी तो इसमें ये भी बताइए कि जैसे धान में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है ना, धान के
0: जी
1: उत्पादन में, तो क्या कोई ऐसी किस्में हैं धान की जिनको जो मानसून के अभी जो वर्तमान स्थिति है या आगे जैसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो क्या कोई ऐसी किस्में हैं जिनको उगाने से किसान को मतलब नुकसान की आशंका ज्यादा ना हो?
0: छत्तीसगढ़ में जो है 3-4 टाइप की भूमि है।
1: जी
0: अपन मुख्य रूप से करें भाटा, मटासी, ढोरसा, कन्हार।
1: जी
0: भाटा जमीन थोड़ा सा एकदम जो है ऊपरी हिस्सा रहता है,
1: जी
0: इसमें धान की फसल की खेती नहीं करनी चाहिए।
1: अच्छा
0: उसके बाद मटासी, ढोरसा और जो है कन्हार भूमि में धान की खेती की जाती है और करने में कोई नुकसान नहीं है।
1: जी
0: इस वर्ष वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है वो जल्दी पकने वाली किस्मों का चयन करें।
1: अच्छा
0: इससे क्या होगा कि यदि किसी भी कारण से एल नीनो की स्थिति में वर्षा की मात्रा में कमी आती है तो
1: जी
0: हमारा धान का उत्पादन प्रभावित ना हो, और इसके लिए जो है 110 से 125 दिन के बीच की वैरायटी का चयन करना चाहिए।
1: अच्छा। अब इसमें जैसे ये तो आपने बता दिया कि जो जल्दी पकने वाली फसल है उनको यदि किसान चुनते हैं तो उनके लिए ज्यादा ठीक होगा। इसमें मतलब कौन से समय का ठीक रहेगा? क्या अभी और इंतजार करें किसान या क्या करें?
0: नहीं, अभी तो जैसे मैंने बताया खुर्रा बोनी किसान भाई कर चुके हैं
1: जी
0: तो उसमें तो आपको ये गुंजाइश है नहीं।
1: जी
0: अब बतर बोनी के लिए या गीली बुआई करने के लिए अपने पास समय है,
1: जी
0: तो जैसे ही मानसून जो है अपना पूरे रूप में आ जाएगा या अगर खेत गीला हो जाता है, जहां जहां कुछ जगह पर अच्छी बारिश हुई है
1: जी
0: वहां किसान भाई जो है गीली बुआई में या बतर बोनी में जा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में छिड़काव विधि से बुआई ना करें। अगर
1: अच्छा
0: कतार में बुआई करेंगे तो मान लो ड्राट की स्थिति पैदा होती है, सूखा की स्थिति पैदा होती है तो खरपतवारों की मात्रा बढ़ जाती है, तो दो कतार के बीच में मशीन से या निंदाई करने में आसानी होता है।
1: जी इसमें एक बात और है डॉक्टर दास, के जो चाहे वो केंद्र सरकार हो या छत्तीसगढ़ सरकार हो, इस बात के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो धान के अलावा दूसरी फसल जैसे दलहन तिलहन है वो भी उगाएं। इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसको फसल हम विविधीकरण भी कहते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप सलाह किसानों को देना चाहेंगे?
0: फसल विविधीकरण के लिए बहुत दिनों से प्रयास जारी है
1: जी
0: और इस वर्ष राज्य शासन ने एक बहुत अच्छी योजना निकाली है
1: जी
0: जिसमें अगर किसान भाई धान को छोड़कर
1: जी
0: अगर दलहन तिलहन की खेती करते हैं
1: जी
0: या अन्य फसल लगाते हैं तो उनको प्रति एकड़ 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
1: जी
0: तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस वर्ष जो है एलनिनो के कारण जो है पानी कम गिरने की या अनियमित वर्षा होने की संभावना है,
1: जी
0: इस स्थिति में जो भर्री जमीन है या ऊपर की जमीन है जिसमें पानी कम रुकता है उसमें दलहन तिलहन की खेती को अवश्य रूप से करें, राज्य शासन की योजना का लाभ उठाए। इससे फसल विविधीकरण में जो है फायदा होगा या उसकी जो है मात्रा बढ़ेगी जिसका किसान को भी फायदा मिलेगा।
1: जी बिल्कुल। इसमें एक बात और है कि जैसे बारिश में कुछ कमी देखी जा रही है या एक अनियमितता की स्थिति है तो फसलों के उत्पादन पर जैसा आपने भी कहा थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो ये जो जोखिम होता है किसानों को, उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को केंद्र और राज्य सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं, जैसे एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और भी यदि कोई योजना हो तो उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताएं।
0: देखिए, जोखिम से बचाने के लिए जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक जो है प्रमुख योजना है
1: जी
0: जिसमें किसानों को मात्र 2% तक प्रीमियम देना पड़ता है
1: जी
0: और 98% जो है प्रीमियम की राशि है, बीमा की जो प्रीमियम की राशि है
1: जी
0: वो आधा आधा केंद्र और राज्य सरकार जो है वहन करती है।
1: जी
0: तो जो किसान भाई लोन लेते हैं उनका तो वहां पर ऑटोमेटिक जो है बीमा हो जाता है,
1: जी
0: जो किसान भाई लोन नहीं लेते हैं वो भी आवश्यक रूप से अपने फसल का बीमा कराए
1: जी
0: जिससे अगर सूखा की पड़ता है तो जो फसल का नुकसान होगा तो उसका जो है भरपाई बीमा के माध्यम से हो सकता है।
1: जी
0: इसी तरह से उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना की जो है व्यवस्था की गई है, तो जो फसल सब्जी भाजी खेती करते हैं या फल फूल की खेती करते हैं उनको भी इस योजना का लाभ लेना चाहिए,
1: जी
0: इससे जो है जोखिम को कम करने में मदद मिलेगा।
1: एक बात और है डॉक्टर साहब, आपने बात की धान की, बात की दलहन तिलहन की, बात की ये जो नकदी फसल होती हैं कुछ, है ना, जैसे उद्यान की फसल की भी आपने बात की, कुछ नकदी फसल होती हैं क्योंकि कई बार उनका बड़ा अच्छा दाम भी मिल जाता है बाकी फसलों की तुलना में, इनके बारे में हमारे किसानों को बताएं कि कौन कौन सी फसल, छत्तीसगढ़ की जो जमीन है आपने बताया कि अलग अलग तरह की अलग अलग इलाकों में जमीन है, तो किस तरह की जमीन में किस तरह की नगदी फसल उगाई जा सकती है और इनका बाजार में इनका मूल्य किस तरह से मिल सकता है, कितना फायदा हो सकता है?

0: नकदी फसल में तो हम लोग प्रमुख रूप से जो है जैसे सब्जी वाली फसलों को भी कह सकते हैं,
1: जी
0: जिसका बाजार में तत्काल और तुरंत जो है लाभ मिलता है या ज्यादा लाभ मिलता है।
1: बिल्कुल
0: अभी आप देखेंगे कि ये राज्य शासन ने जो है बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बोर्ड की भी योजनाएं हैं,
1: जी
0: जिसमें पाली हाउस का भी निर्माण किया गया है अनुदान के माध्यम से।
1: जी जी
0: तो पाली हाउस में हम साल भर सब्जी की खेती कर सकते हैं और उन सब्जी वाली फसलों की खेती कर सकते हैं जो सामान्य मौसम में आसानी से जैसे वर्षा काल में नहीं हो पाता है,
1: जी
0: और इन फसलों को लगाएं। इसमें खरीफ की जितने भी सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं
1: जी
0: और धनिया को लगा सकते हैं। धनिया बहुत हाई रेट में बिकता है, मिर्ची हाई रेट में बिकता है, और जिसको जो पसंद है, क्योंकि इसमें हमारा तापक्रम और वर्षा से बचाव हो जाता है, टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है,
1: जी
0: नमी भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो
1: जी
0: सब्जी वाली फसलों को पाली हाउस में लगाएं तो
1: जी
0: बाजार में बढ़िया कीमत मिलता है,
1: अच्छा
0: हर प्रकार की सब्जी लगा सकते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में गन्ने की खेती होती है,
1: जी
0: तो गन्ने की फसल को भी जो है किसान भाई लगा सकते हैं। राज्य शासन ने कुछ क्षेत्रों में इसको बढ़ावा भी दिया है,
1: जी
0: इसको भी जो है खेती करके जो है लाभ कमा सकते हैं।
1: एक बात और है डॉक्टर दास की, अभी जैसे पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी, उससे जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी आपूर्ति प्रभावित हुई है, और राज्य सरकार नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही है,
0: करिए।
1: तो फसल की पैदावार पे क्या इसका कोई असर तो नहीं पड़ता है, और कितना अच्छा है ये?
0: नैनो यूरिया जो है बहुत ही उपयोगी, मतलब जो है सूक्ष्म जो है पोषक तत्व तो है, नाइट्रोजन ही है,
1: जी
0: मगर इसको कम मात्रा में जो है देकर हम जो है उत्पादन को बढ़ा सकते हैं,
1: अच्छा
0: या बल्क में जैसे जो चीज उपलब्ध नहीं है
1: जी
0: यूरिया जैसे अभी नहीं हो पाएगा, तो
1: जी
0: हम नैनो यूरिया का जो है उत्पादन करके इसका उपयोग करेंगे, तो इसका जो नाइट्रोजन की कमी से उत्पादन कम होने की संभावना है उससे हम बच सकते हैं।
1: जी
0: तो किसान भाइयों को इसका प्रयोग करना ही चाहिए, और ये कम मात्रा में अपन खेत में डालते हैं, क्योंकि इसको इस कम मात्रा में जो है घोल के डाल देंगे
1: जी
0: तो लाभ तो उतना ही होता है।
1: बिल्कुल
0: और अगर युद्ध के समय जो है उर्वरक की कमी महसूस की जा रही है,
1: जी
0: उस स्थिति में हमारे किसान भाइयों को सलाह है कि वो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें। नैनो
1: अच्छा
0: यूरिया तो है, ये बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है, जैविक खादों का उपयोग करें। और हमारे वर्तमान में बहुत सारी जो है देसी विधियां हैं,
1: जी
0: गोबर के माध्यम से जो है हम जो है उसको पानी में घोल कर जो है कुछ दिन रख कर उसमें कई सारे चीजें मिलाकर जीवामृत घनामृत सब बनाते हैं,
1: जी
0: इसका भी उपयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। ये सब का उपयोग करेंगे तो यूरिया के ऊपर निर्भरता कम होगी
1: जी
0: और उसकी कमी महसूस नहीं होगा, और
1: जी
0: उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्पादन हमारे या तो उतना मिलेगा जितना पहले मिल रहा था,
1: जी
0: या फिर बढ़ोतरी भी हो सकती है।
1: बिल्कुल
0: और इसका दूसरा फायदा है
1: जी
0: कि हमारा जो मृदा के स्वास्थ्य है उस पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है।
1: जी
0: रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा के स्वास्थ्य को हानि होती है, खराब होता है। इसको अपने को रोकने के लिए ये सब चीजों का प्रयोग करें। इसी तरह से आने वाले समय में
1: जी
0: जब हम जैविक खेती की बात करते हैं
1: जी
0: तो हमको तो, या केमिकल फ्री रसायन मुक्त खेती की बात करते हैं
1: जी
0: तो हमको धीरे धीरे इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा।
1: जी
0: तो हमारे पास एक विकल्प है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, इसका भरपूर मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है।
1: जी
0: अगर किसान पहले से अपना डिमांड रख दे
1: जी
0: तो हम उतने मात्रा में उनको उत्पादन करके उनको दे सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में ही आपसे पूछने ही जा रहा था कि जैसे जो आपने बताया कि जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य के लिए, मृदा के स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है, तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसानों को क्या क्या उपाय करना चाहिए?
0: किसानों को सबसे पहले तो उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना है।
1: अच्छा,
0: अगर उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा ऑर्गेनिक मैटर अगर बढ़ जाता है
1: जी
0: तो अपने आप में वो बफर एक्शन शुरू हो जाते हैं, उसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन बहुत रहता है।
1: जी
0: तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है हम जितने भी रसायन खेत में पहले से प्रयोग कर चुके हैं
1: जी
0: और उसका जो रेसिडुअल इफेक्ट है
1: जी
0: उन सबको न्यूट्रलाइज कर देगा वो।
1: बिल्कुल,
0: एक बार जब रसायन फ्री हो जाएगा हमारा खेत
1: जी
0: तो जैविक खेती के लिए वो प्रमाणित हो जाता है। प्रमाणीकरण में एक कंडीशन रहता है
1: जी
0: कि विगत 3 वर्षों से वहां जो है रसायनों का जो है प्रयोग ना किया गया हो। अगर हम गोबर खाद या जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते हैं
1: जी
0: तो निश्चित रूप से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं
1: जी।
0: और आने वाले समय में जैविक खेती की संभावनाएं बढ़ेंगी
1: जी,
0: इसके उत्पाद का जो है हमको मार्केट उपलब्ध कराना पड़ेगा, इसका रेट भी ज्यादा मिलेगा
1: जी।
0: और किसान भाई जो है रसायनों का जितना से धीरे धीरे प्रयोग कम करें
1: जी,
0: मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएं
1: जी,
0: जल का संरक्षण करें
1: जी,
0: तो हमारा जो है मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दास, आपने बड़े विस्तार से हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा, और निश्चित रूप से हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको इस जानकारी का लाभ पहुंचेगा। एक बार पुनः हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये सुन रहे थे आप कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास के साथ हमारी बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर

0: होंगे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म आरजू से। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है अनु मलिक का।

दीवाना मस्ताना। अभी आप इस फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। आवाजें थी उदित नारायण, विनोद राठौर और अलका याग्निक की। गीत रचना थी आनंद बख्शी की। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने आज जिस फिल्म को शामिल किया है वो वर्ष 1997 में बनी एक हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में अनिल कपूर, तब्बू और पूजा बत्रा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये गांव में पुराने समय में चलने वाली जमींदारी प्रथा और ग्रामीण परिवेश में होने वाली समस्याओं, गांव के रीति रिवाजों और गांव के और शहरी परिवेश में रहने वाले लोगों की मानसिक विचारधाराओं को लेकर एक समावेशित फिल्म थी।

बात तो सच है श्रोताओं, क्योंकि गांव की मिट्टी की खुशबू, गांव के कुएं का पानी, गांव के पेड़ों की छांव, गांव के खेतों में लहलाती फसलें, इससे ज़्यादा सुख और आनंद शायद ही कहीं मिलता हो। बहरहाल बातें करें इस फिल्म की। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मुख्य नायक अनिल कपूर के पिता की भूमिका निभाई थी। अनिल कपूर यानी कि मुख्य नायक शक्ति शहर से पढ़कर ग्राम वापस आता है। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसकी शादी गांव की एक लड़की तब्बू से होती है, जो कि मुख्य नायिका है। इसके बाद ये कथा आगे बढ़ती है। इस फिल्म में पूजा बत्रा, जिसने मुख्य नायक की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी,

श्रोताओं, इस फिल्म में मिलिंद गुणाजी और गोविंद नामदेव भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म का संगीत दिया था एसपी वेंकटेश और अनु मलिक ने, जो बेहद लोकप्रिय भी रहा। इस फिल्म के संगीत के बारे में आपको एक और खास बात हम बताते हैं। क्या आपने कभी बीट बॉक्सिंग इस शब्द को सुना है? जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म में इसका प्रयोग किया गया। इस फिल्म में एक खास बात यह भी थी कि फिल्म की मुख्य नायिका तब्बू ने बीट बॉक्सिंग कर एक गाने में अपनी आवाज को संगीत के रूप में पेश किया था।

बीट बॉक्सिंग क्या होती है? आपको ये बताएं कि इस गाने में तब्बू ने अपनी आवाज को म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्रों की तरह प्रयोग किया। ग्रामीण परिवेश में शांत मनभावन इस गीत को फिल्माया गया और तब्बू की इस अदाकारी के साथ ये प्रयोग भी सफल रहा।

इस फिल्म के गीत आज भी यादगार हैं। इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, दिखाया जाता है कि किस तरह गांव में एक छोटा सा मामूली विवाद भी एक विकराल रूप ले लेता है। इस फिल्म के गीत जावेद अख्तर ने लिखे थे। इस फिल्म के गीतों में आवाजें दी थी जसपिंदर नरूला, कुमार शानू, उदित नारायण, हरिहरन, चित्रा, अभिजीत, अनुराधा पौडवाल, श्रीराम, विनोद राठौर और कविता कृष्णमूर्ति ने। ये फिल्म उस समय की सफलता प्राप्त फिल्मों में शामिल थी जिसने अनेक पुरस्कार भी जीते। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें और इस फिल्म के गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: एक ही फिल्म से अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का दो दिवसीय चिंतन शिविर आज से आईआईएम रायपुर में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देशभर के सभी जल भंडारों की निगरानी करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की सुचारू और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चालू खरीफ सीजन और संभावित अल्पवर्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को किसानों के लिए खाद बीज और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश को 46,000 टन से अधिक डीएपी उर्वरक की आपूर्ति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार पर विशेष जोर देते हुए सभी जिलों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि संभावित अल्पवर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त रासायनिक खाद उपलब्ध है। राज्य सरकार ने किसानों से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए धान की रोपा पद्धति के बजाय डीएसआर यानी सीधी बुवाई तकनीक अपनाने की अपील की है। सरकार के अनुसार इस तकनीक से पानी और लागत दोनों में बचत होती है तथा फसल जल्दी तैयार होती है। किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती, बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संरक्षण और ड्रिप तथा स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने की भी सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का दो दिवसीय चिंतन शिविर आज से रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम में शुरू होगा। शिविर में विकसित छत्तीसगढ़ के विजन, सुशासन और भविष्य की विकास रणनीति पर मंथन किया जाएगा। नीति, नवाचार, नेतृत्व और परिणाम आधारित शासन व्यवस्था पर राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। शिविर में कृषि, उद्योग, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, सुशासन और जनसेवा सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा होगी। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आज समापन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल इस सम्मेलन का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा

0: समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्पवर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से IIM रायपुर में शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजीचो सगा हल्बी बोली में। इसमें हम सुना रहे हैं शेर सिंह आंचला से बलबीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता।
2: भाई मन खुबे खुबे सेवा जोहार। आज मैं अमरले से ये जो गोटोक दम कसा गांव ये कांकेर जिला विकासखंड दुर्कोंदल ने से आरु एताले महाराष्ट्र बलन जोगी धुर है टेकली से आरु एता असनी बलने आप लोग पूरा जीवना के समाज सेवा चु क्षेत्र ने बलने सोपला से असन गोटोक दादा असोत मैं एमन संग गोट बात करें से तो एमनचो पूरा परिचय मैं एमनचो टोनले सुनुक चाहे से दादा सब ले आगे तू चु नाव और गांव चुनाव सुन।
3: हमचो नाम शेर सिंह आचला है और हमचो बाबा चो नाम पितोराम आचला, आया चो नाम भुटाई भाई आचला और गांव दमकसा। अभी वर्तमान में तो ध्रुव कोंदल विकास खंड तहसील है, पहले भान प्रतापपुर रहे, कांकेर राज रहे। अच्छा। आजादी के पहले इतना जन्म

0: मिडिल का जी, तो
1: अच्छा
0: मिडिल भले इठाई खुल लो, तो मैं छठवीं सातवीं आठवीं पास कर लें 65 64 में, है ना, 64 65 में। और फिर नौकरी का जो जगदलपुर जाऊन उन आवेदन भर तो, है ना, रोजगार कार्यालय में कर लूँ।
1: अच्छा।
0: और हुए तो ऐसा सरल रहे कि उन रोजगार कार्यालय बिताए मन सांगला कि इतरो तारीख के इंटरव्यू आए, तो ये तारीख के ऐसे और ये शिक्षक जो नौकरी का जे, है ना, और दूसरा नौकरी कर ले ऐसा नायक बलून घला सांगला पर मचो नाव गुरुजी शिक्षक के बन तो मचो लगाव रहे थे, मैं वो शिक्षक के इंटरव्यू का जे अगेले। और फिर उठा 14 जनवरी के इंटरव्यू होली, उठा वो समय नवलखा बिल्डिंग बल्लत कलेक्टर कार्यालय के उठा पूछला जो भी वो खनी तो मौखिक रहे, लिखित नहीं रहे, जसन जसन पूछला उत्तर दिलू। और फिर बल्ला कि नहीं ऑर्डर भी संगे संगे काली संगे निया से सभी इंटरव्यू बितामन असन बल्ला हम ही रुक लूँ। मानो दूसरा दिन गेलू तो सांगला कि नहीं टाइप खराब होले से टाइप राइटर तो हम डाक में भेजूँ दे असन बल्ला, तहन वापस आइले। ये तो का हूं नाई जो बात सांगे ते बड़ा आश्चर्य लागे थे, संबलपुर ले गाड़ी जाए जगदलपुर तो उसमें 7 रुपया किराया रहे, जाना आना अने 14 रुपया हो, ऐसा सस्ता जमाना रहे। और फिर ये लोग एक महीना में भले नहीं ली मचो जो नियुक्ति कागज आए, तो फिर गए जगदलपुर और पता लगा लेते वो निकलू रहे। तो फिर उठा बल्ला कि नहीं बार बार आना जाना से थी, तो यहाँ महारानी हॉस्पिटल में वो मेडिकल भी करावा और ज्वाइनिंग करा से सन हुंदा सांगला।
1: अच्छा।
0: अधिकारी मन तो सन करुण भाती मेडिकल वगैरह करा ले और इले। और मचो पोस्टिंग जीराम थरी कोयली बड़ा ले लगे गांव आए।
1: अच्छा।
0: 3 किलोमीटर हुंदा घने जंगल रहे, अभी तो मिरली से उठा ज्वाइनिंग कर ले 1/4/1965 के।
1: अच्छा।
0: और फिर उठा हुंदाएं हल्बी बले उन क्षेत्र के मन कोई कोई जानत मानतर गोंडिच में ज्यादा।
1: अच्छा।
0: लड़का मन दूसरा भाषा नहीं जानत, तो मैं बले बचपन ले गोंडी मचो आया सिखाऊ रहे, है ना, तो फिर गोंडी में ही लड़का मन के लेकी मन के पढ़ात शुरू कर लें। अच्छा। हुंदाएं गोटल राहत है ना, हाँ ऐसा नहीं रहा कि ओ स्कूल तो जानत भले नहीं, है ना, तो उतर गोटुल में हम शुरू कर लूँ 3री-4वीं तक होता है गोटुले में, बाद में ऐसा कच्चा भवन बन ली यानी स्कूल के नाम जो, और उठा फिर पढ़ा तो शुरू हो ली। ऐसा ये करते करते गोंडी भाषा के वजह से था जो पीला मन ज़्यादा लगावशील होला गांव के मन भले अच्छा मैंने ये होली, है ना, तो मचो फिर मैं कुंवारा रहे।
1: अच्छा।
0: उन 65 में जो ज्वाइनिंग होली हुंदा है और 64 तक 68 तक अने कुंवारा रहे, तो फिर उठा जो गाँव अने गोटुल के जितना भी लेका लेकी जो भी खेल कूद के हम ही भले शामिल हो हुन नाच तो गाते के भले सीख लें और लड़का मन के भले सीखा तो मैंने ये कर लें, तो उन वजह से गाँव असन बन ली कि मचो काजे कि गुरु जी के जाऊ हमें नहीं दे असन हुन मन बल्ला।
1: अच्छा।
0: मानतर मैं अबुज मारू थले लगे घूमे मन आसात आदनार मन आसात, है ना, उठा आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन जो एक योजना के तहत वहाँ के जनजीवनी काजे शोध के पत्र इला उनके धरुण भाती मैं फिर अबुज मार बाटे जाऊन उठा अने शोध कर लें।
1: अच्छा।
0: मैं शोध नहीं उठाले इलो कागज के, हाँ तो मके असन अच्छा लागली और अच्छा लागली अबुज मार के दखुन भाती, है ना, और उठा जो रासा भाषा, तब फिर मैं धीरे धीरे वही 70-71 के आसपास जनगणना 71 में जनगणना होली हुंदाएं भले जनगणना में पूरा अवशेष खातिर वो जो दाता कल बलसत, है ना, वो मन के शोध के काजे देवधामी जगह में भले जाऊ खोली।
1: अच्छा।
0: तो सन में मके फिर उन पुरातात्विक अवशेष मन के बाद भले ध्यान के लिए और ऐसा करुण पाछू मके फिर कभी

0: ता गोंडी में लिख तो हिंदी में छत्तीसगढ़ी हल्बी में लिखुन भांति। फिर उस क्षेत्र में मके लगाव होली तो मैं कुछ पत्रिका मन में छापू दंडकानंद समाचार जगदलपुर न्यास से तुषार क्रांति बोर्ड उन मन लगे भेजुन भांति उन प्रकाशित भले होते रहे। और मैं मचो नाम बिंडो मारिया अबुज मारी असन लिखे।
1: अच्छा
0: हाँ, तो उनके पढ़ुन कई जन सोचत कि ये कहाँ चुआए अबुज मारी बिंडो मारिया असन। तो लाला जगदलपुरी भले मचो लेख कविता मन के देखुन काफी प्रभावित होल।
1: अच्छा।
0: और जब आकाशवाणी खुली उठा 76 में जगदलपुर में हाँ, तो उनचो बात है। फिर मचो पत्रिका के छपलो ये मन के रचना मन के देखुन तुषार क्रांति बोस उठा अवगत करा लो आकाशवाणी में कि ने उनके भले शामिल करा ऐसा कर। तो उसने 80 में उठा आकाशवाणी जो एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होली अंतागढ़ में है ना, हुंदाए मके माने उताले पत्रीला जाऊकला। तो हुंदाए फिर उन आकाशवाणी को जो जो कवि सम्मेलन में शामिल हो मिली और राष्ट्र भर जो लोग मन एवं रहत। और हुंदाए मचो रचना के या मचो भाषाई के हिसाब से लाला जगदलपुरी इतना माया करुण रहत है ना कि उन पोटारुन भाती मके मंच के में बैठा ले मके खूब लाज लागे सन में छोटे आदमी कसन ऊपर बैठन देवन सन असन। तो आकाशवाणी से भी लगाव उन दिन आए रहे और 3-4 ठुक कविता के बले मके दिला ये गोंडी के बले और हल्बी के प्रसारण काज। इस तरह मैं आकाशवाणी खुल्लो के 80 के बीच में 84 तक मैं जुड़े रहे।
1: अच्छा।
0: और उनसे पाछू फिर

0: ऐसा करुण भांति उतर 3 साल रहे और 5 उतर चौमन गला बलसत की नहीं तो के जाऊ के नहीं दे तो उठा भले कई काम कर लें और उसी प्रकार ऐसा मन भले रोवत छुट्टी देला जिरम तरई मन। तो ऐसे करके मैं शुरू में लेखक शोधकर्ता और शिक्षा को एक नई दायरा में अपनी मातृभाषा में कैसे पढ़ना पढ़ाना चाहिए ऐसे के लगाव होली और बाद में फिर मैं के अंतर्गढ़ विकासखंड में अमोड़ी में हिले और उठा ले फिर पाठ पुस्तक लेखन का जे मके लगाव दिला।
1: अच्छा।
0: ये छत्तीसगढ़ राज्य बन लोग में तो फिर पाठ पुस्तक लेखन में वो पहली से लेकर 5वीं तक का जे उतर रायपुर NCERT में मके संलग्न करुन दिला कि उठा तुम ये करा और फिर कमेटी बनावा और फिर पाठ पुस्तक लिखा आसन बलून उताले आदेश ली उनके पालन कर करुण भाती मैं हूँ संकुल समन्वयक बले रहे मानतर मके शिफ्ट करुण दिला।
1: अच्छा।
0: और बल्ला की नहीं कांकेर में ट्रेनिंग सेंटर खोला बलून परंतु मके आसन लागली कि कांकेर में रख ले तो कहीं नहीं हुई तो फिर मैं सेमर गाँव में होता ट्रेनिंग सेंटर गोंडी भाषा अनुवाद का जे आरचो गुरुजी मन के है ना कांकेर जिला गोंडी के नाम से अंतागढ़ कोयली बड़ा और ये द्रुकोंडल जो टीचर मन के उठा मास्टर ट्रेनर्स के रूप में ट्रेनिंग देते रहे और फिर उसने 2008 में मैं रिटायर हो लें।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह पाठ्य पुस्तक जो लेखन शोध के विषय में लगाव रुचि मचो तो शुरू ले रहे और पर्यावरण के प्रति भी मके माने असीम वो रहे नानी पन ले था जो खेत खार रहे हम जो बाबा दादा मन के तो फिर जब बाटा बटवारा होली हम जो हिस्सा में हिली तो मचो हिस्सा में माने भाई मन ने मैं लड़ रहा रहे तो माँ चो जमीन जो है मचो खाता में हिली।
1: अच्छा।
0: तो उन 11 एकड़ उपराहा मके मिल ली जबकि सभी भाई भाई मन के बाप चो हिस्सा तो मिल ली मानतर छोटे भाई होने के नाते माँ चो जमीन के खाता ही था ही।
1: अच्छा।
0: तो इतना जो पूरा पेड़ पौधा बचपन ने जो देखू रहे कैसे चिड़ई कैसे कोडरी भटलिया है ना वो धीरे धीरे खत्म होते दिखत है ना जब 40 में जन्म आए तो 50 तक तो अच्छी हम देखू रहे ना तो फिर मके विचार ली कि ये खाली पर्यावरण बचाव कहते नारा लगा ले नहीं होई असन बलून भाती था जो जितना पेड़ पौधा मनासत उन जमीन के फिर मैं एक संस्था स्थापित कर लें रिटायरिंग हो जो पहले 1991 में तो जंगो रायतर विद्या के तुलसीचरण संस्थान जैसे आते भी उन्होंने जो 2008 में पंजीयन करा लें है ना और नैसर्गिक पर्यावरण शिक्षा निकेतन ज्ञान बड़ा नाम जो एक और था पर्यावरण शिक्षा का खाजे जोड़ लो आसे असन मालून फिर जब मैं रिटायर हो ले तो उन हुंडाएं GPF रहे कटौती वो निकालू नहीं रहे और घर में भी उतरो खर्चा तो ज़्यादा पूर्वत खेती खार में होते रहे कर लाते तो उन पैसा के फिर मैं रिटायर हो उन भाती आश्रम चलाने 3 साल है ना अब था स्कूल छोड़ लो लेका लेकी मन के तो वो बाट कांकेर के ऊपर मुरवंडी के लेका मानी धनर हरपुर अंतागढ़ बाटे और अभी पहले ये लड़की ये भी 3 साल रहे हुन दिखे से।
1: अच्छा।
0: है ना उसन करुण 3 साल में हुनी GPF पैसा में जो भी चला ले।
1: अच्छा।
0: उन चले पाछू फिर रथ यात्रा का जे मके बल्ला ये हमार राष्ट्रीय गुण महासभा बितामन रथ खरीदिन दिला तो फिर 33 करोड़ देव जो हम जो लिंगो जो शिष्य बलसत हुन मन के करुण भाती फिर मैंने पूरा 2 साल घूम ले।
1: अच्छा।
0: है ना पूरा छत्तीसगढ़ सपाई जिला मन ने फिर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आधा इधर तेलंगाना जो उड़ी में और ऐसा करुण भाती अने आश्रम के निरंतर बाद में चला तो कठिन होली मैं बाहर गए तो उनके बंद करुण दिले से लेकिन उसी विषय में एक और बात रहे कि उनके निशांगले से वो कि ये पाषाणी जीवाश्म एचो प्रति बले मके हुनी अबुजमाड़ इलाका में जो पथरा में देखते रहे उठा गोंडी कहानी में सांग

0: सांगाती कलक बरसान तंग माने ये पथरा बाढ़े से असन होई से उसन होई से तो हुनी लगाव में फिर मैं पथरा मन के बले सकल तो काजे एक मन लागली
1: अच्छा।
0: लागली और फिर सकलते सकलते अभी तो इतनो भंडार आसे कि उठा जाबुन देखले पूरा देश भर चो मैंने पथरा मन उठा संग्रही साल आसत है ना और कते कते तो डगले दिक्सत वो पथरा चो माया चाहे समझुन भाती बल्ले ज्यादा अच्छा हो दे तो ऐसा करुन वो संग्रहालय से इधर फिर इसी जमीन में अभी गुटुल बल्ले बल्ली से और यदि हम चो गांव चो गायता है ना वो मन की अभी जिम्मेदारी जिले से कि इतना ये संस्था मुचो जीवत भर तो मैं चलाएंगे पाचो कसन करूँ असन करुन भाती फिर वो गांव जो गायता है उदे पुनावराम दुगा ये गांव जो भूमियार वाले दुगा मन किया और अभी गायता बले भूमि दुगत मनासत है ना और ये दे अभी वर्तमान में ये झाड़ू राम उका करके गोत्रा और नाम आए और वो हम जो रिलेशन जो आए है ना मामा भाचा सब सन तयाले रिश्ता जुड़ दी से तो अभी वर्तमान में हूं ये आए हम जो दुर्गु कुंडल ब्लॉक जो गुंडवाना समाज जो अध्यक्ष
1: नहीं और आंचला दादा जसन की तो इतलो पूरा जीवना ने बले ने नौकरी करते बले का है कि जो पर्यावरण क्षेत्र जल जंगल के जमा तो बचा तो और समाज जो सेवा काज तो बले पूरा काम कर सी तो बले ने और जसन की पूरा भारत देश ने बले का कोनीता ने असन कहीं जातो तू के मौका मिल ली से
0: हाँ वैसे जातो दिल्ली चार बार गेले से प्रथम बार तो गेले वो भाषा के राष्ट्रपति कार्यालय में आठवीं अनुसूची में शामिल हो सन बलून आवेदन दे तो काजे गेलूँ और हुंचो पाछे फिर एक सीजनर जन पत्रकारिता हुंचो ओर ले मानकीकरण काजे दिल्ली में कार्यशाला रली है ना हुंदाई जाऊ मौका मिली हुंचो पाछे फिर उनके वो ये करतो काजे है उनके ये बुक प्रकाशन के दाय में और बाद में फिर यही पाषाणी और फिर हमारे जो पुरातात्विक अवशेष से संबंधी यानी चार दिन चुका पाँच दिन चु कार्यशाला हो रहे हुए मके फ्लाइट बुक करूँ दिला है ना संस्था बितामन उठाले तो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला मंच में कार्यक्रम हो रहे हुए छह राज्यों प्रोफेसर मन बले और सामाजिक कार्यकर्ता मन बले उठा सकरूल जमा हो रहे हुंदा फ्लाइट में जातो मके अवसर मिली और वो पेन बाना मन जो आसत ना उन पाषाणी बाना बले और जैसन भी हम जो बस्तर के अनुसार हम जो पेन के जो बाना आसत उनके बले नेतो काजे मके अवसर मिली बड़ा दिक्कत हो इसे कसन वो पेन बाना पहली बार मके लेतो काजे और उसमें तो ऐसा नहीं कि दो जन ती जन जाओ अकेला ही या तो होली मानता रूथा दिखा लो ने कोई मना नहीं कर ला और फिर जाओ दिलो असन हवाई जहाज में सफर के भले अनुभव आसे और फिर दिल्ली तक ये बात राष्ट्रीय राजधानी बल्ले दिल्ली जातो के अवसर मिली से और ये बात पूरा मध्य प्रदेश के भले बहुत से जगह मन के जाऊ मने अवसर मिली से आशीर्गढ़ वगैरह इधर के गढ़ बावनगढ़ बलसतुन सब जगह के घूमले से और इसी तरह इधर तेलंगाना में भले बहुत से पुरातात्विक अवशेष जगह में गिले से समाज के मदद से और गोंडी भाषा मानकीकरण काजे में उठा जाऊ दो तीन बार मैंने ये अवसर मिली और फिर ये भद्राचलम बले गेले से उठा बले गोंडी भाषा मानकीकरण और एक पदयात्रा आंध्र प्रदेश चट्टीले पदयात्रा ये शांति यात्रा के नाम में चट्टी से जगदलपुर तक है ना 11 दिन पैदल चलने मचोई नेतृत्व में करुण दिला
1: अच्छा।
0: है ना तो इस तरह हुन बले अनुभव आए और उनके बाद में फिर साइकिल यात्रा जगदलपुर ले फिर वहाँ आपके रायपुर तक के हुन वाले मचोई ये रहे जो भी
1: मार्गदर्शन
0: और उसमें दस्तखत बले जिम्मेदारी बले मचोई रहे करतो का तो वो सीजीनेट जन पत्रकारिता के सुभ्रांशु चौधरी जी उनचो संचालक रहे।

0: मानतर जिम्मेदारी मके देव रहे, पर हुन भी देव कृपा में पूरा सफल होली। इस तरह के हुन पद यात्रा, साइकिल यात्रा, हवाई यात्रा और फिर तमाम अभी डोंगरी पहाड़ वाले चढ़े से अभी गला डोकरा तो होले से हमके 78 साल 9 महीना होली से 3 महीना और बाँचली से 79 साल हो काजे।
1: अच्छा।
0: तब भी मैं आज अभी भी डोंगरी ढंगरे चढ़तो काजे शौक आसे।
1: अच्छा ये संग आचला दादा दक्तु इतलो मतलब खुबे मतलब सेवा अगर करसिस मंत्र का है कि असन कहीं तू के सरकार बाटले नाहले कोई संस्था बाटले कहीं असन सम्मान कहीं पुरस्कार असन बोले।
0: हाँ वैसे सम्मान तो बहुत मिलली से है ना, मैं सम्मान का जे कई जन बोलला कि नहीं फार्म भरा ये करा वो करा वो पद्मश्री ये तो मैं बोलने की मैं उन इनाम झोंकतो का जे कोई मैं काम नहीं करे से जेके अच्छा लागे से तो उन अपन ढंग से सम्मानित करो, मैं फार्म भरुन भाती मैंने नहीं भरे मैं इनाम नहीं लें असन बलतो काजे। फिर मैंने अभी तक उसन फार्म भी टिके मैं नहीं भर ले से देखुन भाती शासन तरफ से भी वैसे तो मध्य प्रदेश रिटायर नहीं हो रहे हैं हुंडाई ने शिक्षा की उत्कृष्ट कार्य काजे आसे है ना, और बहुत सारे गतिविधि में आसे उन जो होता लाइब्रेरी में राख लो भले आसे और कई ठन आसत उन लिखित में बल्ले ज्यादा अच्छा रहे थे कते कते के सांगे ने समाज बांट ले गला मिर्ली से और प्रकृति पर्यावरण के नाम से जैव विविधता के लिए फिर संस्था के मिर्ली है ना।
1: अच्छा।
0: हाँ वो फिर पुरस्कार के रूप में मिल लो है ना मुख्यमंत्री के हाथ से ही उदा कोरोना काल रहे 21 में अंतर वो दिला।
1: अच्छा।
0: हाँ उन फिर राशि सहित उन दिला है ना।
1: अच्छा।
0: वो है यानी सम्मान पुरस्कार और कुछ और भी मके शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट नाम एक गोयल कंपनी उन भले सम्मानित करला।
1: अच्छा।
0: इस तरह करे बहुत सारे सम्मान पत्र आसत।
1: अच्छा।
0: और समाज बांटले भले प्रमाण पत्र देसत।
1: हाँ और आंचला दादा दख ये ब्याह में दुखों से आगे जसन की अब जो आगे चो परंपरा चो जो आम चो जो सामाजिक व्यवस्था है रीति निवाज है आर्थिक व्यवस्था है जो सांस्कृतिक व्यवस्था है बोले ने आगे दख लेने अरे भी दख लेने खूब फर्क आ से।
0: हाँ।
1: तो ये चो कहीं बचा तो संरक्षण का जब कहीं।
0: हाँ तो हुई अभी आगे कसन रहे और अभी कसन चले से ये दख तो और सुनतो में कि हम ही छोटे रह लू इंकावन बावन ले थोड़ा सा माने परसों पीला बनला बनलू तो हुन दाय ही इलाका चो जो रीति रिवाज रहे लोग मन में जो ईमानदारी सच्चाई मेहनत रहे हुन आज जम जम ये बात समय बीतते जाए से आदमी मन के जनरेशन बदलत जाए से तो और आज उसन ने लायक नहीं रहे जसन हम चो बाबा दादा हाँ, परदादा मन के जमाना में रहे या हम चो बले लेखरूपना ले लेकर ले जवानी किशोरावस्था जवानी ले और अभी तक के जो आसे अभी जो मानुक मन के हुसन माने अनुशासन नहीं आए पढ़ाई लिखाई भले ज्यादा होली कोई आई

0: के भले बराबर ही था, हम जो कार्यशाला लगाऊं उसे।
1: अच्छा
0: जी
1: हाँ, अनुभव हिसाब ने इतलो दिन तो पूरा काम कर लिस, बहुत सारा काम कर लिस, मानते रहे वे तो जो उम्र बोले का है कि मतलब 80 साल लगभग समझो ही
0: हाँ, तीन महीना 79 हो चुका
1: तो,
0: है,
1: हाँ,
0: मंत्र 25 में 80 साल के होंगे।
1: मंत्र दर्शन की तुचो जो स्टेमिना जैसे हमें ताकत बोलुक सकू, इंडा बुला राहन सहन गोड बात बोले ने एचो बोल कहीं ना कहीं आसन तुचो ऊपर कहीं आस है, कहीं खान पान नहीं आए, नहीं तो व्यवहार नहीं आए बोले ने एक ही बल मैं जानुक चाहे से
0: हाँ,
1: कसन बल लिखा है कि अब जो नवा पीढ़ी बले जान दे।
0: जी जी जी जी हाँ, तो खान पान पहले जो खान पान जो रहे एकदम विशुद्ध रूप से वनस्पति है ना, हाँ के रूप में गांव चो खेत चो अढ़िया में हुन एक प्रकार के बल दिली है ना, हम जो बचपन में और जवानी तक, और हुनचो पाछे जो आदत व्यवहार में जो आजकल खान पान में काफ़ी बदलाव आसे है ना लोगन मंचो, हुसन में थोड़ा सा जैसा कहीं नशा पान आए कि कहीं और आए, हुसन मन के मैं अपन के ऊपर लागू नहीं कर लें, तो चो वजह भी आज मके सन जीव एक अवसर मिली से। हाँ, चूँकि ऐसे तो हल्का फुल्का वो एक बात और सांगे से, पहले हम जो सियान मन माखुर खावत, माखुर बले हुन अपन उपजावत, अपन सुताई जो चूना बनावत और खावत, और उनके सांगत की नहीं जे आदमी जवानी पन ले कि पाछू ले खाए दे माखुर, हुन के सांप काट ले जल्दी हुनचो भिक के असर नहीं पड़े। हाँ, हुनचो का जे फिर हुसन कहते के माखुर चो आदत पड़ ली, हाँ चूँकि माखुर के तो उतरो नहीं पड़ी, तो हुन एक आदत पड़ ली से, और अब भी ये भी 55-56 ले हमके चाह देखो मिले वो भी सियान मन पीवत, आज वो चाह इतने हावी होले से कि मैं भले 3 पहर 4 पहर रोजे पिए से चाह के, और अभी के लयका मन भले पीसत, तो ऐसन में ही हम जो प्राचीन परंपरा जो खान पान और आज आधुनिक बदलाव है ना उम्रला माने तिड़ी बिड़ी कर ले से, उनके अगर हम मैंने पीछे परंपरागत खान पान के रवैया के अपनाऊं तो ज़्यादा नया पीढ़ी आगे जाए दे नहीं थे ऐसा लागे से, काबर कि आज हम ही देखू सु चाहे गांव हो चाहे घरे हो चाहे सगा समाज में, जो पहले देखो को सन नहीं मिले कहाँ कलार भट्टी वगैरह राहत सियान मन वो कहीं त्यौहार व्यवहार शादी में एकाध कहीं पीवत, मानतर आज ऐसा देखो को मिले से कि घर घर गांव गांव भट्टी होली हाँ कहाँ से अंग्रेजी शराब खून में बाकुन भाती, हम जो घरे परिवार हो चाहे गांव हो चगा ये डूब जाए से, ये जो बड़ी चिंता से है ना, एक समाज भले मिलुन भाती एक अच्छा मैं ये बनाऊं तभी ये आगे आने वाला पीढ़ी सक्षम हो दे ज्यादा डुबान क्षेत्र में जाऊं सो।
1: हाँ, अच्छा आंचला दादा दक्त सिंह मतलब अच्छा गोड बात होली बोले तू जो पूरा जीवना चु जो अनुभव हिसाब ने बोले ने एबे भविष्य बोले ने आगे बोले ने समाज के बोले तु कसन रूप ने दखुक चाहे कसन रूप ने समाज ने कहा कि उन मन चुपरे उदी मारो हरिक रह दे।
0: तो जसन की मैं अपन अनुभव सांगे से जसन अपन बौद्धिक रूप से सांगलोई काज नहीं हो आदमी स्वयं भी एक बौद्धिक प्रक्रिया अपना हो, जैसा कि मैं देख अभी भी मैं चश्मा नहीं पहने हमारे चश्मा के शादी नहीं है, मैं चप्पल भी जैसा रिटायर होले हूँ तो फुल पैंट वाले पहनते रहे पैजामा वाले उनके छन उन दिले जैसा रिटायर हो उनकी चप्पल वाले नहीं पहने अरे चश्मा वाले नहीं लगाए, तो हुन ऊर्जा कहीं ना कहीं से मिले से। हाँ, और फिर सरल खान पान जसन मिले दे अपन पहले हुन आधुनिक खान पान की ओर ज़्यादा वो मैंने वो नहीं आए रुचि नहीं आए, तो उसने ढंग के आज जो लड़का मन अगर एकर थे या फिर के समाज के दायरा में मैंने समझाओ कुला हम सब पूछ मालूम काजे एक आदमी कितरो ही सांगो लेकिन उनचो गोट के कोई नहीं मानत, मगर समाज इकट्ठा हो उन भांति समाज चो

0: आनमान गांव चो गाय तामन माने एक ये होन भाती है ना ये कर दे तभी ये आने वाला पीढ़ी भर एक सच्चा और अच्छा मार्गदर्शन हो दे ऐसा नमक के लागे से अंजे
1: अले अच्छा आंचला दादक तुझ संगाजी इतलो अच्छा बोले तुम चो गांव ने बोले ने यून भाती बोले तू चो पूरा जीवना चो जोन कहानी जोन कठिन परिस्थिति बोले ने पीला बेरा तू चो सोच समाज चो प्रति काय रेली ये सब कहानी के बोले ने सांगलीस आम चो रेडियो सुन तो भाई बहन मन जरूर सुनसोस होती कहीं ना कहीं मन की सीख मेरे दे मार्ग मेरे दे प्रेरणा मेरे दे और समाज के मतलब परिवार के गाँव के और पूरा समाज के बल्ले ने कहा कि उद्यम बना तो कहा कहीं ना कहीं उनमें पूरे उन काम कर दिया खूब खूब जोहार
0: हाँ जोहार हाँ जो
2: आजी चो सगा इसमें आप सुन रहे थे शेर सिंह आंचला से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गुड़दुम। इसमें हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कलाकार हैं त्रिलोक साहू और साथी।

0: खेत डहर जाथो खेत डहर जाथो खेत डहर जाथो।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेष

0: चार बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782222266। फोन इन किसानवाणी। आपन मन चो सवाल, आपन मन चो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: गुरुदिन में आप छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं त्रिलोक साहू और साथी।

0: कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे त्रिलोक साहू और साथियों का गाया हल्बी गीत मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं।
1: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
5: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर फिल्म अभिनेत्री रेखा की फिल्मों के चंद नगमे। श्रोताओं, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री रेखा का वास्तविक नाम भानु रेखा गणेशन है। इनका जन्म 10 अक्टूबर सन 1954 को चेन्नई में हुआ था। इनके पिता का नाम जेमिनी गणेशन और माता का नाम पुष्पावली गणेशन है। उनसे जुड़ी और भी बातें हम कार्यक्रम के आगे सुनेंगे। पहले सुनते हैं फिल्म इजाजत का ये गीत। इस फिल्म में अभिनय किया था रेखा ने।

श्रोताओ, हिंदी सिनेमा जगत की सदाबहार मशहूर अदाकारा रेखा ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया सन 1966 में बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्म रांगुला रत्नम से। इसके चार साल बाद फिल्म सावन भादो में इन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाई। खूबसूरती की मिसाल कही जाने वाली अभिनेत्री रेखा ने अपने करियर के 40 साल के फिल्मी सफर में अब तक लगभग 180 से भी अधिक फिल्मों में बेजोड़ अभिनय किया है। लीजिए सुनते हैं रेखा अभिनीत फिल्म उत्सव का ये बहुत ही सुमधुर गीत।

श्रोताओ, फिल्म अभिनेत्री रेखा को 3 फिल्म फेयर अवार्ड, 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब और 1 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सन 1980 में प्रदर्शित फिल्म खूबसूरत के लिए, सन 1988 में प्रदर्शित फिल्म खून भरी मांग के लिए और सन 1996 में प्रदर्शित फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के लिए। सन 1981 में प्रदर्शित फिल्म उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।

0: श्रोताओं, फिल्म अभिनेत्री रेखा का बचपन काफी संघर्षों में बीता। उनकी पहली फिल्म सावन भादो सन 1970 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म में शुरुआती दौर में उन्हें अपने रंग रूप और वजन के कारण काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने में खुद में एक बदलाव किया और अपनी हिंदी में भी सुधार किया और एक ग्लैमरस आइकन के रूप में उभर कर सामने आई। सन 1970 और 80 का दशक रेखा के फिल्मी करियर का सबसे बेहतरीन समय रहा है। इस दौर में उन्होंने फिल्म घर, जो सन 1978 में प्रदर्शित हुई थी, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, जो सन 1978 में प्रदर्शित हुई, और फिल्म खूबसूरत, जो सन 1980 में प्रदर्शित हुई, इन सभी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने बेजोड़ अभिनय का लोहा मनवाया। रेखा अभिनीत फिल्म सिलसिला के सभी गीत काफी लोकप्रिय हुए और ये फिल्म दर्शकों द्वारा और आलोचकों द्वारा काफी पसंद की गई। लीजिए सुनते हैं उनकी अभिनीत फिल्म सिलसिला का ये बहुत ही प्यारा सा गीत।
1: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

श्रोताओ, भारतीय सिनेमा में रेखा के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 2010 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा सन 2012 से 2018 तक वो राज्यसभा की मनोनीत सदस्य भी रह चुकी हैं। इन्हीं बातों और गीतों के साथ कार्यक्रम एक ही कलाकार अब समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था मशहूर अभिनेत्री रेखा पर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के

0: जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 11:30 हुए हैं।
1: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम गुलदस्ता, आज इसमें आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत और गजलें। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल से। कलाम है जावेद अख्तर का और धुन तैयार की है जगजीत सिंह ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अदनान सामी की आवाज में। इस गीत को लिखा है रियाज उर रहमान ने और धुन तैयार की है अदनान सामी ने।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम की अगली गजल अब हम आपको सुनवा रहे हैं मेहदी हसन की आवाज में। कलाम है फैज अहमद का।

0: आशा भोसले और जगजीत सिंह की आवाज में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का यह अगला गीत।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने।

0: केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा

0: और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देशभर के सभी जल भंडारों की निगरानी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चालू खरीफ सीजन और संभावित अल्प वर्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को किसानों के लिए खाद, बीज और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश को 46,000 टन से अधिक डीएपी उर्वरक की आपूर्ति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार पर विशेष जोर देते हुए सभी जिलों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त रासायनिक खाद उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की बुद्धि और प्रेरणादायक विचार लाखों युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में देश को नई दिशा प्रदान करती रहेंगी। जल शक्ति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर सातवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किया है। सभी आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। पात्र संगठन, संस्थाएं और आवेदक अधिक जानकारी के लिए पोर्टल या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग की वेबसाइट jalshakti.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले चार दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कबीरधाम जिले के भोरमदेव में पर्यटकों के लिए भोरमदेव इको ट्रेल की शुरुआत आज से होगी। वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि इको ट्रेल के दौरान पर्यटकों को अनुभवी नेचर गाइड के साथ भोरमदेव के वनों का भ्रमण कराया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आज समापन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। पेश है फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति है संपत राम नाग की। संयोजन है चंद्र ऋषि ठाकुर का।

0: फोन इन लोगरस के सुन तो सपा दादा दीदी मन के मच बाटले जुआर हाले सुनु पहिल फोन काचो आए।
1: हेलो फोन इन लोगरस
2: दादा जुआर ना।
1: हाँ जुआर दादा आगे ना संगास नहीं ना कौन बोला सास?
2: मैं सुनील यादव बनेश दादा ये केस का लगा मोड़ा ले।
1: या दादा संगा ना ये पानी कसन आ जाले?
2: पानी तो ना आजकल बदरी बदरी रोज है ना पानी तो गिरे से बीच बीच में गिरु आज बदरी तो आजकल आसित ना जून देखा जाए देर वाले।
1: हाँ हाँ मारे से लेकिन कौन कौन वाट मारे से नहीं उतलो नहीं मार लिया।
2: हाँ बीच बीच में मारे से जन दादा।
1: हाँ हाँ क्या बुता करूँ आज दादा तुम्हें?
2: मैं ना हनी बेंजो बसत नहीं ना हनी बजाए से दादा मैं।
1: अच्छा
2: बेंजो बजाऊंगा उनके बाद पेंटिंग वाले कार्य करने से मैं खाली खाली टाइम में।
1: बेंजो बजा कहाँ सीख ली दादा तुम?
2: मैं ना यूट्यूब में ऐसे देखून देखून सीख ले दादा। यूट्यूब ले क्लास सीख ले मैं बिहार मन में जैसा कार्यक्रम रामायण वगैरह
1: अच्छा बिहार रामायण जहाँ जहाँ सांगले जाऊन
2: बजाऊंग
1: कोर्स वगैरह धरून सीख लीस का
2: नहीं मैं असने इंटरेस्ट रहे मचो सीख तो छो।
1: हाँ
2: मैं असने ब्रश चलाते चलाते बिहार मन में असने कहीं कहीं स्कूल मन में लिख लिखे मैं करूँगा कर ले सीख ले दादा।
1: किस साल असन ऐसे न सीखन बाती
2: होली दादा मैं स्कूल जसने छाने उसने 2015 लगभग ले मैं 10 साल होली 9-10 साल।
1: पेंटिंग कर तो काजे और बेंजो बजा तो काजे आग दिवात ने।
2: आग दिवात आन जातो है काम के करूं दे।
1: सुनील दादा कितलो तक पढ़ लीज जाल ना तुम?
2: मैं दादा उसने 12वीं पास से प्राइवेट मन में दिलान भाती कर ले से जान।
1: अच्छा प्राइवेट ने कर ली से इसने।
2: हाँ फाइनल तक बीएस।
1: हाँ बीएससी फाइनल ली से।
2: हाँ 12वीं रेगुलर होली हाँ। प्राइवेट में कर ले।
1: और आगे चो पढ़ाई ना दादा?
2: आगे तो ना घर में गला खेती बाड़ी चले से जान दादा ट्रैक्टर वगैरह से तहन चला तो गला होई से। हाँ मचो उसने पर्सनली काम बन सीखने से तहन होई से जान काम।
1: हाँ काम चले से नहीं है। सुनील दादा सांगा ना जी कौन गीत के सुन तो काज फोन लग रहा था?
2: दादा योगेश्वर पुजारी चो कोनी बोले हल्बी वाला गीत सुनाओ दे दादा।
1: योगेश्वर पुजारी चो हल ठीक है सुनील दादा तुम चो मन कर लो गीत के सुनाओ।
2: ठीक है दादा धन्यवाद ना।

0: हेलो, पोनिन लोगराज।
1: राजा प्रणाम आपको। हम रेलवे कॉलोनी से बोल रहे हैं, रमेश भारद्वाज।
0: रमेश दादा सांगा ना।
1: रेलवे कॉलोनी जगदलपुर से। और
0: हाँ
1: सब ठीक ठाक चल रहा है?
0: हाँ
1: आप लोग का दुआ है, ऊपर वालों का दया है, सब ठीक चल रहा है? जी।
0: और भारद्वाज दादा सांगा ना, ये पानी कसन आ जाले।
1: पानी देखिए इधर बहुत गिर रहा है पानी, कहने में सुनने में आया है कि बरसात इस साल कम है।
0: हाँ इस
1: गिर रहा
0: पानी।
1: है, गिर रहा है।
0: हाँ
1: इसमें क्या है, खेती किसान वालों को बड़ा मुश्किल है ना?
0: हाँ
1: क्या रोग, बहुत मुश्किल है।
0: हाँ भारद्वाज दादा सांगा ना, आज कौन गीत के सुनते का फोन लगा ला।
1: पटनायक का गाना सुनना, पटनायक जी का। हाँ मेघराज पटनायक। हाँ
0: कौन
1: उनका वही है।
0: चल ठीक है रमेश दादा, तुम चमन कर लो, गीत के सुनाओ से सुनाते हुए ना।
1: जय जोहर,
0: जय जोहर।

0: हेलो, कौन इन लोग रहा?
1: दादा
0: हाँ, जुआर। कौन बोला सर? दीदी।
1: मैं पूनम बोले रे।
0: हाँ, पूनम दीदी, कहाँ स्कूल ने आसास की घरे आसास?
1: नहीं दादा, ए बार तो खुब्बे खुब्बे पानी मार ली गुनु की स्कूल छुट्टी करूं दिला 2:30 बजे।
0: हाँ,
1: घरे बोल तो बुता चले से काय तब हम आओ सासे तो सेमी लगाओ से।
0: और दान दानी ना जून?
1: नहीं धान हम नहीं लगाऊं दादा, ये 5 एकड़ 4 एकड़ का सब्जी सी लगाऊ। हाँ, दही सेमी और बरबट्टी और भिंडी तीन वेरायटी लगाऊ से।
0: हाँ,
1: ये बाट पूरा जोतरा लगा ला सोचता है सब गांव से लोग पानी मारे से।
0: पानी ये बाट बोले दो बादरी रहा तो मेरा हमारे से जानू कोनी कोनी बाटे।
1: नहीं खूब पानी मारे से, घूमर बाटे तो खुला है, घूमर पानी मारे से। घुमन घुमन पानी मारे से घूमर ने।
0: नहीं पानी अबे ये तो रहे मार ले तो तब तो खेती बाड़ी कर तो बिता उनका चाव दे
1: नहीं,
0: तो किसान दादा दीदी।

0: ए बाटे पानी मारुचे खूब सुरे त पेड़ पौधा बोल खूब आसे नहीं हरियाली आसे तो ए बाटे पानी मारुचे आए उन गर्मी बेरा बोल खूब पानी मार ली और सब जन कसन आसा आप मन मन
1: आमी सपाया चासु आ तुम्ही कसन आसा जाले
0: आमी तो सब अच्छा आसु काय हम तो आपला आपले बूटा करू से और घरे बोले काम आसेल घरे बोले काम करते रहो दादा आमी बसून नी रहो काही ना काही काम करते च रहो हां
1: पोका बसून नी रहतो रे असन बेरा काही ना काही काम बूटा करू क्लाक तो रहे जानो
0: करतो का तो खूब काम आसे दादा लेकिन जितरो फरक तो कुछ उतरे तो करून दे काय लेकिन करतो ही है काय होता बसरो ले काय मिरे दे दादा
1: काय नी मिरे काय
0: फालतू बसरो ले ने एबे बोले कम पानी नी मारे से
1: एबे बोले नी छांड ले से ने
0: नाही नी छांडे दादा ये ते मैं छत छका खाले खड़े खड़े हो उन बाकी बात रहते उठिया है ते तुमके नाही मुके पानी भीज तो अच्छा लागो है दादा
1: नहीं कुबे पानी ने बोल नहीं बीच तो रहा अचानक बीजन दिले सर्दी कांसी जूड़ बोल दरू आए नहीं
0: हाँ दरू आए जाते हैं फिर हरिक लागू आए नहीं
1: हरिक तो लागू चाहिए है लेकिन खुद केवल दख्त तो रहा जानो
0: हाँ काय हूँ तो अच्छा स्वास्थ्य रहले अच्छा जीवन है काय नाले फिर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहले काय अच्छा नहीं लागे दादा
1: हाँ अब पूनम दीदी संग आज कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सर
0: फिर पाटे पानी मारे चालू पानी मार सो दीदी गीत के सुना दिया काय दादा पानी मारी गला छाई पानी मारी गला छाई पानी मारी गला छाई रे दादा पानी मारी गला छाई ये गीत के सुना दिया
1: हाँ ठीक है पूनम दीदी तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए

0: हेलो पोनी लोगराज।
1: माँ महामाया चौक मेघा पारा लोहरी से राम कुशल पटेल।
0: हाँ और पटेल दादा सांगा ना कसना सर तुम्हें।
1: सब बढ़िया सर। पानी वानी गिर रहा है गांव तरफ तो।
0: हाँ यो कितलो मारे से ना पानी।
1: पानी तो 2-3 दिन से लगातार गिर रहा है।
0: हाँ और धान धानी बुनुक सार लास दादा।
1: हाँ सब धान उन सब बोई चोई चलत है।
0: हाँ और रोपा बोले आए कई कसन।
1: रोपा ऊपर नहीं है, ट्यूबवेल वाले साधन के रोपा ऊपर लगे है।
0: हाँ
1: बाकी सब मोटा उतर चलत है, ट्रैक्टर नांगर बैला।
0: पटेल दादा धान संगे संगे और काय काय बुनवास ने।
1: धान उखर बाद देते गेहूँ तिवरा चना।
0: अच्छा उन तो शीतकार विराज है फसल ने।
1: हाँ हाँ धान के बाद वो आते दो फसल होते।
0: हाँ पटेल दादा सांगा ना काय काय।
1: अब तो अभी तो वर्तमान मामा ना हैदराबाद मान।
0: अच्छा हैदराबाद काय काज गिला सर दादा। हाँ
1: काम करे पर मिस्त्री काम कर सन।
0: अच्छा मिस्त्री काम करूँ। हाँ
1: हाँ अभी तो हमारा साल भर होगा सर।
0: अच्छा साल भर होली से इतिहास ने।
1: हाँ बीच बीच में आ जाते हैं शादी के समय गिरे घर।
0: हाँ
1: हाँ दीदी बाहर।
0: हाँ पटेल दादा सांगा ना जी कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सर।
1: तो कोई भी लोकगीत।
0: हाँ ठीक है पटेल दादा तुम चमन कर लो गीत के सुना सुनाते हुए।

0: फोन ही लोग रस
1: अभिया नमस्कार गा
0: ना नमस्कार आगे नाव सांगास नाही दादा कोण बोला सास तुम्ही
1: योगेश जांगडे बोला था मी आशीर्वाद बांधा घेण्याचा
0: और योगेश दादा सांगा ना कसा ना सास तुम्ही
1: बस ते भाई के भैया कले धान बोवाई काम चालू करे हैं
0: धान दानी बुनुक सारलास बे तुम्ही
1: हाव हाव हाव धान बोवाई सुरू करे हैं
0: अच्छा नी सारला सास ए बे चले से ने दादा सांगा आज कोण गीत के सुनत काज फोन लगला सास ना
1: दे तो आज बारिश घलो बढ़िया होत है तो बढ़िया से गीत सुना दे
0: हल ठीक है योगेश दादा तुम च मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते बे ना

0: हेलो पोनिन लोगरास,
1: हेलो, नमस्कार भैया।
0: नमस्कार। आगे नाम संगा सुनाई दादा, कौन बोला सा, कहाँ ले बोला सा?
1: मोहल्ला में संतोष कुमार सोनी, गोल बाजार, खपरीतला, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़।
0: और संतोष दादा संगा ना, आजकल काय काम बता चले से?
1: आजकल तो खेती किसानी अभी दुकान है ना, किराना दुकान है।
0: हाँ, काय काय ऐसे
1: अब
0: दुकान ने दादा?
1: माने जनरल सामान है, पूरा
0: हाँ
1: डब्बा उब्बा है, जनरल सामान।
0: अच्छा।
1: अब बाजार है, आज गुरुवार को बाजार लगते हैं।
0: अच्छा, गांव नहीं लगुआ है कि उन लगे कोनी दूसरे गांव है?
1: गांव से फोन करे हम। हाँ,
0: हाँ। और संतोष दादा सांगा नहीं हो,
1: बहुत
0: पानी कसन है तुम चौबाटे,
1: है। हाँ,
0: पानी कसन मारे से? हाँ
1: पानी वानी तो अभी गिरी से बहुत।
0: हाँ
1: हाँ, अभी गिरी से अभी अंजोर हो गए, माने घाम हो गया है। हाँ,
0: हाँ और
1: बहुत
0: संतोष,
1: दिन बाद के फोन।
0: बहुत दिन बाद लगा ली से इसका, है ना?
1: एक तो यार केदार यादव के बागे बगीचा।
0: हाँ, ठीक है। तो संतोष दादा तुम चमन कर लो, गीत के सुनाओ से ना, सुनाते हुए।
1: हाँ।

0: हेलो पुनील लोगराज,
1: राम राम, जय जोहार।
0: जय जोहार। आगे ना संगत नहीं दादा, कौन बोला सर?
1: मैं देवे तरल बोला था, आप मयारू साथी सुरेश कुमार सारथी।
0: हाँ सुरेश दादा, कैसे ना सर तुम्हें?
1: सब बढ़िया सब बढ़िया। अभी कहा है दे बरसात, अब आसार लग गए, बरसात शुरू हो गए।
0: हाँ तो
1: खेती बाड़ी के काम में सब जुट गए हैं। अब बुआई वही काम शुरू हो गए है। तो अब पेड़ पौधा घलो लगा है, बर पीपर लीम के 3 ठन झाड़ लगाए हैं भैया। और जतका हमारे संगवारी सुना कोई तेनो मन से बिनती आवे की एक पेड़ बिल्कुल लगावा है, ताकि आगामी आने वाले भविष्य और पीढ़ी भर न जल संकट और भीषण गर्मी के प्रकोप मत झेल सके।
0: के हम जो सुन तो दादा दीदी मन बोल सुन लावे और सुन बात फिर सुन मन बोले आप लोग मोरा ना है बेड़ा है नाल पर बाड़ी ने जो संपन्न है नाल पर तेरा है पाक पर बूटा मन के लगाओ आगर ले आगर ने।
1: हमारे तान भाई मन के काम बुरा शुरू हो गया भैया।
0: हाँ ये बात बोले शुरू होली से कोनी कोनी बुन तो बिता बुने सो तो आजकल पाला बोल पकाला से।
1: औती भर के मौसम कैसे है भैया?
0: हाँ ये बात बोले असनिया है ये सुरेश दादा पानी मारे से कोनी कोनी बाटे।
1: हमारे तरफ तो पानी शुरू हो गए है। पानी अच्छा बेने तरह मैंने 1-2 घंटा गिरे पानी है। और जैसे मैं सारथी हूँ तैसे मोर काम घलो सारथी के भैया, तो मैं गाड़ी लेके अंबिकापुर आया हूँ।
0: हाँ
1: लगा है फोन लग दे भैया।
0: हाँ नहीं लगा तो रहे। हाँ सुरेश दादा सांगा ना जी कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सर?
1: खेती बाड़ी के तो मौसम आ गया था, अपन हिसाब से खेती बाड़ी के गाना बजा दू भैया सुगर।
0: हाँ ठीक है सुरेश दादा तुम जो मन

0: हेलो पोनी लोगराज।
1: हाँ, जय जोहार दादा।
0: जय जोहार दादा। आगे ना संगस नहीं ना, कहाँ ले बोला था।
1: मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से गोठियावा था, मुकेश कुमार स्वर्णकर। पहली से पांचवी तक के लड़का मतलब पढ़ाता हूँ, और अभी अभी का स्कूल में हवा पानी गिरत नहीं है इसे।
0: तो संजल तू गुरु जी आस मुकेश दादा।
1: हाँ,
0: कसन लागू है ना पिलावन के पढ़ाते ने। तो नानी पिलावन ने बरती हो तो पिलावन की दिक्कत हुआ होती ना पढ़ाते ने।
1: अरे बहुत दिक्कत होते है कि मतलब चुप कराए इवन मस्ती करने वाला ज्यादा होते हैं। तो कहानी कहानी या किस्सा के जरिए कंट्रोल कर किए जाते हैं।
0: सांगा दादा आज कौन गीत के सुन तो आज फोन लगा ला सास।
1: विदुषी ममता चंद्राकर के कोई भी गीत सुनवा दो।
0: ठीक है मुकेश दादा, तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: फोन लोगरास
1: हाँ दादा जोहर ना
0: जोहर ना आगे क्यों ना संगस नहीं दादा कौन
1: मैं
0: बोला सर
1: कामेश्वर कोराम बोले से हंग वाले
0: और कामेश्वर दादा काय काय काम बता करुआ ना तुम्हें
1: गैरेज काम करे से और साथ में किराना काम है और आजकल फिर दान रोपे चले से
0: हाँ गैरेज ने काम बोल करुआ संगे संग घर चो काम बोल करुआ ने और काय बोलिस किराना दुकान
1: किराना दुकान वाला है
0: कामेश्वर दादा कितलो तक पढ़ला सर तुम ना
1: मैं बारहवीं पास कर ले से
0: हाँ हाँ ये गैरेज काम करूँ साल से नौ से करी सी
1: मैं चार साल सीख ले हूँ कुंडगा हूँ अभी तो लगभग आठ साल हो मैं करे से
0: दुकान खोल ली थी इसने और किस जन तू चो संग काम करे सर जल ना
1: मैं अभी एक ही जन करे से
0: एक लाय करी थी इसने
1: एक लाय करे
0: ये गांव नहीं यहाँ से का ये
1: गांव में यहाँ
0: और दान दानी सार लाज भी दादा तुम्हें
1: सार आधा होलीस जन और आधा रोपा चले से
0: रोपा भी थी बात ली से बने
1: रोपा भी थी बात ली से पानी बोल तो नहीं गिरते रहे अभी आजकल गिरे से खूबे दिन हो लो नहीं लगा लो आए का आज लगा दखें तब बोलते लगा लो
0: लगाते रहते तो रहे का बीच बीच में
1: और बाकी दिन फिर दूसरा बल समय देता है नहीं
0: हाँ जानो कामेश्वर दादा ये दान संगे संगे और का जोंदरा बोल लगा ला सासना तुम्हें
1: नहीं इस जोंदरा नहीं

0: नहीं लगा।
1: लगाते रहे का 2 साल हो लो आए उनके बाद में अभी ड्रिप बना लें सेठ ड्रिप में तो मिर्ची लगाए
0: अच्छा एबे मीरी मन लगा ले सके नाजुन।
1: नाजुन लगाए अभी अगस्त से बाद में लगाऊं
0: हाँ दादा संगा ना जी कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा
1: ये
0: लगा।
1: मेघनाथ पटनायक चो ये कारी कारी बद्री भी थी
0: हाँ हल ठीक है काम सर दादा तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते बिना।

0: 7782 लगाऊक निबुलका एदाय पोनिन लोग्रासले मके दिया विदा जुवार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण

0: का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि समय की बिड़ा खड़ा चौगोट।
2: कास्तकार दादा दीदी मन दार मांदी ने गोटक होय से कांदुल एचो दार कायस रसिया सुंदर लागे से। आज मैं तुमके कांदुल दार चो उन्नत कमानी वाट के सांगे से। सबले आगे जाना की एचो कमानी काजे भूं के कसन तैयार करतो राय। कांदुल चो कमानी काजे पानी निस्को असन मंजिले करिया माटी भीती भूई जेचो पीएच मान 7.0 ले 8.5 रहो। हुन खूबे नंगत रहे से। एचो काजे देसी नांगर नहाले ट्रैक्टर ले बेड़ा के खूबे गणियाले झपतो राय। फिर लगड़ा मारून बेड़ा के सम बनातो राय। लेख करतो राय कि बेड़ा ने पानी के निस्कातो काजे नंगत सुविधा रहो। कांदुल चो बुनतो समय आए चमास बतर मूर होतो समय। चमास मूर होतो संगे संगे एचो बुने करून देतो राय। धाड़ी चो मंजी कितरो लाफी रह दे एके बले जाना। झपके पाक तो बीती किसी मन काचे दुई भीता महा और मंजी समयाने और बेरले पाक तो किसी मन काचे तीन भीता महा लाफी संगातो राय। बूटाले बूटा लाफी 4 इंची महा और बेरले पाक तो किसीम काचे 8 ले 10 इंची महा लाफी रहतो राय। एचो नंगत किसी मन आत उपास 120 ICPL 88,039 ट्राम्बे जवाहर 501 JKM 7 JKM 189 ICPH 267 हारक फेर जाना। एचो नंगत किसी मनात उपास 120 ICPL 88,049 ट्राम्बे जवाहर तुअर 501 JKM 7 JKM 189 ICPH 267 एदाय जाना कि कितरो बीज लागे से आरु बीज बीज उपचार चो उवाट कसन आए। झपके पाक तो बीती किसी मन चो 20 ले 20 किलोग्राम आरु मंजी समयाने पाक तो किसी मन चो 15 ले 20 किलोग्राम के बुनतो राय। बुनतो पहिल कांदुल के फफूंदी नाशक दवाई 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम ले बीज के किलो हिसाब ने उपचारित करतो राय। एनी होलो ने विटावैक्स 2 ग्राम आरु 5 ग्राम ट्राइको डर्मा गोटो किलो हिसाब ने उपचारित करतो राय। खत भात बुनतो समय 20 ले 25 किलोग्राम नत्रजन 40 ले 50 ग्राम स्फूर 20 ले 25 किलोग्राम गंधक 2.5 एकड़ गोटो हेक्टर चो हिसाब ने जिंक सल्फेट के सरासरी बेरा भीकरलो ने उपजन सकत बाड़े दे। एदा एचो मिंजानी चो गोट के बले जाना। लाटा बूटा मन के मरलालो ने मल्ला तो काजे 20 ले 25 दिन ने पहिल हार मिजानी करतो राय। फिर फूल फूट तो पहिल दूसरा हार मिजानी करतो राय। मिजानी करतु वाट के फिर हार जाना। लाटा बूटा के मरला तो काचे 20 ले 25 दिन ने पहली हार मिजानी करतो राय। फिर फूल फूट तो पहिल दूसरा हार मिजानी करतो राय। एचो और गोटक उपाय आसे हुन आए नींदा नाशक पेंडीमिथालिन 25 किलोग्राम सक्रिय तत्व एके 2.5 एकड़ चो हिसाब ने बुने कर लो पाछे उपयोग करतो राय। एके बुने कर लो पाछे उपयोग ने आनलो जाले पाछे मिजानी करुक नी लागे। किसान दादा दीदी मन असन नंगत उन्नत वाट ले कांदुल चो कमानी करून तुम्ही आगर ले आगर फायदा कमाऊ सकास।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बिड़ा खड़ा चौगोट। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़। एफएम बैंड

0: 9.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
0: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम श्रोता सुमन के तमाम श्रोताओं को प्रीति यादव का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनुरोध का गीत। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें अनुरोध किया है ग्राम धुर्राबांधा भाटापारा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू ने। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से आप हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना नसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख और चीना शेख। कलेर बिहार से आप हैं मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निखत परवीन, नूर महलम महसूल से आप हैं हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। हथखेरा भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं पंचू यादव और दादू यादव। बावली से आप हैं कमलेश साहू, हारेंद्र साहू और सुशील बेलसपुरिया। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राजपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कालोवी सनावत, मध्य प्रदेश से आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। गीदम रोड जगदलपुर से आप हैं टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्ण तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीषा राव, नानू राव, साक्षी, काव्या, श्रीरी और राधिका राव। दरियापुर बाभली से आप हैं गजानन येले और नवदीप येले। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, कुनिका मल्होत्रा और जानकी चंद मल्होत्रा। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया। रेलवे कॉलोनी से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म आक्रमण का गीत। गीत है आनंद बख्शी का, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। गांधीग्राम गुजरात से आप हैं प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से आप हैं गुरमीत सिंह मीता। पदमपुर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा और ममता अरोड़ा। वडिंग खेड़ा पंजाब से आप

हैं मिंटू टोमस और पिंकी अरोड़ा। जलालाबाद वेस्ट पंजाब से आप हैं सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा। हीरावली फाजिलका पंजाब से आप हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा। ग्राम जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी खटक। नाईवाला राजस्थान से आप हैं वेद मीणा और अलका मीणा। राजकोट गुजरात से हैं रश्मि झरना और भरत कुमार। ग्राम कलाना राजस्थान से हैं विक्रम कड़वासरा और सचिन कड़वासरा। चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। जिला उमरिया मध्य प्रदेश से आप हैं संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। बुलढाणा जलगांव से आप हैं अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। बुलढाणा महाराष्ट्र से ही हैं अनीता गाठोड़ी, रमेश राव गाठोड़ी, लोकेश कुमार गाठोड़ी। हिंदुस्तान रेडियो से हैं आप ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। औरंगाबाद से आप हैं प्रकाश बुरगांवकर, सुदामा, प्राजक्ता, प्रांजलि बुरगांवकर और सोहम बुरगांवकर। धमतरी से हैं सविता माखीजा और स्वाति माखीजा। मुंगेली से हैं कृष्ण कुमार साहू, धनंजय, मनोज कुमार, सत्यम, शिवम, गायत्री। हटरी चौक बिलाईगढ़ से आप हैं खीकराम देवांगन और रानू देवांगन। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से आप हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से हैं शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से हैं अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे। नूरमहल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुसरत जहानाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज। घंटाघर चौक खंडवा से आप हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। ग्राम मोहत से आप हैं भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू, मुबारक बारी, विलास, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारी। भोकरी तालुका रावेर से आप हैं अरशद तड़वी, आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर ग्राम मोहत से आप हैं मुशरफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमिन तड़वी और तैमूर तड़वी। नागचुन रेडियो नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आप हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का फिल्म आक्रमण का ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम का अगला नगमा अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ये दिल लगी से लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है दिलीप सेन और समीर सेन ने। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। गणेश पेट पाथरडी महाराष्ट्र से आप हैं, अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से आप हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत ग्वाड़कर राही, श्रीमती सरिता ग्वाड़कर, प्रिंस एकांश ग्वाड़कर। अकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं श्रीमती वैशाली शैलेश ग्वाड़कर, श्वेता सुमित ग्वाड़कर, कुमारी ध्वनि ग्वाड़कर, परी। बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत ग्वाड़कर और प्रणीता ग्वाड़कर, लाडला और टुकटुक ग्वाड़कर। राजनगर मधुबनी से आप हैं राजू कुमार गुप्ता, विनीता, रविराज, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद, मास्टर रुद्र गुप्ता, एम के गुप्ता और इनके तमाम मित्रगण। छपरा दालदली बाजार से आप हैं संजय कुमार गुप्ता, संजीत, सर्वजीत, सुधांशु। सीतामढ़ी महावीर स्थान से हैं प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद, मंटू। फुलवारी शरीफ पटना से आप हैं अविनाश चंद्र, ज्योति गुप्ता, जानवी और पीहू। गौतम नगर नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोंधली और आरती जोंधली। मालेगांव से आप हैं दत्ता घायाल, सुनीताबाई घायाल, सानिका घायाल और गजानन घायाल। दंतेवाड़ा बचेली से आप हैं बलराम सेन, इंदु सेन और ऋतिका सेन। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से आप हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। शास्त्री नगर बीट शहर से आप हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, विशाल सपकाल। औरंगाबाद से आप हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। रेया रोड राजकोट से आप हैं प्रतिमा देवी, प्रवीण भाई चांदीवाला, कुंदन रंजन और सरोज सोनी। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म यलगार से उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज में, शब्द सुदर्शन फाखिर के, संगीत है छनी सिंह का। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने पोटिया कला दुर्ग से, आप हैं संजय साहू और सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। मछली गोदाम कैदीगुड़ा रायगढ़ से आप हैं भाई पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू सिंह, ऋतु सिंह। धनबाद झारखंड से आप हैं अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह और बेबी समृद्धि। झाझा बिहार से आप हैं संजय कुमार सिंह, पूजा सिंह, रवि, आरती सिंह। उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापपुर से आप हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया और मनोहर निषाद। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हिमकेश्वर साहू, चंपा साहू, करण, राहुल साहू। देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री। सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और राजेंद्र कुमार चंदन। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। ऊपरकोट बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी। यवतमाल विदर्भ से आप हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। बागबहरा भदरसी से आप हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन। गुमला झारखंड से आप हैं एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम। गोरबा बिलाईगढ़ से आप हैं देवलाल कर्श, कामनी कर्श और यश कर्श। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं भाई नरेंद्र कुमार तिवारी। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से आप हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से आप हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा। रानीगांव नगरी से आप हैं खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल तो पागल है से उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत है आनंद बख्शी का, संगीत है उत्तम सिंह का। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से आप हैं ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, अनामिका गायकवाड़, प्रणीता गायकवाड़। बड़ा बाजार उदयपुर से आप हैं गोपाल तंबोली, कांता तंबोली, तिलक तंबोली, किरण तंबोली, सक्षम तंबोली, परी और लावण्या तंबोली। ग्राम पोस्ट गौना कुसुमाड़, तहसील मेहरौनी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से आप हैं कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, राम देवी नामदेव, ब्रिजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखनलाल चाहना, आकाश, रानी परी। हनुमानगढ़ टी टाउन राजस्थान से आप हैं सुल्तान सिंह तरार, कृष्ण मुकेश, कांता और कपिल देव तराड़। वरकट बकाल बुल्हाणा महाराष्ट्र से आप हैं नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से आप हैं तुलसी मस्कीन, रचिता मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। पिपरिया जिला कबीरधाम से आप हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता। दुर्गा चौक रायगढ़ से आप हैं गेंदलाल श्रीवास, लक्ष्मण वाधवानी, अब्दुल सलीम, संतोष श्रीवास, मनोज यादव और गेंदू भाई। समडील नवापारा से आप हैं मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे, दीपक, श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता। ग्राम टौरी तहसील भांडे जिला दतिया से आप हैं सुरेश कुमार केवट, शिशुपाल केवट, छोटू केवट, खुशी, खुशबू, पायल केवट, ऋतिक, अमित, आरुषि और समस्त केवट परिवार। बड़ा बाजार उदयपुर से आप हैं गोपाल तंबोली, कांता तंबोली, तिलक तंबोली, किरण तंबोली, सक्षम तंबोली, परी और लावण्या तंबोली। ग्राम मोहपाल फरसगांव जिला कोंडागांव से हैं अमल साय नेताम। ग्राम छिंदडीही पुजारीपारा जिला कोंडागांव से हैं राम चक्रधारी, मंगतीन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी, अस्तीफा चक्रधारी। ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिन, ऋतिक और बलबीर सिंह। अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप हैं श्रीमती जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। रायगढ़ स्टील सिटी छत्तीसगढ़ से आप हैं रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी। ग्राम भंडार सिवनी जिला कोंडागांव से आप हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता, मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी। ग्राम जुगानी कलार से आप हैं राजेश नेताम, युगल अभय और ललिता नेताम।

कुल्हाड़ी कोर्ट पांडुका से हैं नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप और मोहनीश कश्यप। दतरिंगी भाटापारा से हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। सावरगांव महाराष्ट्र से आप हैं रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर नारे और मीनल नारे। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: लता मंगेशकर की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म मंजिल का गीत। गीत है योगेश का, संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। बेरड़ी से आप है हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर और हार्दिक करमरकर, प्राची और तन्या करमरकर। निवासा कोपटी से आप है बंडू लोहार, पोपलघट माया, शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास। श्रीरामपुर भोकर से आप है हरिभाव बिठवे, श्रावण, अनीता बिठवे। हरदेव लाल पारावाड सिमगा से आप है रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। मेघापारा लोरमी से आप है मनोज कुमार साहू, कृष्ण कुमार साहू, धनंजय और कुमारी गायत्री साहू। लोरमी गोल बाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से आप है संतोष कुमार सोनी, सुनीता, अखिलेश, नेहल, पीहू, दानिश, छोटी दीक्षा, संजय, पूजा, रामा और पूर्वी। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप है जग्गर राम साहू, बबलू जामुन देवी साहू, प्रेम साहू, पूजा देवी साहू, लल्ला दुष्यंत साहू, प्रांजल और समीक्षा साहू और बेबी आराध्या साहू। आर्यनगर कोहका बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल। ग्राम कुंभली लोंडीगुड़ा छत्तीसगढ़ से आप हैं बसंती पांडे, चुनौती पानीग्राही, तेजल, हिमांश, कमल, दुधेश और अवनीश पानीग्राही। जगदलपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं लावण्या विश्वकर्मा, गुणजैन, आयुषी वर्मा, जिज्ञासा और पूजा टावरी। गुजरात से आप हैं सौरभ लखानी, जगदीश लखानी, नवनीत लखानी, देवर्ष लखानी, यामिनी मकवाना, उल्केश और महक मकवाना। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का फिल्म मंजिल का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: यही बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। साथियों, राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है।
1: Earlier, Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that no matter how big or unexpected the challenge may be, the new India neither retreats from its resolve nor slows down its pace. The Prime Minister also inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. In a major boost to the aviation sector, with a particular focus on regional connectivity, Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. This marks a significant leap forward in the country's civil aviation landscape and will further advance the vision of Ude Desh Ka Aam Nagrik.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर उड़ान योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के

0: क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से

0: लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाए। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण

0: रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार पांचवे दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान। आज की अतिथि है अजित सुंदर बिलोंग। प्रस्तुति है चंद्र ऋषि ठाकुर की। भेंट करता है डॉक्टर मधु जैन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं त्रिवेणी एंटरप्राइजेज।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं त्रिवेणी एंटरप्राइजेस।
1: श्रोताओं, आपको इंतजार होता है कि आज के हमारे विशेष मेहमान कौन हैं, और हम भी आपके इंतजार को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि यही तो वो माध्यम होता है जब आप पहचान पाते हैं एक शख्सियत को। और बिल्कुल, आज हम आपको मिलवाते हैं आज की हमारी इस खास मेहमान से। तो श्रोताओं, आज के हमारे विशेष मेहमान हैं अजीत सुंदर बिलोंग जी, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जगदलपुर, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन से। अजीत जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार मधु जी, थैंक यू।
1: अजीत जी, आप तो इस पद पर हैं, काफी समय से कार्यरत हैं, पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा, पारिवारिक जीवन और किस तरह से आपने इस पद को प्राप्त किया है, इसके विषय में आप हमें बताएं।
2: बिल्कुल, जो है इस एक जर्नी ही रही है इस तक पहुंचने के लिए यहाँ पर। मेरा जो स्कूल की पढ़ाई जो हुई है, मैं बेसिकली भिलाई से ही रहा हूँ।
1: अच्छा।
2: और मेरी एजुकेशन जो है, इससे पहले जो मैं शुरुआती दौर पे रहा हूँ यहाँ पर, मैं मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ाई किया, जो है अपनी 10वीं तक वहाँ पर मैंने पढ़ाई की, और उसके पश्चात मैं आके जो है भिलाई में आके वहाँ से अपना एजुकेशन को और कंटिन्यू किया यहाँ पर। और मेरा स्कूलिंग भी भिलाई में हुई है, मेरी ग्रेजुएशन भी भिलाई में हुई है कल्याण महाविद्यालय से, और वहाँ से पास आउट होने के बाद फिर मैं जो है तुरंत जो है तैयारी कर ही रहा था उस वक्त में।
1: कौन सी परीक्षा की?
2: मैं उस वक्त परीक्षा तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे शौक था कि बैंक में ऑफिसर बनने का, बैंक पीए का। हमारे टाइम में
1: प्रोबेशनरी ऑफिसर का बड़ा क्रेज हुआ करता है।
2: उस वक्त क्रेज था, और मुझे विशेष तौर पर इस तरह का क्रेज था कि मेरे भैया जो थे वो बैंक में काम करते थे, तो वो मुझे बोलते थे यार बैंक में बहुत अच्छा है और बैंक में फ्लाइट की टिकट मिलती है अधिकारियों को। तो वो उस शौक की वजह से मैं बैंक पीए की तैयारी
1: शुरू किए थे।
2: मेरे और मेरे परिचित में जो थे एक आर्मी के लिए भी था, तो मैं दोनों के लिए मैं तैयारी कर रहा था उसमें।
1: और चूंकि आप बता रहे हैं कि आप आर्मी स्कूल में पढ़े हैं, तो अनुशासन तो आपने बचपन में ही सीख लिया होगा।
2: हाँ जी,
1: जी। तो आपने किस

0: तैयारी की और कब आपका चयन हुआ और कब आपने अपनी नौकरी ज्वाइन की?
1: मेरा ये जो है, सबसे पहले तो कमांड डिफेंस सर्विस में, इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन चूंकि कुछ मेडिकल ग्राउंड की वजह से उसमें जो है पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया उसके अंदर में, तो उसके बाद फिर मैं जो है वापस आके फिर जो है बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की फिर तैयारी शुरू की। इसी बीच में जो है मेरे पास में बैंक का कॉल लेटर आ गया, ज्वाइन कर लिया, पर वो एज अ क्लर्कल था और मैंने उसे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद लगभग मैंने एक साल तक पूरे उसमें कंप्लीट किए, हालांकि मुझे समय कम था। मैंने घर में चर्चा भी कि समय कम मिल पाएगा और अधिकारियों की तैयारी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो लेकिन घर वालों ने कहा कि जब तक खुद जाके प्रयास नहीं करोगे या वहां बैठ के नहीं आप देखोगे, तब तक कैसे कह सकते हो कि समय नहीं मिलता है। तो मैंने इसे ज्वाइन किया और लगभग एक साल तक मैंने प्रयास किया वहां पर।
0: लेकिन काम भी किया आपने उस पोस्ट पर?
1: हाँ, मैंने उस पोस्ट पे काम किया। मैं वहां पर एज अ कैशियर क्लरिकल पोस्ट मैंने ज्वाइन किया। मैंने उसे एक साल तक पूरी तरह से उसमें काम किया। इसी बीच मुझे मेरी मुलाकात वहां पर जो है, जो मैं बचेली में पोस्टेड था वहां पर, एक अधिकारी NMDC के अधिकारी से, जिसने IAS का जो है अपना आईवू सर थे, आईवू सर ने उन्होंने क्लियर किया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन।
0: अच्छा।
1: तो मैंने उनसे मार्गदर्शन लिया, तो मार्गदर्शन पर उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको तैयारी और करनी पड़ेगी और इस तरह से दो नाव में तैयार होकर आप करोगे तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, तो आप जो है
0: यहाँ से ब्रेक ले लीजिए,
1: सर्विस से ब्रेक ले लीजिए, यहाँ से आप इसको जो है प्रॉपरली इसको रिजाइन करके आप समय लेके फिर से तैयारी करके आप उसमें जाएंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे।
0: मतलब फोकस्ड एटीट्यूड के साथ आप काम करिए, नौकरी के साथ थोड़ा सा संभव नहीं होगा, ऐसा उन्होंने मार्गदर्शन दिया।
1: ऐसा मुझे मार्गदर्शन उन्होंने दिया, उनके कहे अनुसार फिर मैंने वैसा ही किया और जो फिर मैंने तैयारी की। तो ये PSC की तैयारी में जो हमारा जो अभी का जिस पद पे मैं हूँ अपने जिला व्यापार उद्योग केंद्र में, यहाँ पर उनकी जो वैकेंसी निकली हुई थी, तो यहाँ पर फिर मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैं इस पद पे फिर मैं आया।
0: अधिकारी के तौर पर ज्वाइन करना आपको ज्यादा अच्छा लगा, वनस्पत वो क्लर्क की पोस्ट थी जो बैंक में थी।
1: बिल्कुल
0: जी, तो ये तो बहुत अच्छी रही कि PSC में आपने चयन किया। आप अपने माता पिता और जन्म स्थान के बारे में नहीं बताया हमें।
1: मेरे माता पिता जो है अभी इस वक्त भिलाई में पदस्थ रहे और वहां से रिटायर हुए हैं। मेरे पिताजी दिल्ली पब्लिक स्कूल में वहां पर टीचर रहे हैं, माताजी मेरी घरेलू हाउसवाइफ रही है, और जो मेरा जो जन्म है ये मेरा कोडेक का है जो जसपुर के पास में है।
0: अच्छा, जसपुर के पास में।
1: हाँ, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और पूरा समय जो है मैंने भिलाई में ही निकाला है।
0: बिल्कुल, तो आप जैसा बता रहे हैं कि आपको शौक तो था प्रोबेशनरी ऑफिसर का, पर आपने ज्वाइन किया एज ए क्लर्क और फिर उसके बाद PSC से पास करके आप इस पद पर आए, है ना? तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जो मेरा शौक था, मेरा लक्ष्य था, वो मैं हासिल नहीं कर पाया, या किसी तरह का कुंठा या किसी तरह का अवसाद मन में नहीं आया कभी?
1: नहीं मधुप जी, इसमें बिल्कुल मुझे नहीं आया, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद मैंने यहाँ पर जो है काम को यहाँ पर देखा है और सारे वो जो दिक्कतें जो हैं और जो टफ समय होता है या किस तरह से एक अधिकारी को करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को देखा, तो हम लोग ऐसा पार्ट ही हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन का ही, क्योंकि हम इतने बड़े सिविल सर्विस अधिकारियों के साथ में हम लोग स्वयं काम करते हैं। कलेक्टर सर, आदरणीय कलेक्टर सर के साथ में काम करना पड़ता है, आदरणीय CO साहब के साथ में काम करना, ये सारे सिविल सर्वेंट्स जो है IAS जो है इनके साथ
0: इनके करीब रह के
1: करीब रह के हम लोग काम,
0: तो इनकी कार्यशैलियों से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, है ना? और आप जैसा बता रहे थे कि प्रोबेशनर ऑफिसर के रूप में तो चलिए आप बैंक को ही, खाली बैंकिंग सेक्टर को देख पाते, पर चूंकि आप इस पद में हैं तो इस पद का जो स्कोप है वो और ज़्यादा है, और यहाँ पर तो आप उद्यमी तैयार कर रहे हैं।
1: हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये इस जगह पे विशेष ये है कि इस विभाग के अंदर, जिस विभाग में मैंने जिक्र किया, इस विभाग में हम जो है रोजगार नौकरी की बात नहीं करते, यहाँ हम स्वयं के रोजगार की बात करते, इसलिए ये इस विभाग का सबसे खासियत ये रही है इसके अंदर में, जो एक बहुत ही आकर्षण है इसमें।
0: और आपको हर बार नए नए लोगों से मिलना पड़ता होगा, और जो उद्यमी है वो छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, ग्रामीण भी हैं, शहरी भी हैं, तो आपके पास जो अनुभव है वो बोलना चाहिए गुलदस्ते की तरह जिसमें अलग अलग फूल है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा मोदी जी, यहाँ पर मुझे वास्तव में पूरे इस कैरियर के अंदर मुझे हर प्रकार के लोग देखने को मिले, जिसमें कि छोटे से ग्रामीण इलाके से लेकर शहर के मेट्रो सिटी के बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होनी पड़ी और उनसे बहुत कुछ सीखने समझने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि एक उद्योगपति जानता है और वो जो है काफ़ी आगे रहता है सारी चीज़ों के ज्ञान के मामले में, और वो जो है तो उनको देखना, उनको समझना एक बहुत अच्छा,
0: मतलब एक प्रशासनिक कार्य शैली में काम करने वाला व्यक्ति और एक अपने उद्यम को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला व्यक्ति, दोनों की सोच और दोनों की कार्यशैली में अंतर होता है।
1: अंतर
0: तो

0: सा कौन सा अंतर है जो आपने विशेष तौर पे नोटिस किया कि ये जो बारीक सा अंतर है दोनों को जो अलग करता है?
1: आप जो कह रही हैं ये उद्योगपति और उनकी बात कर रही हैं?
0: प्रशासनिक अधिकारी
1: दोनों की
0: जी जी, यानी जो भी सेवा में है, किसी भी सेवा में है, सरकारी सेवा में है, किसी भी पद पे हो, वो पद पे रहते हुए व्यक्ति अपना मतलब उसे अपने बॉस को फॉलो करना पड़ता है, हाँ, है ना। और उद्योगपति उद्यमी जो है वो अपने मन का मर्जी का मालिक होता है, इसीलिए कहा जाता था। तो इन दोनों में आपको क्या अंतर नजर आता है?
1: बिल्कुल, इसके अंदर में जो मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ आती है इसके अंदर में, एक तो समय की जो स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से उद्योगपति के पास में रहती है, एक व्यापारी के पास में रहती है, एक व्यवसायी के पास में रहती है, एक स्वरोजगार करने वाले के पास में रहती है। वो अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या को तय करता है, अपने प्लान्स को बनाता है, उस प्लान को लेकर वो एग्जीक्यूट करता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हाँ, और लेकिन इसके बनिस्बत अगर हम तुलना करें जो हम नौकरी पेशा हमारे अधिकारियों के, तो हमें जो है गवर्नमेंट के और उनके जो हमारे बॉस जो है नियमों के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है, और समय समय पर जैसे जैसे नियम निर्देश आते हैं हमें उस अनुसार ही
0: हम बंधे होते हैं। बिल्कुल, उद्यमी, इसीलिए तो कहा जाता है कि उद्यमी जो है वो यदि अपना व्यवसाय स्थापित करता है तो हर तरह से स्वतंत्र होता है। पर दोनों ही चीजें हैं, इनकी अच्छाइयां भी हैं और इसमें बुराइयां भी हैं, क्योंकि आपको हर महीने बिना किसी तकलीफ के एक सैलरी मिल जाती है और उद्यमी को उसके लिए श्रम करना पड़ता है। तो ये दोनों चीजें हैं और आपने बहुत अच्छी चीज नोटिस की। अच्छा, फुर्सत के समय में आप क्या करते हैं? जब इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है आपका, आपको लगातार काम करना होता है, तो ऐसा नहीं लगता कि व्यस्ततम जिंदगी से मैं कुछ क्या कर दूं? आपके क्या शौक हैं?
1: विशेष करके जो है ऐसे खाली समय में जब रहता है तो मैं अक्सर किताबें पढ़ना बहुत शौक रखता हूँ उसको, तो जैसे ही खाली समय मिलता है तो मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ या फिर मैं इंटरनेट में कुछ चीज़ें देखना लग जाता हूँ। तो और मोस्टली जो है मैं ऐसा ही करता हूँ।
0: कोई आपकी पसंदीदा पुस्तक?
1: मेरी पसंदीदा पुस्तक ये एक होमोसैपियंस क्या है, होमोसैपियंस जैपनीज ऑथर की एक पुस्तक है, एक वो पुस्तक मुझे बहुत बेहद अच्छी लगी, और एक सोफीज का संसार ये एक पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: ज्यादातर आप फॉरेन ऑथर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं, भारतीय साहित्य को लेकर के आपके क्या विचार हैं?
1: भारतीय साहित्य की पुस्तकें बहुत अच्छी है, पर बहुत ज्यादा मैंने उसे मतलब
0: नहीं
1: जो पढ़ा नहीं है और बहुत ज्यादा उसको अनुभव नहीं किया है। मैंने प्रेमचंद की पढ़ी है पुस्तकें, तो बहुत अच्छी है उनकी शैली, और वास्तव में मतलब जो है पूरे ग्रामीण का चित्रण बहुत अच्छा है।
0: भारतीय साहित्यकारों की पुस्तकें यदि आप पढ़ते हैं तो उन्हें आपको भारतीय ग्राम्य और शहरी जीवन का चित्रण मिल जाता है, जिससे आपको उन्हें समझने की और एक सोच विकसित होती है। आपके पसंद का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? आपको कोई गीत पसंद हो आप याद कर लीजिए, तब तक हम आपसे बातें भी करते रहते हैं। यहाँ पर आकर आप कौन कौन से पदों पर पदस्थ रहे हैं और कौन सा पद आपको ज्यादा अच्छा लगा, और कहाँ आपकी जो पदस्थापना हुई है वो आपको सबसे अच्छा अनुभव दिया? आप तो अलग अलग शहरों में भी पदस्थ रहे होंगे।
1: हाँ, मैं अलग अलग शहरों में भी पदस्थ रहा हूँ। मैं ज्वाइनिंग जो किया था वो मध्य प्रदेश में किया था, और मध्य प्रदेश के बाद में
0: मध्य प्रदेश के किस शहर में?
1: मध्य प्रदेश के गुना शहर में किया।
0: गुना
1: में, और वहाँ से फिर छत्तीसगढ़ गठन होने के समय,
0: हाँ, बात आपने छत्तीसगढ़ लिया होगा,
1: उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ लिया। उससे पहले लगभग उसी आसपास ही मैं छत्तीसगढ़ प्रांत में आ गया था यहाँ पर पूरे।
0: तो मध्य प्रदेश में काम करना आपको कैसा लगा था, और वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थितियों में आपको क्या अंतर लगता है?
1: काम करना तो वास्तव में छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा लगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ही हूँ तो, और छत्तीसगढ़ में अपने लोगों के लिए काम करना वो ज़्यादा बेहतर, और वहाँ जो है उनके लिए काम करना और उनकी चीज़ों को वो करना वो ज़्यादा मतलब खुशी देता है। मध्य प्रदेश में काम करने का एक दूसरा अनुभव था, काफ़ी जागरूक लोग थे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा जागरूक थे, हर चीज़ में उन्हें जानकारियों का पूरा पता रहता था उन लोगों, और अपने अधिकारियों के लिए वो जो है वो सजग रहते थे, और योजनाओं के बारे में भी वो सजग रहते थे, उन्हें बहुत सारी जानकारियां पहले से काफी सारे पता कर लेते थे। बनिस्बत हमारे यहाँ पर लोगों को जागरूक करना पड़ता है, ग्रामीण इलाकों में
0: लोग जागरूक होते हैं। तो गुना के अलावा और किसी शहर में मध्य प्रदेश के आपने काम किया है?
1: नहीं, मैं मध्य प्रदेश के इस पद पे सिर्फ गुना शहर में ही काम किया हूँ, वहाँ पर अगल अशोकनगर था, लेकिन वो भी गुना शहर के अंतर्गत ही है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के दूसरे।
0: तो छत्तीसगढ़ के किन किन शहरों में आपने सेवाएं दी हैं?
1: मैंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में, कोंडागांव जिले में, दंतेवाड़ा जिले में, फिर बीजापुर जिले में, और अंत में अभी जगदलपुर जिले में।

0: बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आज तो बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, किंतु उस वक्त जब आप काम किया करते थे पहले, तब आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ा या उस वक्त की स्थितियां कैसी थी?
1: चुनौतियां
0: आप
1: तो
0: भी डरते होंगे।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पे, सबसे पहला तो ये है कि इस इलाके में आने से पहले ही मेरे जो है कलीग या मेरे मित्रगण ये बोले, अरे तो बड़ा वहाँ कहाँ जा रहा है, वहाँ पर हाँ कैसे काम होगा करके, तो उन्होंने पहले ही भयभीत कराया था। लेकिन यहाँ आने के बाद, इस क्षेत्र में, संभाग में आने के बाद मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने काफ़ी लंबा समय यहाँ पर व्यतीत किया है।
0: और अभी आप यहाँ पर हैं, तो बस्तर को आप किस रूप में देखते हैं, आपके व्यक्तिगत विचार?
1: मेरे व्यक्तिगत में इस बस्तर को अभी डेवलप होना है, इसको, और डेवलपमेंट का समय आ चुका है। एक स्टेज होता है हर एक शहर का या उसका, ये स्टेज उस स्टेज पे आ चुका है जब इसको पूरी तरह से अब उड़ने की तैयारी में आना चाहिए।
0: मतलब बस्तर को बहुत जल्दी पंख मिलने वाले हैं। बिल्कुल, आपने बात कही। और आपको शायद गीत याद आ गया होगा, कौन सा गीत आप बजवाना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे और जो आपको भी पसंद हो?
1: ब्लैकमेल का वो गीत,
0: पल पल दिल के पास। तो चलिए, किशोर कुमार के स्वर का ये गीत है, आइए सुनते हैं श्रोताओं, फिल्म ब्लैकमेल का ये खूबसूरत सा गीत।

0: सर आपने जैसा कि बताया कि बस्तर में आपको काम करना अच्छा लगा और जो इमेज आपके मन में थी बस्तर के प्रति वो इमेज हट गई और आपको यहाँ काम करना ज़्यादा अच्छा लगा और आपने काफ़ी लंबा समय भी बिताया, तो ऐसा क्या आपने बस्तर में देखा और क्या आप उस परिवर्तन को कैसे आप उसको परिभाषित करना चाहेंगे?
1: बस्तर में सबसे बड़ी आकर्षक चीज़ जो है इसकी आबो हवा जो है यहाँ पर, विशेष तौर पर जैसे जगदलपुर को मैं, इतना खूबसूरत वादियाँ और इतना खूबसूरत यहाँ का तापमान और जो यहाँ का जो पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत, ऐसा खूबसूरती मुझे दूसरे राज्यों में मुझे नहीं देखने को मिला, ना ही अपने किसी को तुलना में कर पाया।
0: मतलब आप रिटायरमेंट के बाद शायद बस्तर को ही सेटल करने के लिए चुनेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है।
1: कहते तो लोग ऐसे हैं कि मैं यहीं सेटल हो जाऊँगा।
0: बिल्कुल, आपके परिवार में आपके बच्चे और वो क्या कर रहे हैं अभी?
1: मधु जी, मेरी दो छोटी गुड़िया है, गुड़िया मतलब छोटी नहीं है, बेटियां हैं, और जो बड़ी वाली बेटी है वो अपना जो है इकोनॉमिक्स में फाइनल ईयर दे रही है, और मेरी सबसे छोटी वाली जो बेटी है सेकंड नंबर की, वो मेरी बेटी अभी 10th बोर्ड में दे रही है।
0: बिल्कुल, और आप अपने जो कार्य अनुभव हैं बस्तर के, आपने जो बताया कि बस्तर में अलग तरह की परिस्थितियाँ होती थी काम करने की और बाकी शहरों में या दूसरे राज्यों में भी अलग तरीके की परिस्थितियां हैं, तो आपने अपने तरफ से कभी कोई नवोन्मेष किया है जिससे कोई परिवर्तन आप ला सके हो? ऐसा कोई प्रयास आपने कभी किया या ऐसे कोई लोग आपको मिले हों अपने इस कार्य के दौरान जिनसे आप प्रभावित भी हुए हों और उनकी कार्यशैली को और साथ मिलकर के भी आपने कुछ काम किया हो जो लोगों की भलाई के लिए काम आए?
1: इसमें जो है मेन इस क्षेत्र के अंदर में तो जो मैंने समझा है कि एक सेंसिटाइजेशन या एक अवेयरनेस और ये एक जो है कि जानकारियां जो प्रदाय की जाए, मतलब पूरी तरह 100% जानकारी दिया जाना, मैं ये अनुभव किया कि जानकारियां तो हैं पर पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रही है या उतने जो है संजीदगी से या बोलेंगे उसको, मतलब उस हिसाब से जो प्रस्तुत किया जाना चाहिए उसको नहीं किया गया है, तो जल्दी से वो लोग समझ नहीं पाए हैं, तो
0: और प्रयास किए जाने चाहिए इस क्षेत्र में, आप ऐसा कहना चाहते हैं?
1: हर तरह के वर्कशॉप मैंने कराए यहाँ पर, जो है छोटे वर्कशॉप से लेकर जो है जिससे उनके योजनाओं से संबंधित जानकारियों को लोगों को बढ़ाया गया, नीतियों से संबंधित जानकारियों को बताया गया, फिर नौकरी और स्वरोजगार में क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं ये उन्हें समझाने का प्रयास कराया गया इनको, है ना। हर बार मैंने इन्हें बताया कि आप जो है अपना स्वरोजगार करें ताकि क्या अपने पैरों पे खड़े हो सके, और पैरों पे खड़े होकर ना केवल आप अपना परिवार इस समय चला सकते हैं, आप अपनी पीढ़ियों को भी इसमें चला सकते हैं, बजाय कि आप नौकरियां जो है, नौकरी करना बिल्कुल अच्छी बात है लेकिन नौकरी के लिए उनको पढ़ाई भी उसी तरीके से उतनी मेहनत से करके उन्हें वो पा सकते हैं उसको।
0: मतलब आपका कहना ऐसा है कि यहाँ की जो परिस्थितियों को आपने देखा और यहाँ की शिक्षा का स्तर आपने देखा, तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो है स्वरोजगार की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हैं, तो उसको कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपना रोजगार अपना सकता है,
1: बिल्कुल वो कर
0: सकता, जबकि नौकरी के लिए या शासकीय सेवा के लिए उसे बहुत ज्यादा स्किल्ड होने की जरूरत है।
1: हाँ, पढ़ाई अच्छी होने की जरूरत है, उसे कॉम्पिटिशन में फेस होने की जरूरत है, कॉम्पिटिशन में अव्वल आने की आवश्यकता है।
0: तो रिजर्वेशन से भी तो लोग आज शासकीय नौकरी पाते हैं, तो उस संबंध में आप क्या कहेंगे?
1: हाँ, रिजर्वेशन से नौकरियां बिल्कुल पाते हैं, और वो जो है रिजर्वेशन जो है उस सोसाइटी और उसके लिए और उसको डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी कदम है वो, है ना, ये

0: देशों में भी किया गया है, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई दूसरे देशों में, एक विशेष समुदाय को जो रिजर्वेशन इसीलिए दिया जाता है कि वो बहुत समय से अगर उस पिछड़े हैं तो उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है, तो मेरे मैं
1: ताकि वो आगे आ सके,
0: ताकि वो आगे आ सके उसके अंदर।
1: लेकिन
0: में।
1: फिर भी शासकीय सेवाओं की उपलब्धता जो है वो सीमित है, रोजगार के अवसर असीमित है।
0: हाँ बिल्कुल, शासकीय सेवाओं की जो वैकेंसी है वो बिल्कुल सीमित है, क्योंकि शासकीय बहुत कम है, उसमें आवेदन करने वाले बहुत हैं, तो इसी कारण से जो वो जो नौकरी वाली स्थान है वहाँ पर संख्या बहुत कम है वहाँ पर ये करने के लिए। इसीलिए मैं स्वरोजगार की बात कर रहा हूँ कि स्वरोजगार में आप असंख्य जो है कुछ भी किसी भी प्रकार का आप जो है व्यवसाय या आप उसको कर सकते हैं, और ना केवल वो कर सकते हैं, आप इसके अंदर में रोजगार में और दूसरे लोगों को भी आप उसको शामिल कर सकते हैं।
1: मतलब ना केवल आप अपना व्यवसाय स्थापित करते हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने का रोजगार काम करते हैं। हाँ निश्चित तौर पे आपकी इकाई पे काम करने वालों की आवश्यकता तो होती है, अगर आप एक दुकान भी खोलते हैं तो आपको उसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, सेल्समैन की आवश्यकता पड़ती है, सफाई वालों की आवश्यकता पड़ती है, और यदि आप एक कोई निर्माण क्षेत्र का उद्योग चुनते हैं तो उसमें भी आपको स्किल और कुशल और अर्धकुशल दोनों तरह के कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत बढ़िया बात आपने कही कि रोजगार देने वाला बनना चाहिए। आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं जिस विभाग में हूँ और जिस विभाग से बहुत लंबे समय से कैरियर में जुड़ा हुआ हूँ, तो नेचुरली कि मैं उस जो है उससे जो मैं सीखा, मेरा एक्सपीरियंस भी वहीं से आता है मेरा, क्योंकि मैंने बहुत अधिक समय यहाँ पर निकालता। मैं ये कहूँगा कि आप जो है अच्छी पढ़ाई करके नौकरी चुने या बिल्कुल तय करके आप जो है स्वरोजगार की तरफ जाएं। मेरा जो पर्सनल झुकाव ये रहेगा कि आप स्वरोजगार की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप अपने रास्ते बहुत ज़्यादा खोलेंगे, बहुत ज़्यादा खोलेंगे, और ना केवल आप स्वरोजगार में आप अपने लिए जगह खोलेंगे, आप अपने साथ में अन्य दूसरे लोगों को भी उसके अंदर में रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो मेरी उनसे यही ये रहेगा कि आप इसको थोड़ा अच्छे से विचार करके आप अपनी जो है मकसद को तय करें कि आपको व्यापार व्यवसाय वाले क्षेत्र में करना है या नौकरी के लिए जाना है।
1: बिल्कुल श्रोतो, बात ऐसी है कि अगर आप स्वरोजगार के क्षेत्र में जाते हैं तो आप उससे संबंधित पूरी चीज़ों का बहुत अच्छे से एक रिसर्च कर लें, और जो सहायक विभाग हैं या जो सहायक व्यक्ति हैं उनसे भी मिल करके आप अपने व्यवसाय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करें, और पूरी तैयारी के साथ यदि आप अपना व्यवसाय लगाते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसा इनका अनुभव भी कहता है। और इन्होंने सफल उद्यमियों को देखा भी है जिन्होंने जीरो से शून्य से शुरुआत की है और आज एक सफल उद्यमी के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। तो अजीत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने बारे में और अपने इस सफ़र के बारे में बहुत सारी जानकारियां साझा की, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मधु जी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे त्रिवेणी इंटरप्राइजेस।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान। आज के अतिथि थे अजीत सुंदर बिलोंग, प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर की, भेंटकर्ता थी डॉक्टर मधु जैन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे त्रिवेणी एंटरप्राइजेस। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी जगदलपुर है।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। मीडियम वेव पर अब विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले आज के शेष और कल होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर चित्र भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में देशभक्ति गीत शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर हल्बी मुंडा गीत, कलाकार होंगे रामलाल और साथी।

युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर हल्बी मुंडा गीत, कलाकार होंगे रामलाल और साथी। शाम 6:35 पर हल्बी मुंडा गीत, कलाकार होंगे रामलाल और साथी।

और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 फाइनल का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से मैच समाप्ति तक मीडियम वेव पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम जारी रहेंगे। कल रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:05 पर, सुबह 6:20 पर प्रकाश किरण स्वर उमा गर्ग और पुष्पा अग्निहोत्री का, श्री रामचरित मानस का गायन आप सुनेंगे सुबह 6:25 पर, स्वर शिप्रा बोस और रामकिशन चंदीश्री का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का सुबह 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर कृषि स्वामी की बेड़ा खाड़ा चौगोट। होलोली में सुनिएगा बोहरिया माता पाड़ सुबह 6:40 पर, कलाकार होंगे भागीरथी और साथी। सुबह 7:10 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसका आकर्षण होगा हमारा बस्तर के अंतर्गत वार्ता आदिम जनजातियों का गढ़ बस्तर। वार्ताकार होंगी आशा रानी पटनायक। हल्बी समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप सुबह 7:45 पर। विभिन्न बोलियों में लोकगीत का कार्यक्रम लोकमंजरी सुबह 8:30 पर। नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बालबाड़ी सुबह 9:00। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। गुलशन में सुनिएगा नए तराने सुबह 10:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत सुबह 10:30 पर। प्रस्तुति होगी मनिंदर सिंह देवगुड़ की, संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। गुड़दुम में सुनिएगा हल्बी लोकगीत रात 11 सुबह 11:30 पर, कलाकार होंगे राजश्री देव और साथी। लोक गाथा के कार्यक्रम रुसरुसा में सुनिएगा सुलोचना सोसी सेना का भाग एक, गायिका होंगी बेलमती नाग और रेमे दोपहर 12:00। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम कला और कलाकार। कल शाम 5:05 पर देशभक्ति गीत। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। गोंडी समाचार बुलेटिन शाम 6:30 पर। शाम 7:00 कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव शाम 7:21 पर। रात 8:00 बालीफुल में सुनिएगा हल्बी लोकगीत, कलाकार होंगे चंदन कश्यप और साथी। पिलामन काजे गोड कार्यक्रम रात 8:30 पर। रात 9:15 पर पुरानी फिल्मों से। दौना में आप सुनेंगे हल्बी लोकगीत रात 10:00। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले आज और कल के कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ये भवानी में, जहां आज हम हैं आपके ये भवानी दोस्त। मैं पराग चंदेल
1: और मैं आलिमा अघाड़ी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन।
0: नमस्कार।
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो देश के लाखों युवाओं के सपने, उम्मीदों और भविष्य से जुड़ा है, और उसका विषय है सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी।
0: दोस्तों, करियर की राह चुनना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन सी नौकरी सही है, सरकारी या प्राइवेट।
1: वैसे पराग, सरकारी नौकरी सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें नौकरी की सुरक्षा होती है, सैलरी समय पर मिलती है और समाज में सम्मान भी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आलिमा तुमने, लेकिन प्राइवेट नौकरी भी किसी से कम नहीं है। आजकल प्राइवेट नौकरी में जो लोग मेहनत करते हैं और अच्छा काम करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलते हैं।
1: हाँ, सही कहा तुमने पराग, लेकिन प्राइवेट नौकरी में काम का दबाव अधिक होता है, कई बार नौकरी जाने का डर भी बना रहता है, जबकि सरकारी नौकरी में भविष्य अधिक सुरक्षित माना जाता है।
0: बिल्कुल आलिमा, लेकिन हर सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए वर्षों तक कठिन तैयारी करनी पड़ती है। जबकि आजकल कई प्राइवेट कंपनियों में आसानी से नौकरी मिल जाती है, और वो भी अच्छी सैलरी के साथ।
1: वैसे पराग, मेरे अनुसार जिन लोगों को सुरक्षित और स्थिर भविष्य चाहिए, उनके लिए सरकारी नौकरी एक अच्छा विकल्प है।
0: हाँ, और जो लोग नई चुनौतियाँ स्वीकार करना चाहते हैं, मेहनत के दम पर जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, नई चीजें सीखना पसंद करते हैं, उनके लिए प्राइवेट नौकरी बेहतर हो सकती है। क्यों, है ना?
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा पराग। सरकारी नौकरी में काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। परिवार के लिए समय मिल जाता है और भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है।
0: हाँ आलिमा, लेकिन प्राइवेट नौकरी में नई तकनीक सीखने, अलग अलग लोगों के साथ काम करने और अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने का मौका मिलता है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: हाँ पराग, पर समाज में सरकारी नौकरी को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। यही वजह है कि आज भी बहुत से माता पिता अपने बच्चों को सरकारी नौकरी करने की सलाह देते हैं। खैर, वैसे पराग, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती। हर काम का अपना महत्व होता है। सफलता उसी को मिलती है जो ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपना काम करता है।
0: बिल्कुल सही कहा आलिमा, अगर हम अपने काम को पूरी लगन से करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। दोस्तों, ये तो थी सरकारी या प्राइवेट नौकरी विषय पर हमारी बातचीत।
1: दोस्तों, आज के दिन का हमें बेसब्री से इंतजार होता है, क्यों, है ना पराग?
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज होता है कार्यक्रम हेलो युवाणी का, जहाँ हम करते हैं अपने श्रोताओं से कुछ बातें और सुनते हैं उनके पसंद के गीत।
1: हाँ पराग, तो चलो लेते हैं आज का पहला कॉल और जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता।
0: हेलो युवाणी, नमस्कार जी। नमस्कार, किन से बात हो रही है?
2: हाँ नमस्कार, मैं मुकेश थोड़ेकर बोल रहा हूँ।
0: जी मुकेश जी, कैसे हैं आप?
2: हाँ, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: जी जी मुकेश जी,
2: मैं बढ़िया हूँ मैडम, स्कूल में हूँ, इसलिए क्या है हल्ला हो रहा है थोड़ा सा।
0: जी क्या करते हैं आप?
2: मैं टीचर हूँ और पढ़ाता हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कौन कौन से कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं आप?
2: मैं जो अच्छा पहली से पांचवी तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ।
0: क्या, और हमारे प्रोग्राम सुनते हैं आप?
2: हाँ बिल्कुल सुनता हूँ
0: जी। कैसा लगता है?
2: अच्छा लगता है आप लोग का प्रोग्राम।
0: जी जी, और बताइए क्या क्या करना पसंद है आप?
2: मुझे गाना सुनना पसंद है, इसके अलावा क्रिकेट में मेरी रुचि है, जनरल नॉलेज, ये सब चीजों में मैं रुचि रखता हूँ।
0: जी, तो किस तरीके के गाने सुनने पसंद है आप?
2: मेरे को नया पुराने दोनों गाने पसंद है।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो बताइए आज कौन सा गीत सुनना है?
2: आज आप मुझे सुनवा दीजिए, पर्व आने वाला है रक्षाबंधन का, अगस्त
0: जी,
2: में
0: जी, जी,
2: तो रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी गीत सुनवा दीजिए।
0: चलिए सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: हेलो युवानी, नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम।
0: हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: चक्कर भाटा केंद्र जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से।
0: अच्छा
1: डी
0: जी
1: आर नागवानी।
0: जी तो क्या करते हैं आप?
1: मेरी कपड़े की दुकान है।
0: अच्छा, अरे वाह। और बताइए, कौन सी फिल्म का सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
1: बस मौसम यहाँ पे बता दो, बढ़िया हो गया। आज 2-3 घंटे पानी पड़ा है,
0: हाँ हाँ बिल्कुल। तो कौन
1: बादल
0: सी?
1: भी छाए हैं, धूप आज सुबह से निकली नहीं है।
0: हाँ।
1: बस बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का, कॉफी पीने का मौसम बन गया है।
0: जी, तो किस तरीके का सॉन्ग सुनना चाहते हैं, बारिश के ऊपर?
1: जी सुनाइए मुझे आज आप बेताब का गीत। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: Chettinad Cement, the perfect concrete choice.
1: हेलो युवानी, नमस्कार।
2: हेलो युवानी
1: जी, नमस्कार। किन से बात हो रही है?
2: जी लालू राम पोयाम।
1: लालू राम पोयाम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: जी बड़े सोंगा से बात कर रहा हूँ।
1: कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं मैडम। और आप बताइए, आपका हाल चाल क्या है?
1: जी हम भी बहुत अच्छे हैं। और बताइए पोयाम जी, क्या करते हैं आप? आपका पसंदीदा गीत कौन सा है?
2: मेरा पसंदीदा गीत है अंदाज, फिल्म का नाम है अंदाज, और गाने का बोल है आएगा मजा बरसात का।
1: अरे वाह क्या बात है, तो आज यही गीत सुनवाए आपको
2: जी? क्या समझ रहे हो क्या मैडम, आजकल बरसात का दिन है तो
1: जी जी
2: आएगा मजा बरसात का।
1: जी जी हम समझ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा गीत की फरमाइश की है आप
2: जी। आप मतलब आप कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं पराग चंदी।
2: आपसे पहली बार बात हो रहा है मेरे।
1: जी जी, तो कैसा लग रहा है आप?
2: बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। बताइए आज यही गीत सुनवाए आप?
2: यही गीत सुनवा दो
1: जी। चलिए सुनवाते फिर आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो युवाणी, नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: मैं सुनील यादव बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी, कहाँ
1: से? अमोड़ा केसकाल।
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: दीदी मैं तो बेंजो बजाता हूँ, प्लस पेंटिंग का काम भी करता हूँ।
0: अरे वाह, पेंटिंग का काम करते हैं। किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं?
1: जैसे लिखने का हो गया, राइटिंग वाला, और चित्रकार।
0: चित्रकार, काफी अच्छी कला है आप। और बाकी आपको क्या क्या करना पसंद है?
1: और दीदी मैं बजाता हूँ, बेंजो बजाता हूँ।
0: कौन सी फिल्म के सॉन्ग सुनना चाहेंगे?
1: दीदी सुना देना, फूल और कांटे में जो है एक गीत है, पहली बारिश मैं और तू, इस तरह का गीत है।
0: अच्छा, बहुत प्यारा गीत है। चलिए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: बहादुर कर रहे हैं
1: जी।
0: तो हमको आज आपके तरफ से एक गीत सुनना
1: जी,
0: था
1: जी। बताइए कौन से फिल्म का गीत?
0: फिल्म है हीर राजा। हीर राजा
1: जी जी, हीर राजा फिल्म का।
0: हाँ, उसमें गीत का बोल है, गायक कलाकार है मोहम्मद रफी। गीत का बोल है, ये दुनिया मैं फिर मेरे काम की नहीं। गीत के बोल है
1: जी जी।
0: मैं एक हल्का से शायरी सुनाना चाहता हूँ।
1: जी जी बिल्कुल सुनाइए।
0: क्या हुस्न ने देखा है, क्या इश्क ने जाना है, हम फाटी नशीनों का ठोकर में जमाना है।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शायरी सुनाई आपने। जी जी, चलिए सुनवाते हैं फिर ये खूबसूरत सा गीत आप।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो
3: जी, नमस्कार, किन से बात हो रही है?
2: नमस्कार, मैं संतोष कुमार सोनी, गोल बाजार छपरी कला, जिला मुंगेली।
3: सोनी जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक है सब
3: जी। और बताइए, क्या करते हैं आप?
2: है?
3: जी क्या करते हैं आप?
2: ये भी किराना दुकान है, जनरल सामान वाला।
3: जी जी जी। और क्या क्या करना पसंद है आप?
2: अब गाना सुनना, काम भी करना।
3: जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गीत सुनवाए आप?
2: बारिश वारिश तो आज हुआ है, आज बाजार है यहाँ का। आज
3: जी
2: गुरुवार को आज बारिश अभी हुआ है 2 घंटा बाद।
3: जी जी,
2: अभी बारिश वाला पानी वाला है, बरसात वाला गीत, बरसात वाला गीत।
3: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत। चलिए, मतलब बरसात का मौसम है इतना सुहाना और उस पे आपका इतना खूबसूरत गीत। जी चलिए सुनवाते फिर ये खूबसूरत सा गीत आप।

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18%

0: कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: हेलो युवाणी, नमस्कार।
2: हाँ नमस्ते, नमस्ते
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ।
1: अच्छा, क्या नाम है आपका?
2: मेघनाथ नाग।
1: मेघनाथ जी,
2: जी। अच्छा, आप कौन बोल रहे हो?
1: मैं आलिमा अघाड़ी।
2: आपसे पहली बार बात हो रहा है।
1: जी जी, तो बताइए क्या करते हैं आप?
2: मैं ड्राइवर हूँ और खेती किसानी भी।
1: अच्छा, खेती किसानी भी करते हैं, और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैं इधर कोंडागांव जिला माकड़ी ब्लॉक से।
1: अच्छा, कोंडागांव जिला से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बताइए कौन सी फिल्म सुनना चाहेंगे?
2: आज कोई भी सुना जी, बरसात वाला, बरसात का मौसम
1: जी। तो चलिए सुनवाते हैं आपको प्यारे से गीत।

0: 160। श्रोताओं, इन नंबरों के आगे जगदलपुर का एसटीडी कोड 07782 लगाना ना भूलें।
1: दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा।
0: किस्मत कितनी ही रोशन हो, मेहनत की आग में जलना जरूरी है। मंजिल कितनी ही पास हो, कुछ कदम चलना जरूरी है।
1: दोस्तों, आज के युवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही।
0: कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात किसी नए कंपेयर साथी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। मैं पराग चंदिल
1: और मैं आलिमा अघाड़ी।
0: नमस्कार।

युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। संसद के मानसून सत्र 20 जुलाई ले हो ही शुरू और 13 अगस्त तक चलही। राज्य मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज ले नवा रायपुर में शुरू। और मौसम विभाग हा अवैया 3 दिन तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। अब समाचार विस्तार ले। संसद के मानसून सत्र ये महीना के 20 तारीख ले शुरू होही और 13 अगस्त तक चलही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हा बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा 20 जुलाई ले संसद के मानसून सत्र बुलाए के सरकार के प्रस्तावला मंजूरी दे दिहावे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू हा कहिन कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दा ऊपर सार्थक बहस चर्चा और निर्णय ले में ध्यान केन्द्रित करे जाही। राज्य मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज ले नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में शुरू हो गये है। पहले दिन की शुरुआत मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास के सत्र ले होइस। ओमन मंत्रिमंडल नेतृत्व जीवन मूल्य आंतरिक संतुलन और सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता जैसन विषय ऊपर बात करिन। ये दौरान बताया गया कि जनप्रतिनिधि की भूमिका सिर्फ विभागीय कामकाज तक ही सीमित नहीं है, फिर ओमन जनता के बीच भरोसा के केंद्र घलो बनना है। उन्हें सत्र के दौरान अभय करंदीकर हा मंत्रिमंडल के सदस्य मंडला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा आधारित निर्णय और डिजिटल गवर्नेंस के बदलत भूमिका ले परिचित कराइन।

बताइन कि अवैया बेरा मा वही शासन प्रभावी माने जाही जौन तकनीक के उपयोग सिर्फ सुविधा बर नहीं फिर तेज फैसला बेहतर निगरानी और पारदर्शी डिलीवरी बर कराए। एकर अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्रहा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऊपर मंत्रिमंडल चर्चा करिन ओमन ग्रामीण आय बढ़ाए बर कृषि मूल्य श्रृंखला ला मजबूत करे बर स्थानीय उद्यम ला बढ़ावा दे बर और गांव केंद्रित विकास के जरूरत ऊपर जोर दिन। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि बस्तर बर अब अगला चरण विकास जन विश्वास

मंत्री मंडले चर्चा करिन ओमन ग्रामीण आय बढ़ाए बर कृषि मूल्य श्रृंखला ला मजबूत करे बर स्थानीय उद्यम ला बढ़ावा दे बर और गांव केंद्रित विकास के जरूरत ऊपर जोर दीन। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि बस्तर बर अब अगला चरण विकास जन विश्वास

0: प्रशिक्षित जिम्मेदार व्यवस्था के रूप में गढ़ना हे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा अलनीनो के सेती देश के कुछ एक जगह मा सामान्य ले कमती वर्षा और ओखर प्रभाव के समीक्षा बैठक करिन। श्री शाह कहिन कि सरकार अलनीनो के सेती देश के कुछ एक जगह मा कमती वर्षा और संभावित सूखा के स्थिति मा सरलग नजर राखे हवय। ओमाना कृषि मंत्रालय और दूसर मंत्रालय मनला सतर्क रहे के और किसान मनला बने फसल के बोआई के बारे में सलाह दे बर राज्य सरकार मन संग सलाह करे के निर्देश दीन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चालू खरीफ सीजन और संभावित अल्प वर्षा के तैयारी के समीक्षा करत अधिकारी मनला किसान मन बर खाद बीजा और सिंचाई के पर्याप्त व्यवस्था निश्चित करे के निर्देश दीन है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश ला 46,000 टन ले ज्यादा डीएपी उर्वरक की आपूर्ति मिल गया हवे। मुख्यमंत्री हा जल संरक्षण वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार ऊपर जोर देवत सबो जिला पर कार्य योजना तैयार रखे के निर्देश दीन। ओमन की हिन की संभावित अल्प वर्षा के चुनौती ले निपटे बर राज्य सरकार हा पूरा तरीका ले तैयार है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कोती। नई दिल्ली में 16वां वित्त आयोग के अनुशंसा ऊपर रखे गए राष्ट्रीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुईन। कार्यशाला में ग्रामीण स्थानीय निकाय पर अनुदान के अनुशंसा के जानकारी साझा करेगी। एकर अनुसार छत्तीसगढ़ ला अवैया 5 बछर में 11,664 करोड़ रूपया के अनुदान मिली। ए मौका में ग्रामीण स्थानीय निकाय मनला वित्तीय संसाधन के आवंटन पंचायत के वित्तीय क्षमता ला मजबूत करे के और 16वां वित्त आयोग के अनुशंसा में कामकाज ले जुड़े विषय ऊपर गोठबात करेगी। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम 11,000 दिव्यांग मनला स्वरोजगार पर ऋण देवाय के लक्ष्य रखे है। संगे संग हितग्राही मनला कौशल विकास प्रशिक्षण उद्यमिता मार्गदर्शन और विपणन सहयोग घलो दे जाही। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया निगम ले अधिकृत आने आने बैंक के प्रतिनिधि मन के बैठका लेके स्वरोजगार ऋण योजना के काम के समीक्षा करिन। ए मौका में श्री कावड़िया कहिन कि राज्य सरकार के उद्देश्य दिव्यांग मनला सिर्फ आर्थिक मदद दिवाना नहीं फेरो मनला सफल उद्यमी बना के प्रदेश के विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाना है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में जनसंचार शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्थापना करे जाही। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल और हिसार के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई के बीच हुए बैठक में एकर ऊपर सहमति बने है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम डहारले अवैध शिकार के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जावत थे। यही कड़ी मां कवर्धा परियोजना मंडल हा नर चीतल के अवैध शिकार के मामला में 7 जन आरोपी मनला गिरफ्तार करके जेल भेज दे है। मिली जानकारी के अनुसार बोरला परियोजना परिक्षेत्र के भलपहरी बीट के जंगल में शिकार मां जाल बिछा के चीतल के शिकार करिन। एकर बाद चीतल के मांसला आपस में बांटे के तैयारी करे जावत रही तभे वन विभाग के टीम हा दबिश दे के आरोपी मनला गिरफ्तार करिस। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहारले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र मन एके संग्रह रिले कर ही ए बखत के अंक मा सूरजपुर जिला के बारे में जानकारी दे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। राजधानी रायपुर संग्रह प्रदेश के कतकोन जगह में आज गरज चमक के संग तेज वर्षा होए के खबर है। मौसम विभाग अवैया 3 दिन तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में

0: भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे हे। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणीहा आकाशवाणी समाचार ले गोठ बात करत बताइन कि उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक ठन चक्रवाती घेरा बने हे। एकर प्रभाव ले प्रदेश में बारिश के गतिविधि बढ़ गया हवे। ओमन हा बताइन कि अवैया 24 घंटा के दौरान राज्य के एकतकुन जिला में भारी वर्षा होए के संग आकाशीय बिजली गिर सकत हे। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फेर। संसद के मानसून सत्र 20 जुलाई ले हो ही शुरू और 13 अगस्त तक चलही। राज्य मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज ले नवा रायपुर मा शुरू और मौसम विभाग हा अवैया 3 दिन तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ मा एक दो जगह मा भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे हे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को हैं। संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: इयं आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। भारत इज़राइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां ऊर्जायां परिवहने उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
1: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21तमायाः शताब्द्याः महत्तम

0: महान् देशभक्तः दार्शनिकः आध्यात्मिक द्रष्टा चेति व्यपदिष्टः। तेन प्रोदीरितं यत् स्वामी विवेकानन्देन भारतस्य सभ्यतामूलक चेतनायाः पुनर्जागरणं विहितम्। सहैव देशस्य सनातनज्ञानं कृत्स्नं हि विश्वं प्रति प्रसारितम्। उपराष्ट्रपतिना सबलं विज्ञापितं यत् स्वामिनः आत्मविश्वासपूर्णस्य प्रबुद्धस्य करुणापूर्णस्य च भारतस्य परिकल्पना अद्यापि राष्ट्रस्य विकासयात्रायाः मार्गं दिशति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रतिपादितं यत् भारतस्य संस्कृतम् आध्यात्मिकतां राष्ट्रियचेतनां च वैश्विकपटले प्रतिष्ठापयितुं स्वामी विवेकानन्दस्य यत् अवदानं वर्तते तत् अनुपम अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य डिजिटल परिष्कारैः उपभोक्तृन्यायं सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रयत्नान् रेखांकितवान्। केन्द्रीयमन्त्रिणा प्रह्लादजोशिना लेखं प्रकाशयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बद्धपक्षैः सह व्यापकमन्त्रणायाः परं ई जागृति मञ्चः परिष्कृतः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूलं वर्तते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। भारतीय समयानुसारं क्रीडेयम् अद्य सायं 7 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं परमानंद करियारे और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए पारंपरिक रचना।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।

0: किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।

0: माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242। सुनो ना।
2: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242। सुनो ना।
2: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए हल्बी लोकगीत में मुंडा गीत, कलाकार हैं रामलाल और साथी।

0: आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत में मुंडा गीत, कलाकार थे रामलाल और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: अब प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे?

0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।

0: घर घर आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आज से आईआईएम रायपुर में शुरू हुआ 2 दिवसीय चिंतन शिविर, मुख्यमंत्री ने इसे बदलते समय की आवश्यकता बताया। 16वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ को अगले 5 वर्षों में 11,664 करोड़ रूपये का अनुदान प्राप्त होगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज से नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम में शुरू हो गया है। पहले दिन की शुरुआत मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास के सत्र से हुई। उन्होंने मंत्रियों से नेतृत्व, जीवन मूल्य, आंतरिक संतुलन और सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता जैसे विषयों पर संवाद किया। इस दौरान बताया गया कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल विभागीय कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जनता के बीच भरोसे का केंद्र भी बनना है। वहीं सत्र के दौरान अभय करंदीकर ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आधारित निर्णय और डिजिटल गवर्नेंस की बदलती भूमिका से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वही शासन प्रभावी माना जाएगा जो तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि तेज फैसले, बेहतर निगरानी और पारदर्शी डिलीवरी के लिए करे। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि बस्तर के लिए अब अगला चरण विकास, जनविश्वास और अवसरों का है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंतन शिविर को बदलते समय की आवश्यकता बताया है। उन्होंने कहा कि शासन को निरंतर सीखते रहना होगा, स्वयं का मूल्यांकन करना होगा और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप खुद को तैयार रखना होगा। नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की अनुशंसा की जानकारी साझा की गई। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ को आगामी 5 वर्षों में 11,664 करोड़ रूपये का अनुदान प्राप्त होगा। शिक्षाविद और राष्ट्रवादी विचारक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को अक्षुण बनाए रखने राज्य के संभागीय और जिला मुख्यालय वाले सभी नगरीय निकायों में उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया कि मूर्ति स्थापना के लिए 10 करोड़ 60 लाख रूपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डॉ मुखर्जी की प्रतिमा राज्य के 32 नगरीय निकायों में लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि 6 जुलाई को डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जलवायु परिवर्तन और सुपर अल नीनो के कारण संभावित अल्पवर्षा की चुनौती से निपटने के लिए कल धमतरी में कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक्सटेंशन रिफॉर्म आत्मा योजना के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषक मित्रों को आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक खेती और फसल बीमा की जानकारी दी गई ताकि वे गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक कर सकें। प्रशिक्षण में कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों ने कम वर्षा की स्थिति में फसलों को बचाने के लिए किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने मौसम की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पारंपरिक फसलों के स्थान पर कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों, दलहनी और तिलहनी फसलों को प्राथमिकता देने की सलाह दी। साथ ही पानी की बचत के लिए वैज्ञानिक तरीके से धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाने पर जोर दिया। इसके अलावा खेतों में उपलब्ध पानी का सही उपयोग, संतुलित पोषण प्रबंधन और मिट्टी की नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में जनसंचार शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल और हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम विश्नोई के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:00

0: बजकर 10 मिनट तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में सूरजपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम ने 11,000 दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने कल विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता मार्गदर्शन और विपणन सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान करंट लगने की दो अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। राजधानी रायपुर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में आज सुबह मकान की छत पर सोलर पैनल लगाते समय दो मजदूर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। इस घटना में दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर बिलासपुर जिले के ग्राम भाड़म में कल खेत में काम करने गए पूर्व सरपंच समेत परिवार के 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों में मां और के 2 बेटे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक पूर्व सरपंच दसनबाई अपने 2 बेटों के साथ खेत में मवेशियों को घुसने से रोकने के लिए मेड़ पर GI तार और नायलॉन की रस्सी से घेराबंदी करने गई थी। इसी दौरान खेत में बिछे तार में अचानक करंट आ गया और 3 उसकी चपेट में आ गए। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए कि उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है, इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा के साथ ही आकाशीय बिजली गिर सकती है।
2: प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहने की आगामी 3 दिन तक रहने की चांसेस है और आज और कल जो है दंतेवाड़ा, नारायणपुर और इससे लगे हुए क्षेत्र में, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और इससे लगे हुए क्षेत्र में अति भारी वर्षा की ज्यादा संभावना है। इसके अलावा भी बिलासपुर, रायपुर, बस्तर और राजनांदगांव संभाग में भी, ये जिलों में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का संभावना है। और परसों से भारी वर्षा का गतिविधि कम होने के चांस है, लेकिन विस्तार रूप से वर्षा जो है वो परसों भी होने की चांसेस है।
0: छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा अवैध शिकार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कवर्धा परियोजना मंडल ने नर चीतल के अवैध शिकार के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बोड़ला परियोजना परिक्षेत्र के भलपहरी बीट स्थित जंगल में शिकारियों ने जाल बिछाकर चीतल का शिकार किया था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किया है। सभी आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की ग्राम पंचायत तरई गांव के सचिव किशन राठौर को प्रशासनिक अनियमितताओं और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसी जिले में जिला प्रशासन ने मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के आरोप में सेमरा स्थित DD अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और ICU वार्ड को सील कर दिया है। साथ ही अस्पताल का पंजीयन अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है। बालोद जिले के ग्राम संबलपुर में बीते 30 जून को एक व्यक्ति के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोंडागांव पुलिस ने दूधगांव चौक के पास एक मोटरसाइकिल से गांजा तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। और

0: रेलापेंड्रा मरवाही जिले में बीती रात एक अनियंत्रित ट्रक ने गायों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 9 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आज से IIM रायपुर में शुरू हुआ 2 दिवसीय चिंतन शिविर। मुख्यमंत्री ने इसे बदलते समय की आवश्यकता बताया। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ को अगले 5 वर्षों में 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

बाबलो क्षेत्र चो लोक कथा और क्रांतिकारी जननायक मंच बारे में खूबे कम जानसत, नहीं तो जानसत तो कोनी कोनी जानत बल नहीं हुनी का झाम के कसन करते रहे। असन लोक कथा मन के हम चो नवा नुआ जुआन मन के पीला मन के हम के लोक कथा ले हुन मन चो जीवना के सांग तो रहे। जसन की क्रांतिकारी हम चो देश दुनिया ने कितरो महान काम करला और हम चो समाज चो बाढ़ती करला। लोक कथा के जीवत रखतो का जे आम चो घर परिवार स्कूल कॉलेज और समाज चो महत्वपूर्ण भूमिका रहे से। जसन कि स्कूल कॉलेज ऊपरे परिवार में आम चो कर्तव्य आए कि आमी आप लोग पीला पिचका भाई बहन के लोक कथा मन के सांगू सुनाऊ मांतर और हम चो आया बाबा मन चो बल गोटो काम असन बल रहो कि हुन मन जिदल दाय बल समय मीरे से। जसन की भात खातो बेरा नहीं तो सौतल्ले आगे नहीं तो मंजन बेरा पेज बेरा खाली समय आने हुन मन के पीला मन के बसुन भाती काय मजा हुन मन के कहनी सुनाओ नहीं तो कह का नहीं तो लोक कथा असन सुना ले काय कि हुन मन चो सुन तो चो क्षमता विकसित हुआ है और हुन मन चो विचार चो तो क्षमता बल विकसित हुआ है। जे चो कारण हुन मन चो दिमाग विकसित हुन भातिन आगे अच्छा काम करते काजे बाढ़ती हो से। जसन कि स्कूल ने बले हमी कहानी वाचन नाटक और लोक कथा मंचो प्रतियोगिता कर सकूँ से। आज जो आधुनिक तकनीक जो उपयोग करूँ जसन कि वीडियो ऑडियो एनिमेशन और ई पुस्तक स्वरूप ने बले प्रस्तुत करता है जे चो कारण नवा पीढ़ी बले रुचि धरुक अपनाए दे। जसन कि आजकल खूब ही अच्छा माध्यम का हो सके से सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में तो सपा है हमी सुनू से देखूँ से कि होता कोनी बले फोन ने लगू रसत कोनी यूट्यूब ने कोनी इंस्टाग्राम ने कोई फेसबुक ने तो हमी हुन में जसन कि हम चो गांव पारा में कोनी असन सियान सजन मन रह जो कहका कहनी नहीं तो लोक कथा मन के सांग सो तो हुन मन के नहीं वीडियो बनोन भातिन नहीं तो ऑडियो बल रिकॉर्ड करून भातिन। लेकिन वीडियो बना ले खूब अच्छा प्रभाव करी रहवाए हुनके रिकॉर्ड करून भातिन हम यूट्यूब में डालुक सकूँ से जे में लोग मने जानोत कि हम चो क्षेत्र में लोक कथा कसन रली हम चो क्रांतिकारी मन कसन रला तो हुनके सुन ले में हुन मन चो रुचि तो बढ़ जाए और अपन सुनून भातिन आप लोग साथी संगाती के बोले सांगवत की नहीं कितरो अच्छा मैं लोक कथा सुन ले हम चो क्षेत्र चो जसन की वीर गुंडा धुर चो जहन झाड़ा सिरा।

0: प्रतिशत टैक्स की सितर मुन्न अद 28% मत्ता एच एस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सितर इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीट लेकिन 8% टैक्स मंता नेलत माट इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूड चक्का न गाड़ी 8% जीएसटी मोला देने दोरकिता अदेन के और सोबेड़ कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता
1: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18%

0: हाँ और जसन सांज के उन्हीं 4:30 के बंद करूँ हम।
1: अच्छा।
0: अगर कोनी लेट ले बोली ला कहीं दूर ले तो उन मन के बोल दकान दे हम
1: रात ले बोले।
0: हाँ
1: अच्छा हाँ हाँ तो दक ये जसन की गुफा बोले ने साल ने बोले कौन महीना तक रहे से ने?
0: तो दादा ये जो गुफा है नहीं ये 12 महीना चालू रहुआ है।
1: अच्छा
0: हाँ बरसात नहीं बोल बंद नहीं रहे।
1: अच्छा
0: हाँ के भी बोले उत्साह खास मतलब जसन बरसात नहीं बोले उग सकास की असनी गर्मी ने बोले उग सकास को नहीं बोल सीजन नहीं उग सकास मतलब।
1: अच्छा
0: हाँ के भाई बंद रू नुआ है बरसात नहीं बोले
1: गुफान पानी नहीं रहे
0: नहीं रहे
1: नहीं रहे
0: थोड़े बहुत उलवा है मांतर उतलो नहीं उलवा है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: बल्ले दुखुकला
0: है वैसे। हाँ दुखुकला है वैसे।
1: अच्छा हाँ हाँ बल्ले ने सड़क एकदम एता तक अमर लिसे ने?
0: हाँ
1: ये जसन क्या मैं लगू बाहुल सड़क डामर सड़क के लिए से
0: हाँ
1: ये ताले कितलो दूर हिंडिक जाओ पड़े से?
0: ये ताले कम से कम ज्यादा नहीं है 500-600 मीटर आसन इंडून जाओ पुड़वा है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ हाँ बोले ज्यादा दूर बोले
0: हाँ ज्यादा दूर नहीं है केंडी डोंगरी चेगु पुड़वा है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ हाँ हाँ बोले ने दख तो उसन कहीं डर लागतो उसन ता कहीं पशु जानवर चो डर रासे नहीं?
0: ये ता तो उसन काई नहीं है जसन जानवर उनवर चो डर उतलो नहीं है। जसन के ता खूब कम दका दिवा तसन जसन शेर भालू जोन बोला है
1: हाँ
0: खूब कम दका दिवा।
1: अच्छा नहीं मतलब कम दखा दी बात बोल सी आसोस की नहीं आसोस
0: आसो तो थी मांतर के भी आमी दखलू
1: नहीं
0: से नहीं।
1: दखला सा?
0: हाँ ये बदला आमी नहीं दखलू से तारू वहां फिर बोले
1: हाँ
0: दखलू से नहीं ये।
1: अच्छा
0: हाँ
1: कसन बोले का है कि पूरा आमी दशन गोटी बोल चारों बाटे
0: हाँ
1: बोले रुक रही जंगल आसे बोले खिनिक बाहर ही ले तो लोग कच खिनिक पशु जानवर से डर बल लागे से
0: हाँ नो
1: है कि नहीं?
0: हाँ हाँ
1: तो उन्हीं काज में पूछे से ता आसोत की नहीं याद देते?
0: आसो तो थी लेकिन के भी बेड का टोक नहीं होली से दकुक नहीं होली से।
1: हाँ बोले डर नहीं आए
0: हाँ
1: बोले
0: डर नहीं आए मान चलो।
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: हाँ तो बोले तुम चो लागे दखा तो काजे सब आसाज बोलो फिर
0: हाँ हाँ
1: लाइट वगैरह सब
0: हाँ
1: तुम
0: लाइट आसी हेलमेट बोल दी हम
1: हेलमेट
0: जसन।
1: बोल
0: हाँ
1: हाँ
0: उनके पिंदू नो लुक फोड़ुआ है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: बोले ने पूरा जो 100 रुपया लागे से
0: हाँ एक लाइन से 100 रुपया
1: सौ
0: लगवा है।
1: रुपया ने
0: हाँ
1: अच्छा 100 रुपया ने पूरा दकान दे सर
0: हाँ हाँ
1: हाँ हाँ हाँ तो बोले ने दख तुम्हें अभी 5-6 जना सु बोल सा
0: हाँ हाँ
1: आजकल भीड़ हो से
0: हाँ ये थोड़े सीजन अमरे से तो
1: हाँ
0: ये उकमुरिया लासी लोग
1: अच्छा
0: बाग।
1: हाँ
0: हाँ जसन ये मतलब अच्छा जगह बोला से जसन बाहर बोला से जोन कांगेर नदी बुलवा
1: हाँ हाँ
0: तो इता ज्यादातर पिकनिक का जी बोली हुआ जसन बात उत जोन पिकनिक बना के हुआ तो सन लोग मन ज्यादातर इता हुआ।
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा ये लगे लगे जैसन कि कोनी बाहर ले ये उन बाती आप लोग पिकनिक जैसन तुई बोल लीस असन आप लोग खाना खाने बनाने बोले सको थे था?
0: हाँ हाँ
1: अच्छा
0: जसन ने ले दरुन बाती बात बाती बनान कौन बाती जाऊ सको
1: जाऊ
0: था।
1: सको
0: हाँ
1: अच्छा
0: कोनी खाई
1: नहीं बोले
0: मतलब
1: बोल
0: हाँ नहीं बोलो।
1: अच्छा बड़े पूरा सुविधा
0: हाँ
1: सो
0: पूरा सुविधा से
1: हाँ हाँ ते बोले बोले आजकल दिन ने कितलो सन लोग अतामरे सो जाल
0: यता दिन ने उनी उतलो तो ये भी युगनी मुरिया लास्ता क्योंकि उतलो पता बोलनी है कि ये ता मादर कोंटा ने गुफा से बोलून उतलो पता नहीं है तो थोड़े कम है सोते भी।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ तो अलना चेतन बगे सांग जसन की कोनी बोले पूछुक चाहे से उक चाहे से तो कहीं फोन नंबर वगैरह से
0: हाँ फोन नंबर वगैरह से
1: हाँ तो अल कितलो है नंबर सांग
0: ये आए मोच नंबर 8305975869
1: अच्छा
0: यही नंबर आए मोचो।
1: हाँ हाँ बोले ये
0: तो
1: नंबर ने पूछुक ले
0: हाँ
1: सको
0: अगर ये नंबर नहीं लगली जसन अगर अगर बिना लगाए बोले ये ताई इले जसन ये ताऊमर ले नंबर मन ने आसो जसन उता हम चो टिकट काउंटर आसे तो उता नंबर मन बोला सो तेता जो जोन
1: अच्छा
0: गाइड
1: लिख
0: मन
1: लो
0: चो।
1: रास
0: हाँ लिख लो रासे और उन गुफा ने बोला से तो उता ये उन बाती बोल लगा सकास।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ अच्छा चेतन ये बोल सांगना जसन की उन मंचो ये तो फिन तो काजे भीतरे ओल तो काजे कपड़ा बोला से बोल से तो ये बोले तुम्हें खुद चुआई कि कहीं सरकार बाटले मदद मिल लेना?
0: नहीं थोड़े वेता तो सरकार बाटली थोड़े बहुत मदद मिली जसन ये रोड उड चो थोड़े बहुत बनान दिला और जोन बाकी ये पर्यटन ने जोड़न दिला।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ
0: तो जिला प्रशासन बाटले ये
1: हाँ
0: मतलब हमके ट्रेनिंग दिलाए था गाइड उड करतो काजे।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ हाँ और तुम के कहीं प्रशिक्षण वगैरह एता ही दिला कहीं
0: हाँ
1: बाहर ही नहीं
0: एता
1: रहा
0: दिला।
1: एता ही
0: हाँ
1: दिला
0: गाँव ने ची
1: अच्छा
0: हाँ जिला प्रशासन बाटले दिला हमके ट्रेनिंग।
1: अच्छा
0: हाँ
1: बोले कित दिन चो ट्रेनिंग रही गाल
0: एता 2 महीना चुरुली।
1: हाँ
0: हाँ
1: अच्छा बोले ट्रेनिंग तान तुमको काय काय सिखाला कसन सिखाला
0: इता जसन इता जोन बाहर ले पर्यटक ही हुआ तो उन मन संग कसन गोट बात करतो रहा है कसन उन मन संग व्यवहार करतो रहा है और इता गाइड मतलब कसन करतो रहा है उन मन संगे असन काय काय मतलब सिखाला खूब
1: अच्छा
0: सिखाला काय काय।
1: हाँ हाँ बल्ले ने पूरा
0: हाँ इता
1: जो देखो के ऐसा तुम मन संग कसन व्यवहार
0: हाँ
1: कर
0: कसन व्यवहार करतो रहा है उन मन संग

0: गोटिया तुरा और ये तागु पान कसन गाइड कर तुरा ये मन की काय काय सांग तुरा उन मन की पूरा सिखाला।
1: अच्छा
0: हाँ
2: तो धक चेतन धक के भी पांच छह जना सु बोल सिसना जसन की लोग इला बोले टिकट जोन काट सा सुन पैसा के बोले तुम कसन बाट सा कसन
0: तो जसन ये जोन पैसा है ता धरून से टिकट उकट काटून से तो ये जोन पैसा के नहीं बाकी 20% नहीं जनपद पंचायत के देख पुड़वा और बाकी परसेंट आम चो जोन अकाउंट बना लू से जोन समिति ने बाकी उता मतलब जवा और बाकी जोन 80% का 90% जोन उन के जानू आमी जसन एता गाइड करून से गाइड मनाम तो उड़ता मतलब जसन परसेंट हिसाब ने आमी बाटू आम।
1: अच्छा
0: महीना लास्ट ने
1: महीना लास्ट
0: हाँ।
2: अच्छा बतले जितलो आमदनी वैसे तुम
0: हाँ हाँ।
1: अच्छा
2: मतलब तुम चुका के एक रोजगार असन मिले
0: हाँ हाँ
1: आई के नहीं
0: हाँ रोजगार असन होली मतलब।
1: अच्छा बोले हर समय तुम इतना रहे
0: साथ हाँ हाँ हर समय रहूँगा
2: अल्ला चेतन मगेल तू इतलो अच्छा ये मांदर कोंटा गुफा चो ये दर्शनीय स्थल चो दक तो लोग मान काजे इतलो अच्छा सांगली साल जुआर ना
0: जुआ जुआ दादा
3: ये तो रली काय बढ़िया भेंट वार्ता जेने चेतन बघेल दादा भेंट हो रलो और हम चो भेंट करता रला बलवीर सिंह कच्छ जेने सांगो रला कि मादर कोंटा गुफा ने पर्यटन मन कितरो लोग ऐसा थे इथा चो सुविधा काया है किदल लाए तक खुला रहे से बल्लो ने कि हम चो बस्तर ने दर्शनीय स्थल बल्ले खूब आसे और हर साल गोटोक न गोटोक नवा नवा खोज होते च रहे से जसन की आजकल फेमस बल्ले तीरथगढ़ चितरकोट आसे मेंद्री घूमर तामड़ा घूमर आसत हांदावाड़ा आसत नम्बी आसत बल्लो ने आजकल फेरे होलिस गोटोक फेमस झरना झारा लावा तो उसने गुफा गोटोक और खोज होली से ग्रीन गुफा बोलवात तो असन प्रकार ले खूबे हम चुलक दर्शनीय स्थल मन आसत जेके देश विदेश ले दखुक लाए सो थाम चो दर्शक मन तो हम चो ये भेंट वार्ता च बाद में हमी दादा मन सुरता कर सोत की ज्ञान ध्यान च गोट तो बढ़िया सांगे से मांतर गीत गोविंद बाटे के वे मूर करे दे तो दादा दीदी मन मनी भुलक ले से हम चो लगे गोटो गीत आसे आले ये गीत के सुनो गीत चो गालो बिताए हम चो श्री लखीसर खुदराम मरहुन चो संगवारी मन तो आले गीत के बल सुनो।

काय रसिया गीत रली, देश बदलली, पढ़ुक लिखुक सीखतो राय, चतुर होतो राय। ये रली हम छो लखेसर खुदराम और हंचो संगवारी छो गावलो गीत। तो दादा दीदी मन आजकल चमास छो समय आए तो तुम्ही आजकल बुता बायना ने खूबे व्यस्त आसत और कोनी रोपा लगा सित होती, कोनी लई छिटसा सित होती, तो अपन चो देहे थकुन जली से। तो होनी काजे तुम चो देहे के चंग चंगा बना, तो काजे गोटोक गीत मोच लगा से। अली ये गीत के बलि सुनो।

काय रसिया गीत रैली लेकी ठिया ठिया गीत गा लो बिता मन रला हम छो शिवराम नागर हुन छो संगवारी मन। तो दादा दीदी मन समयानी उन एक लागे से और समय देखुन जगबल लागे से। तो कार्यक्रम हम छो समय घड़ी के देख लो ने समय हम जेली से। तो दादा दीदी मन तो मैं तुमके मुझ मुद्रा के सकले से और विदा मांगे से। बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए गाँव करी दादा दीदी बोड़ू बढ़ाए संग जोहरिया संगवारी के जातुपुरे मैं झिटकू करें से राम राम।

बस्तर के स्वर कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसान वाणी।

फोन इन किसान वाणी सुनतो सपा खेतिहार दादा दीदी मन के मैं धर्मू करें से जुहार। तो दादा दीदी मन दखा बेड़ा बुता तो अमर ली ने कोनी धान बुने से कोनी कोनी रोपा लगा सोत और एबे चो बाढ़ते चो बेरा ने आम के और बलसनी

0: કઈક વાટ મન કે કરતો રહે. અસની વાટ ચો ગોટ આજી આમી ગોઠ્યાવા, હું નાય મશરૂમ ચો ખેતી, બલ્લો ને ફૂટુ નહાલે છાતી બલ બલું સે. એચો બોલે ખેતી હુવાય, ઓર એચો કસન ખેતી કરતો રહે, કાય કાય જમક લાગે છે, કહાં બીચા મીરે દે, કસન જતન કરુક લાગુઆય, એ સપાય ગોટ કે સાંગતો કાજે આજી આમ ચો પૂરે આસોત મશરૂમ ખેતી ચો વિશેષજ્ઞ શ્રી ધનેશ્વર સિંહ માંજી. હા તો સુનુ, પહેલ ફોન કોણ કિસાન દાદા કરે છે?
1: હેલો.
2: હેલો.
1: હા ફોન માણી.
2: હા સરજી નમસ્કાર.
1: હા નમસ્કાર. કાય નામ સાંગલી દાદા?
2: મનોજ કુમાર સાહુ.
1: મનોજ કુમાર સાહુ.
2: લોરમી મુંગેલી જ્યાં પડતે હમાર.
1: કા કામ કરથસ?
2: હમન કૃષિ કામ કરથન.
1: અચ્છા.
2: મોડુ ટી કમરા એક્સ્ટ્રા મારે હે, મતલબ ખાલી પડે, કોઈ યુઝ નહીં હોતે.
1: અચ્છા.
2: તો મેં મશરૂમ કે ધંધા કર્યા કરતા, મતલબ બિઝનેસ કરને કુલ લગાના ચાહત રહે, કા કા કર લગતે કોઈ બારે કુ ડિટેલ મે બતા દેતો તો બડી કૃપા હોતી.
1: બિલકુલ દાદા, યે આજ હમર સંગ જો હે વિશેષજ્ઞ જો હે ધનેશ્વર સિંહ માંજી જી બેઠી ને, ઓર ઓ ઉમન તુમન લા અચ્છા લે એ બારે મે જાણકારી દેહી. ઠીક હે.
2: હા જી. હા જી.
3: હા ભિયા મનોજ ભિયા.
2: હા ઓહી દુ તીન ટી કમરા મોર મે ખાલી પડે રહી છે.
3: હા ઠીક હે.
2: ઓ યુઝલેસ પડે હે, તો મેં સોચત રહે હમ મશરૂમ કે કુછ ઘર બેઠે કર લેતે હૈ, એસે કહી કે.
3: ઠીક હે ભૈયા. અભી જો હે ના, આપ આપ મન કર સકતો પેરા મશરૂમ કે?
2: હા હા જી, પેરા મશરૂમ.
3: હા આવો, અભી પેરા મશરૂમ કે બહોત બઢિયા સમય હે, મૌસમ હે, આવો એ વાલા ચીજ લા આપ મન કરકે અચ્છા ઉત્પાદન કર સકતો ઓર એક પહેચાન બના સકતો, એક વ્યાપાર શરૂ કર સકતો હે ની ભાઈ.
2: હા જી.
3: બસ ओकर तापमान आर्द्रता अभी बहुत अच्छा है, और दूसरी चीज है साफ सफाई के विशेष ध्यान रखना पड़ते. जब भी आप मन मशरूम के उपचार पैरा उपचार करू तो किसावली पानी में आप मन 130 मिलीलीटर फार्मालिन और 8 से 10 ग्राम बायोस्टीन ले लो और घोल लो 100 लीटर पानी में, और 10 किलोग्राम पैरा साबुत पैरा ला 12 घंटा पर डूबो के रख दो, जिसमें कि वो अंदर में पैरा में जो भी फंगस बैक्टीरिया रही, जीवाणु कीटाणु जो रही, वो खत्म हो जाए, निर्जीवकृत हो जाए करना चाहिए. उसके डूबा वाला पानी निथार के बढ़िया थोड़े थोड़े हल्का हल्का सुखा के ओला आप मन इस पानी कर सकते हो. पहला चीज तो है गुच्छा से करते, गुच्छा बांध बांध के एक साइज में नाप.
2: पन्नी में गुच्छा बांध बांध के.
3: हाँ वैसे नहीं करके अगर आप शॉर्ट कट करना चाहते हो तो सीधा पैरा ला डुबो दो और केरेट ला मस्त धो दो, फार्मालिन बायोस्टीन वाला पानी से मस्त धो दो केरेट ला, और ओमा बढ़िया परत बाई परत 4 इंच लगभग मोटा पैरा डाल दो, उसके बाद में स्पान डाल दो किनारे किनारे समान दो लाइन में, एक किनारे है नी, और फिर पैरा डालो, फिर बीज डालो, फिर पैरा डालो, फिर बीज डालो, इस तरीके से 3 परत बीज आते, 4 परत पैरा आते, और एला जो स्ट्रक्चर बनाए रहो तेमा आप मन पलटी कर देना है, जैसे कि ईटा बनाए पर सांचा में डाल.
2: हाँ हाँ जी. हाँ जी. हाँ मिट्टी की ईटा बनाते हैं
3: इसने, और ऊपर से आप पारदर्शी झिल्ली से ढक देना है, और 10 दिन बाद वाला पैराला झिल्ली से ढक दो, बाहर का हवा अंदर न जाए, अंदर का हवा बाहर ना निकले, उस तरीके से. और 10 दिन के बाद में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को दोनों टाइम खोलना है, तो 11वां 12वां दिन से आपका मशरूम तैयार होके आ जाए, है नहीं भाई? हाँ. तो इस तरीके से पैरा मशरूम किए जाते. और ऑयस्टर मशरूम की बात की जाए तो कुट्टी वाला पैरा लगते, कट्टी पैरा जे लगत हो तो मना है नी.
2: हाँ, बता देता हूँ.
3: हाँ वो जो मशरूम है ओकर बस 100 लीटर पानी में 125 मिलीलीटर फार्मालिन और 7.5 ग्राम बायोस्टीन एकर घोल तैयार करना है, और फिर रात भर पर डूबो के रख देना है, बढ़िया से डूबाना है, हर चारों मुड़ा डूब जाए पैरा. उसके बाद में फिर जो है ना ओला सुबह निथार के साफ सुथरा ढलान जगह पे तिरपाल में झिल्ली में सुखा देओ, और हल्का हल्का सूखना चाहिए, नमी रहना चाहिए, क्योंकि हम फफूंद की खेती करत हैं. मशरूम बोले तो एक तरीके का फफूंद है नहीं भाई?
2: फफूंद है,
3: फफूंद की खेती है, तो एकदम चोरो बोरो पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम फफूंद ला डालत हैं, तो फफूंद जो है ज्यादा पानी होते तो सड़ जाते, तो हल्का हल्का नमी रहना चाहिए उस तरीके से. मैंने कहने का मतलब यह है कि 70% नमी रहे, 30% 30 से 40% सूखा रहे. हाँ उसके बाद में फिर ओला 13x19 या 12x19 ए साइज के झिल्ली पीपी बैग बोलते हैं, पॉलीप्रोफाइलिन बैग, बिना हैंडल वाला झिल्ली, वो में आप मन भर भर के 1-4 इंच करीबन पहले डालना है पैरा ला, ओकर बाद बीज, फिर पैरा, फिर बीज, फिर पैरा, फिर बीज, इस तरीके से. या तो फिर आप मिश्रण विधि के माध्यम से 1 किलो पैरा, सॉरी 10 किलो पैरा पर 1 किलो बीज लगते,

0: किलो पैरा कुट्टी में 1 किलो बीज डाल के बढ़िया से मिला दो, और फिर उसके बाद में आप डालते जाओ झिल्ली में। हवा और सिलवट गैप नहीं होना चाहिए, मस्त ठूस ठूस के नहीं डालना है, हल्का
1: मीडियम मीडियम
0: के आप बढ़िया से सिलेंडर बना लो, और वहाँ 10-12 छेद करना है, काबा की वो ऑक्सीजन चाहिए वाला, हवा चाहिए फफूंद लगा, और 10-12 छेद कर दो, और फिर नीचे ऊपर तो उसमें ज्यादा अगर पानी रुक गई से तो नीचे के छेदा से हवा पानी निथर जाए और ओला ऑक्सीजन मिलत रही। इस तरीके से 28 से 32 डिग्री तापमान वाला रूम में ओला बढ़िया से आप बांध के लटका के रख दो। हैंगिंग सिस्टम जो होते लटकन विधि ओला आप मन यूट्यूब के माध्यम से या तो फिर कोई कृषि महाविद्यालय से संपर्क करके आप देख सकते हो किस तरीके से लटकाए जाते, और आप मन हो वहां से सीख लो, और फिर उस तरीके से आप घर में करो, एक अच्छा उत्पादन करो, व्यापार करो, अपना पहचान बनाओ, है नहीं भाई?
1: सही कहा, बहुत दिन की इच्छा रही घर के।
0: हाँ हाँ, लेकिन एक साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, साफ सफाई, क्योंकि फंगस बैक्टीरिया बिल्कुल पसंद नहीं करे, और साफ सफाई यहाँ खूंदा खांदी नहीं होना चाहिए, जहाँ पैरल सुखा है उस जगह पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है चाहिए, वगैरह ना आ जाए, मुर्गी वगैरह ना आ जाए, उस चीज का ध्यान रखना है नहीं भाई?
1: मुर्गी पाल पे नहीं करना हम।
0: हाँ हाँ
2: ठीक है मनोज भाई, तुम्हारा ये जानकारी तो मिल गई सही, और
1: बहुत मस्त जानकारी, बहुत पोट जानकारी दी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपन मन के बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन इन किसान वाणी?
3: हाँ भैया नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार भाई, कौन बोल रहे?
3: योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बे में तरल।
2: योगेश भाई का काम करते हो आप?
3: हमारे खेती बाड़ी के तो काम हवे भैया।
2: अच्छा, और तुम्हारे साइड में कैसे अभी पानी के कैसे?
3: अभी बिल्कुल भी पानी नहीं गिरे है भैया।
2: हाँ पानी के इस साल तो थोड़े से कमी लगते थे, और हाँ। कि अभी मानसून तो आगे से, मगर
3: हाँ।
2: सही ढंग से पानी नहीं गिरी सी, तो एक रिसी अभी किसान मन वैसे परेशान में है नहीं
3: जी।
2: तो आज के जो कार्यक्रम के जो टॉपिक है ना हाँ। योगेश भाई, और हाँ। ये है मशरूम की खेती, विशेषज्ञ हमारे बीच में अभी बैठे न हुए, और ये सब्जेक्ट या ये विषय के बारे में कुछ सवाल जवाब करना हुई तो आप पूछ सकते हो।
3: तो हम सुने हैं भैया कई ये जन मशरूम की खेती है, एला घर में भी करे जा सकत है का?
0: हाँ जी, मशरूम की खेती भैया ये शेड लिविंग प्लांट है, छाया प्रिय पौधा है, और घर
3: हाँ।
0: भी किया जा सकते, और पेडी मशरूम है जो आप आंगन में भी उगा सकते हो, एक पेड़ के छाया के नीचे भी उगा सकते हो, या तो फिर
3: हाँ।
0: मचान के नीचे भी उगा सकते हो, परंतु ये पूर्ण रूप से छाया प्रिय पौधा है, फफूंद वर्गीय पौधा है
3: हाँ, हाँ।
0: नहीं भाई, तो इला आप मन उगा के एक व्यापार शुरू कर सकते हो। बस एक चीज के चयन करना है कि हमला कौन से मशरूम उगाना है, जैसे हमारे पास मार्केट कौन से मशरूम के है, जैसे ऑयस्टर मशरूम के आपके पास मांग नहीं है, पेडी मशरूम के मांग है, पैरा मशरूम जिला कथे, और ऑयस्टर के तुमन उत्पादन करो तो तुमन तो भटक जाओ भैया, नहीं भाई?
3: हाँ।
0: तो आप मन यही चीज करो कि आप मन की तरफ में तो पैरा मशरूम के ज्यादा चलन है, तो पैरा मशरूम ज्यादा बड़े पैमाने पे उत्पादन करो, और
3: हाँ।
0: पैरा मशरूम के सीजन है, और कुछ दिनों के बाद सितंबर के बाद में कहना चाहिए ऑयस्टर के उत्पादन कर सकते हो बढ़िया बड़े
3: जी, जी।
0: तो अभी पैडी मशरूम के उत्पादन करे वो आप मन पहले करत रहे हो धुन, अभी करना चाहत
3: करे नहीं है ना, इसमें वो तो पैरा वगैरह रखा न।
0: हाँ
3: में इसने जाम जाते
0: हाँ जाम जाते,
3: लेकिन ओला जी से हमला अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण ले करना हवा के कर बारे में।
0: हाँ जी हाँ जी, तो वो चीज ला पैरा ला पहले उपचार किए जाते, क्योंकि वो प्राकृतिक हाँ। रूप से नेचुरली उगते कहना चाहिए, और हम हाँ। एला अगर हाथ से

0: सैंपल तैयार करने के बाद 12 घंटा डुबा दो और उसके बाद में साफ सुथरा हाथों से, साफ सुथरा अच्छा। तिरपाल में या झिल्ली में, पन्नी में, प्लास्टिक सीट में वहाँ आप सुखा दो। हल्का हल्का पानी पूरा निथर जाए, हल्का हल्का सूख जाए, 70% नमी रहे, 60-70% नमी रहे, 30-40% सूख जाए, उस स्थिति में आप उसको एक कैरेट ले लो, सब्जी भाजी टमाटर वगैरह जो लेते नहीं बेचते थे किसने वाला कैरेट का, तो वो कैरेट में एक सरल विधि मैं बताता हूँ। दूसरा तो पहला वाला तरीका है गुच्छा बांधने वाला, गुच्छा बांधने वाला झंझट छोड़ो, कैरेट वाला तकनीक ला अपना हो तो बहुत बढ़िया, 60 कट अच्छा 10 किलो में 5 बैग बन जाते, 5 बेड बन जाते। तो आप मन 10 किलो पैराला निथार के सुखा ले हो वहाँ, फिर बाद में आप छाया जगह लेके आओ और साफ सुथरा हाथों से, साफ सुथरा कैरेट में आप 4 इंच करीबन मोटा परत बिछा दो पहले, उसके बाद में 1-1 चम्मच करीबन आप समूह विधि से वहाँ स्पैनिंग करना है, वहाँ चारों मोड़ा बिखेरना नहीं है, बीजला चुक चुक ले मड़ाते जाना है, 6 जगह, एक लाइन में 3 जगह, एक लाइन में 3 जगह, 6 जगह हो गए। उसके बाद में दूसरा परत फिर डालो पैरा, फिर बीज डालो, फिर पैरा, फिर बीज, इस तरीके से 3 परत बीज आते, 4 परत पैरा आते और ओला बाद में फिर वो आप स्ट्रक्चर बनाए रहो, तो स्ट्रक्चर में ओला ले जाके पलटी करना है और चुक ले उठा देना है और मस्त एकदम कैरेट के साइज के पैरा जम जाते, ओला झिल्ली से तोप दो। 9-10 दिन के अंदर में खोलना नहीं है, 10 दिन के बाद 1 घंटा सुबह खोलो, 1 घंटा शाम को खोलो और खोलने के बाद में फिर हल्का हल्का शाम का टाइम में हल्का हल्का पानी सिंचाई करना पड़ सकते, और वैसे 2 दिन करो कि हम 3रा दिन में आपके पास में सब्जी के रूप में तैयार हो जाए और ओला खा सकते हो, एक व्यापार शुरू कर सकते हो।
1: हाँ तो योगेश भाई अपन ये बात की जानकारी मिल गई सोई, और मनला उम्मीद है कि फोन इन किसान वाड़ी में हमारे विशेषज्ञ के संग बात करके अपन मनला समझ में आगे सोई, तो किसान वाड़ी में फोन करे बर हार्दिक धन्यवाद। हेलो फोन इन किसान वाणी।
2: हेलो फोन इन किसान वाणी।
1: हाँ कौन बोलो तो?
2: ग्राम मावड़ साहब दरबार से गणपत बगल बोल रहा हूँ।
1: अच्छा गणपत दादा, काय काम करवा तु?
2: खेती किसानी है दादा।
1: खेती किसानी करवास? खेती बाड़ी में काय मतलब धान लगा हुआ की और बल्कि फसल दरवास तुम?
2: धान लगावा मारो, जोंदरा लगावा।
1: अच्छा जोंदरा लगा से, तो आमचो लगे तक दादा आज ही आमचो गोटक विशेषज्ञ गिला से मशरूम खेती चो लागुन और ये चो नाम है धनेश्वर सिंह मांझी और ये बेसांग सोत की आम के कसन मशरूम लगाओ सको जैसे फूटू लगावाओ में उन चीज बारे में ये ता आम के जानकारी मेरे से, तो तू तुझ लगे असन का सवाल आसे ये सब संबंध में तो तू पूछ सकिस।
0: हाँ दादा सांग।
2: आले जो कसम खेती कर ले कर पर है ना जानकारी किने के सांगो दा।
0: हाँ दादा, तो असन तो हम जो छाती जो खेती कमानी कर तो वाट ने तो मन दौड़ाई सी जाले खूब अच्छा व्यापार कर तो काजे विचार बना ली सी, मानतर एक थाने एक गोट ने असन आए कि अभी बासन छाती वैसे बासन छाती बोलो बांस बांस फुट बांस झुरमुट में बरसा बेरा फुकवाए तो
2: बांस ने फुकवाए
0: उनके बोलवाए आयस्टर मशरूम 11 जातिया से उता और ये दूसरा है खर छाती, तीसरा है बटन मशरूम बोले सो तो डेंगू छाती असन बीती, चौथा बीती फुटू आए उनके मिल्की मशरूम बोले सो और उनके मंजूर डूडा बोलुक सकू एक हाथ असन डेंग रहे से, तो ये जमा छाती अलग अलग समय ने फूटे से। हाँ तो हमें अभी अच्छा समय अमरली से बरसा बेरा चो खर छाती का ये बीती खर छाती के उत्पादन करते रह जाले हम चो दरभा ब्लाक बाट का जे हम चो बस्तर जिला चो दक्षिण बस्तर बोले तो दरभा ले उन्हीं का ही हो सके, तो हम बाटे 130 मिलीलीटर फार्मालिन डालते आए और नहीं 100 लीटर पानी में और 10 ग्राम डालते आए उनके ये का तो बाविस्टिन बोलते एक ठन फफून नाशी दवाई है और उनके घोल तैयार करते है और फिर घोल तैयार करून भारी ले हुन थाने 10 किलोग्राम साबुत बीती पैरा सहेगा सूखा सूखा एकदम बढ़िया वर्षा पानी में भीजलो बीती नहीं होता रहा से अच्छा छुक छुका साफ दखा दे तो बीती पैरा के यूज करते रहे हुन थाने रात भर का चोपरून संगान रत रहा है कोनी बाटी उपकुन्नी रो एकदम पखना पखनी के हाँ पखना के अच्छा चेपाउन देते रहा और फिर ढापुन पातिल संगाउन देव रत रहा रात भर उनके बाद में बियाने कायनी मान उनके हाथ होता के अच्छा धोन भारी ले उन

0: पक्ने गुचाउन हुनके ढलान जगह ने झिल्ली वगैरह बिछाउन भातिल उता पैराक निखराउन भातिल नितराउन देत्रा पानी अच्छा नितरो हुन्छ बात ने हल्का हल्का सुखान देत्रा हल्का हल्का सुखान भात 30-40% सुखुन रो 60-70% नमी रो उतलो ओल रत रहा से उसने नमी संगाउन भातिले हुन था ने फिर बिजाई करत रहा है मैंने बीज डाल तो काजे मैं सरल तरीका से आगे से केरेट विधि के और केरेट साग सब्जी टमाटर वगैरह धरुआ तो होने के रेट के यूज करता रहा है उनके कायनी मान छुक छुका धोन भारी उन था ने 4 इंच लगभग मोटा पैरा डालता है पहले हूं बाद में बीज के डालता है फिर पैरा डालता है फिर बीज डालता है इसने 3 परत बीज ए दे 4 परत पैरा ए दे उसन थर थर डालून भाती ले हमें उनके हूं स्टैंड बनाउन रोआ नाले बांस वगैरह के हमें बनाउन रोआ रेख हूं रेख था ने आगे झिल्ली बिछाक सकू नाले फिर असने बोले उमठाड़ून भातीले ऊपर झिल्ली ढापून देता रहा है मच्छरदानी चेपाल बिस्तर ने चेपाउन से 4 खुट चेपाउन देता रहा है बाहर जो हवा भीतर नहीं हो भीतर चो लेहरा बाहर नहीं जाओ उसने ढंग चो चेपाउन भातीले 10 दिन का संगाम दे रहा है 10 दिन होली बोलो में 1 घंटा बियाने 1 घंटा सांझ बिरी उनके निखरान भातीले हवा पाउक देता रहा है और हुन चले नान नान नान नानी बटन असन असन ए बाटी असन असन होन भातिल छाती दखा दे दे तो हुन चे बाद ने हुन था ने पानी सिंचाई करो कुमोरिया तराय फिर 1-2 दिन ने तुम्ही काय नहीं मान रांधुन खाओक सकास बीकुक सकास एक ठन आप लोग पहचान बनाओ सकास
1: ये चो काय तो बीज चो करा कहाँ मिले जलता जा
0: ये चो काज बीज अगर संपर्क करा से जाले कृषि महाविद्यालय हम जो शहीद गुंडाथुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर कुमराउंड बोलों से हुंथा नहीं मिलते दे नाले बिलासपुर ले अगर के भी जाए सा जल रायपुर कृषि महाविद्यालय ले एक प्रमाणित संस्था ले चिघेन तराय कोनी चलग ले बल मीसो ले या तो फिर ऑनलाइन आजकाली जमाना चली से ऑनलाइन ने घेन लज बोले एकदम कहाँ चुनी रहा से एकदम मनोबल टूटन जाए दे और तुम्ही निराश हो जा से उदास मुरमुरा हो जा से हुन घाटा नुकसान हो दे तुमके तो हुन नुकसान ले बाज तो काजे एकदम प्रमाणित जगह ले आना कृषि महाविद्यालय होली हम चो सहित कृषि महाविद्यालय जगदलपुर कृषि महाविद्यालय रायपुर या तो फिर बिलासपुर ले एक जन संस्था से हुन थान ले बल मंगाओ सकास अभी आखिरी ने मोचो नंबर दे दे हुन नंबर ने तुम्हें फोन करून बाती ले बीज संस्था चो नंबर के सांगो पुचुक सकास और कमानी गोट के बोले पुचुक सकास से
2: हाँ तो गणपत बगल दादा तो के ये अभी मशरूम मल्ले ने फुटू छाती जोन बोलूं से हमें उनचो जानकारी हम चो विशेषज्ञ धनेश्वर सिंह मांझी सर दिला तो
1: दिला।
2: जानकारी कसन लागली ना
1: अच्छा लागली
2: तो दकनर तू बोले करूप सके और आप लोग संग संगी और असन को नहीं बोलते चो संगी संगवारी मन हो दे उन मन के बोल बुढ़िन भाती ये उत्पादन के तू करूप सकिस है नहीं
1: करूप ले सके और उनके वो सांगे ले तो नहीं बोले कर तो लोग आसा जाले
2: तो ये फोन इन किसान वाड़ी ने फोन कर तो काजे तू के बोले कोई भी धन्यवाद
1: धन्यवाद
2: हेलो फोन इन किसान वाणी
3: हाँ नमस्कार साहब
2: हाँ नमस्कार कौन बोल साहब दादा
3: जी मैं तुलसीराम साहू बोल रहा हूँ खापर खेड़ा जिला रायसेन मध्य प्रदेश
2: अच्छा तुलसीराम साहू जी तो आप क्या करते हैं तुलसीराम जी
3: जी अपन किसानी काम करते और एक व्यवसाय और हमारा
2: जी जी जी और कौन सा व्यवसाय
3: व्यापार करते हैं
2: अच्छा व्यापार भी करते हैं
3: जी
2: और खेती बाड़ी में आप क्या लगाते हैं अभी खेतों में
3: जैसे हमको अदरक लहसुन लगाना उसकी विधि
2: जी जी जी
3: जानना चाहते
0: कहना चाहिए अभी आप कंदवर्गीय फसलों के विषय में जानना चाह रहे हैं तो कंदवर्गीय फसल जो होता है शेड लविंग प्लांट है एक तरीके से छाया माने पेड़ के नीचे हो सकता है क्योंकि भूमि का चयन बहुत जरूरी होता है क्योंकि कंदवर्गीय फसल के लिए थोड़ा सा पथरीला जमीन मुर्मी मिट्टी बहुत अच्छा होता है उसके लिए पहले अदरक लगाएंगे हल्दी लगाएंगे या तिखुर लगाएंगे या अरबी लगाएंगे तो उसके लिए आप पहले तो खेतों की तैयारी करना पड़ता है खेतों की अच्छी जुताई करनी होती
3: जुताई, जी।
0: हाँ जी और उसमें पहला तो चीज है खेतों का किसानों का एक 5 लक्षण होता है बीज खाद पानी दवा उन्नत कृषि यंत्र सही किसानी समय पर एक 5 कृषि के मंत्र बोलता है तो जैसे बीज अच्छा लेना चाहिए बीज रिसर्च ले रहे हैं या देसी ले रहे हैं आप किस तरीके का बीज को यूज करोगे उसके ऊपर निर्भर करता है हाइब्रिड कर ले रहे हैं तो उस तरीके से देख रेख करने की जरूरत होता है रिसर्च बीज बोलोगे तो वो आपका ना हाइब्रिड रहेगा ना देसी रहेगा मध्य आकार का रहेगा तो

0: आपको ज्यादा देख रेख करने की जरूरत नहीं है, और फिर देसी किस्म का आला को तो आप लगा दिए एक सही मौसम पे। तो कंदवर्गीय फसलों को लगाने का मौसम होता है 15 मई से 15 जून के बीच। अभी भी आप लगा सकते हैं, 15 जुलाई तक के बीच का समय भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इसके लिए आप कितना अदरक है, हल्दी है, तो उनको भी आप एक आंख आंख होता है आंख निकालने के बाद में, तो आंख को बढ़िया से काट के निकाल निकाल के आप 1-1 इंच के आसपास का टुकड़ा होना चाहिए उसको, फिर एगेलाल नाम का दवा है, या तो फिर आप नारियल पानी वाला दवाई से थर्माकोल ब्लेड या तो फिर स्टील वाला चाकू का यूज करना है, लोहा चाकू का यूज नहीं करना है काटने के लिए, क्योंकि लोहा चाकू जंग लगा सकता है, थोड़ा घाव कर सकता है। थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप उसको काटोगे, बढ़िया से आप लगा सकते हो और खेती कर सकते हो। करना पेड़ पत्ता पौधों का पत्तों का हरी खाद का यूज करोगे तो बहुत अच्छा उत्पादन देता है और अच्छे से आप लोग खेती कर सकते हो।
1: हमारे पास एक देसी खाद होती है सर, हम बताएं आपको।
0: हाँ जी,
1: जो अपनी गाय भैंस है इनके गोबर होता है।
0: हाँ हाँ,
1: तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मतलब ढोर भी रखते हैं।
0: हाँ,
1: तो उनके गोबर निकलता तो मैं एक कोने में डाल देता हूँ, तो मुझको गोबर हो जाता, गाड़ी दो गाड़ी हो जाता, तो वो सड़ी खाद करके हम वो डालते हैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छी देसी खाद है जी हमारे खापर खिला।
0: अभी रासायनिक खाद वगैरह तो मिल नहीं रहा है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ना वो हमारे रासायनिक खाद हमारे जमीन के उर्वरता क्षमता को खत्म करता है और हमारे जैविक उत्प्रेरक कीटों को खत्म भी कर देता है, जहरीला भोजन भी हमको देता है। तो हम
1: जी सर
0: खाद को छोड़ के जैविक खाद की और जैविक खेती की ओर ध्यान देने की जरूरत है भैया।
1: जी
2: हाँ, तो तुलसीराम साहू जी,
1: जी
2: उम्मीद करते हैं कि आज की जो जानकारी आपको मिली है आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। फोन इन किसान वाणी कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आपको सबको मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार। हेलो, फोन इन किसान वाणी।
3: हाँ भैया जी, नमस्कार।
2: नमस्कार भैया, नमस्कार, कहाँ ले बोलत हो?
3: हाँ, पवन कुमार सेन बोलत हूँ भैया, गंडई पंडरिया ले।
2: पवन कुमार सेन
3: जी, आप मन के जगदलपुर के निमित्त श्रोता हूँ भैया मैं।
2: अरे बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी, कहाँ ले बोलत?
3: गंडई पंडरिया भैया।
2: पंडरिया ले, अच्छा अच्छा अच्छा, और सब बने बने दादा?
3: एक नंबर भैया, आप मन के आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम लोग सुनत किसान।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: श्रोता सुमन सुनथन, किसान वाणी सुनथन, सभी के करीब करीब प्राय सभी कार्यक्रम सुना तो सुन भैया।
2: हाँ, तो भैया अपन का काम करत हो?
3: मैं तो ऐसे मिस्त्री काम करता हूँ भैया, लेकिन मोर संगवारी मन खेती किसानी के तको काम करते।
2: अच्छा अच्छा,
3: ओ मन का फोन उन लगा रहे थे, कुछ जानकारी मिलते वाला हम उम्र तक साझा करे करके बोले रहे थे भैया।
2: चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और आज के जो सब जो विषय है ना पवन,
3: हाँ हाँ
2: भैया, तो आज के जो है वो है मशरूम के खेती के बारे में, है ना? तो हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए और
3: हाँ,
2: ऐसे कोई सवाल हुई मशरूम की खेती से संबंधित तो बिल्कुल पूछ सकता हूँ।
3: हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार भैया। नमस्कार फोन भैया। नमस्कार।
3: हाँ, कहा भैया जिन मशरूम के खेती ना,
0: हाँ,
3: तैयारी कैसे करे जाए, ओकर बारे में का का सावधानी रखना है, और कौन कौन समय में कौन कौन मौसम में ओकर खेती करे जाए, एक बारे में आप मन विस्तार पूर्वक बताओ भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया, देखिए आप बहुत अच्छा सवाल करे हैं भैया, कि मशरूम उत्पादन करे व कैसे प्रकार की तैयारी की जाए। पहले तो पहला चीज है, एक सेड लविंग प्लांट है, छाया प्रिय पौधा है, तो एक मकान का जरूरत पड़ते पहला चीज।
3: जी जी,
0: है नी? आप कितना बड़ा मकान बनावे उतना आप मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। पहला चीज तो आपका आवश्यक जरूरी चीज है मकान। दूसरा चीज है बांस की बल्ली वगैरह, जो आप रेक बना सकते हो या तो फिर मंडप बना के लटका सकते हो, ओकर बांस की बल्ली वगैरह का जरूरत होते। और तीसरा पैरा जेमे हमला मशरूम उगा सकते हैं, धान के पैरा हो चाहे गेहूं का हो, चाहे तिवड़ा, अलसी, चना, मूंग, मटर, मसूर, जो भी हमारे पास में रागी वगैरह है, सूरजमुखी के है, जोंधरा, ज्वार, जरा तिल, ये सभी चीज के पैरा ला हम उगा के, माने सभी चीज के पैरा से हम मशरूम उत्पादन कर सकते।
3: जी भैया।
0: और साबुत पैरा में पेडी मशरूम बोलते हैं, तेला उगा सकते हैं, और कुट्टी वाला पैरा में हम ऑयस्टर मशरूम जेला बांस के झुरमुट में निकलते, बरसात खनी ठंड खनी निकलते, तेल जाना तो शायद जंगल।
3: जी जी भैया। हाँ, जाना हमारे तरफ बहुत निकलते भी है।
0: हाँ जी, तो
3: वो अक्सर सावन भादो में आते मशरूम की।
0: हाँ हाँ, तो वो जो मशरूम ला हम उगा सकते हैं कुट्टी पैरा में, और साबुत पैरा में हम ला हम वो पैरा मशरूम ला उगा सकते हैं।

0: इसमें कोई कोई प्रकार के खाद वाद भी डाले लगते का डॉक्टर साहब?
1: जी नहीं, अभी कोई प्रकार के खाद वगैरह डाले की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन पैराला उपचार करे हमला दवाई की जरूरत पड़ते। वो दवाई आप बिना दवाई के भी उपयोग उपचार कर सकते हो, जो गर्म पानी उपचार है, भाप उपचार है, ये बिना दवाई के हरे। और दूसरा चीज उपचार करे वो चूना पानी हरे। और चौथा प्रकार के उपचार हरे हमार रासायनिक उपचार, जिला फार्मलिन बायोस्टिन नाम का दवाई अथे, फार्मलिन जीवाणु नाशक दवाई हरे और बायोस्टिन फफूंद नाशक दवाई हरे। तो ये दोनों दवाई ला हम यूज करके हम पैरा उपचार कर सकते हैं। बस ये चीज है।

0: कुत्ता बिल्ली या छोटे बच्चे ना चले के ध्यान रखना है। और जब भी बिजाई करबो स्पैनिंग करबो तो वो बिजाई करने के जगह जो है साफ सुथरा होना चाहिए और छाया जगह में स्पैनिंग करना है ना कि धूप
1: जी
0: है नहीं भाई
1: जी डॉक्टर साहब जी
0: और साफ सफाई ही विशेष सतर्कता रखना है, साफ सफाई के ही ध्यान रखना है। अगर साफ सफाई रखते हुए अगर आप स्पैनिंग करोगे उसका पैराल सूखा हो ये सब चीज ला तो आप मतलब बढ़िया उत्पादन कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो चीज है छाया प्रिय पौधा है तो घर के अंदर उगाए जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर आप मन जानकारी दो और आपके जानकारी ले हमारे जिन खेती करते तीन संगी संगवारी तक आप फैला दो हम बात ला।
0: हाँ जी हाँ जी
2: तो पवन किया अपन मन के ये जो गुड बात वही सोई और उम्मीद है कि अपन मनला ये जानकारी के कुछ लाभ मिली और आप अपन संगवारी मनला भी ये जानकारी देहू तो फोन में फोन करे बर अपन मन के खूब खूब धन्यवाद।
1: आप मनला भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया धन्यवाद।
3: हाँ तो दादा दीदी मन तुम्ही बलसनी काही खेती किसानी चो गोट के पूछूक चाहसात तो रोजे मंगलवार 3:30 बजे ले धरून 4 बजे चो मंजी ए नंबर ने फोन करूक सकास। नंबर आय 0778222266। आले तेबे मैं धर्मु फोन इन किसानवाणी कार्यक्रम ले विदा धरे से सपाय के जुहार।

अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसान वाणी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं, जो न्यूजर में लीजिए सुनिए हल्बी लोकगीत। कलाकार हैं सुकलू राम और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

जोनी उजर में आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत, कलाकार थे सुकलू राम और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीलामन काजी गोट। प्रस्तुति है अनीता निर्मल की।

कॉलेज ने दाखिला धरला। सुभाष चंद्र बोस के भारतीय सिविल सेवा चो अफसर बनाओ चाहते रहत। यही काजे कॉलेज चो पढ़ाई पाछे ए मन के सिविल सेवा चो पढ़ाई काजे इंग्लैंड चो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भेजला। ए समय ने भारत ने अंग्रेज मन चो शासन चलते रहे। सिविल सेवा चो परीक्षा ने ए मन के चौथा स्थान मिलली। कई दिन तक ए मन ए नौकरी के करला। मानतर मन ने देश और आजादी भरू रहे तो 1921 ने ए मन ए नौकरी के छाड़ून भारत इला। तो भारत ए उन राजनीति ने उतरला और स्वतंत्रता चो लड़ाई लड़तो काजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शामिल होला। महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास संगे काम करो मुरियाला। ए मन के कई हार जेल जाओ पड़ली। चित्तरंजन दास के ए मन आप लोग गुरु मानते रहो। 1921 ले 1941 चो समय ने ए मन के 11 हार जेल होली। अंग्रेजी सरकार ए मन चो ऊपरे कई मुकदमा चलाला। जेल ने रहुन भाती वाले ए मन आप लोग लक्ष्य ने नी भुलकला और भारत चो आजादी काजे काज करते रला। आजादी चो लड़ाई काजे आप लोग सर्वस्व न्यौछावर करतो असन महापुरुष चो नाव के सुनून आम के गर्व महसूस हुए से। ए मन वीर सैनिक योद्धा महान सेनापति और कुशल राजनीतिक गिरला। ए मन देश के आजादी मिरो एचो काजे खूबे संघर्ष करला। ए मन भारत चो महान क्रांतिकारी रला। गुलाम भारत चो आजादी काजे ए मन आजाद हिंद फौज चो गठन करला। असन तो ए मन कई ठन नारा लिखला। ए मन चो ए प्रसिद्ध नारा आए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और गोटो गाय दिल्ली चलो। तो सुभाष चंद्र बोस जो बाले चुनाव रहे एमिली सेकल और एमन जो बेटी चुनाव रहे अनीता बोस। सुभाष चंद्र बोस के नेताजी और देश नायक जो उपाधि कसन मिरली आल एक जानू। तो पिला मन जर्मन जो तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस के सबले पहल नेताजी बलून रहे। ए जो पाछे सपा ए मन के नेताजी बल्ला। नेताजी संगे संगे ए मन के देश नायक बले बल्ला। सुभाष चंद्र बोस के देश नायक चो उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर देव रहे। स्वतंत्रता संग्राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभातो बीता नेताजी चो 18 अगस्त सन 1945 ने गोटक विमान दुर्घटना ने ए मन चो मृत्यु होली। तो पिला मन दखा तुम मन तो सुभाष चंद्र बोस जो कितलो अच्छा देश ने काय काय काज करला ये गोट मन के तो जान लस। अब पिला मन दखा तुम ही बोले असने नंगत पढ़ा लिखा हुआ और नंगत पढ़ुन भाती आप लोग माए बाप चुनाव के और आप लोग गाँव चुनाव के और संगे संगे आप लोग देश चुनाव के बोले आगे बढ़ावा। तो पिला मन दखा ये गोट के तो सुन लो मंत्र अदाएं तुम मन का जो गोट गीत आन ले से ताले एक गीत के बोले सुनू।

पिलामन काजे गोट कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया गया। प्रस्तुति थी अनीता निर्मल की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है

0: कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणा संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
0: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने

0: ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा

0: लेह, नाशिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates SCG, semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat, to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India, where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे
1: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है
4: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28th फरवरी द सेकंड प्लांट ऑन 31st मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट गिवन द स्पीड विद व्हिच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोस 12 प्लांट्स अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे
3: आज दुनिया भर में भारत की सेमी कंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है
1: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex.

0: गावच जोन संस्कृती रीती रिवाज गावच व्यवस्था तुमची आहे ये बोलते पहिला जाऊन बरी हम समजाऊ तो तब लागू आहे की गावच लोक के नाही हां असं तो आमके कोणी आगे नाही सांगू राहिला लेकिन आम्ही उनी समजते रहो की सरकार चाय बोलते तब लोक के लागू आहे अपने आपने विश्वास हुआ उन गाँव लोग के की नाही हां असं नाम चो आहे तो नाही और लोक के बोलला हो ये तो आम्ही गाँव जबले बोसली तबले तबले आसे जल जंगल जमीन और गाँव चो रीति रिवाज व्यवस्था तबले आसे तब लोग के बोल लागू आहे आम्ही हो नहीं सोचते रहो सरकार चो है बोलते तो तब आम्ही सांगू अथुन मन के बहुत मजबूत लागू आहे विश्वास लागू आहे तब उन मन चालू करूयात की नाही एक कानून चे माध्यम ले आम्ही गाँव चो एक सामुदायिक वन संसाधन जो ना अधिकार है आम्ही धरून दे तब उन मन बोलूया तब आम्ही उन मन के फिर और प्रक्रिया की एक असन करत रहा ये सांगते जाऊ
1: अच्छा हाँ हाँ तो संतु जसन की तू बल्लीस 2018 ले एक आम के मूर कर लास तो अब तक बल्ले ने कितलो असन पंचायत ने एक आम
0: ये तक आमन मंच कर लो भी थी दादा कि 2018 ये तक 60 गांव करीबन आमी सामुदायिक अधिकार दिलालू
1: अच्छा
0: और 100 गांव तक अमरलू से कि ये चो जागरूकता करतोर तो उन 60 गांव ने पत्रक अधिकार दिलालू उन लोग एबे तक 15 गांव तक लोग एबे प्रबंध प्रक्रिया नागे बढ़ला से
1: अच्छा
0: उनचो प्रबंधन कर सो जहाँ जोन गांव 60 गांव के अलावा 15 गांव ने जोन अधिकार मिलिस उन गांव लोग अब जल जंगल जमीन और गांव चो रीति रीति व्यवस्था के बचा तो काजे एक गांव ने ग्राम सभा बसुन उन मन प्रबंधन चो नियम और उन गांव ने खाता खोल तो ग्राम सभा नाव ने खाता खोल तो प्रक्रिया तक अमरला
1: अच्छा हाँ हाँ तो जसन बल्ली से 60 ठान मतलब पंचायत ने होली से सामुदायिक वन धन जो कर्तव्य काजे ये चुका जे बल्ले ने काय प्रक्रिया हो से काय करुक लाय पड़े से
0: सबले पहले दादा ये चुका जे जसन एमन के काय शुरू ले जब आमी दावा प्रक्रिया करतो काजे सहयोग कर लू कि सबले पहले ग्राम सभा बस्तर हुन मन के सीखा लू कि ग्राम सभा बस्तर सबले आगे तो हम चो बस्तर संभाग ने तो ग्राम सभा के पंचायत ले जोड़न दी बात लेकिन पंचायत एक राज्य सरकार या सरकार चो एक एजेंसी है ग्राम सभा जो ना है कि गांव चो खुद चो एक अपने आपने खुन शासन सब शासन उन करते हुए
1: अच्छा,
0: ग्राम सभा तो हुन चीज की हमें सबले पहले हम ये मन के गाँव लोग के समझाते गेलू कि नहीं ये तुम चो गाँव चो तुम ये अधिकार है तुम ही खुद ले एक शासन सौ शासन करू सकास नियम बना सकास तब उन मन के लागली हाँ बोलून ग्राम सभा ने बोसून उन मन सबसे पहले प्रस्ताव पास करवात की ग्राम सभा ने की नहीं हाँ आमच गांव ने जब सामुदायिक अधिकार आम के मिरली तो अब आम उन मन चौथा ने नियम बना का जे हम ग्राम सभा बोसू सबले पहले
1: अच्छा।
0: सबले पहले नियम बना तो तैयारी करवात की गाँव ने आमी सबले पहले लकड़ी का आमी कसन काटुक नहीं देवा उनचो पायल उनचो काजे आई गामी कसन धरुक नहीं देवा उनचो काजे नियम उनके रोकथाम कसन करवा उनचो काजे नियम उनसे पहले फिर शिकार बल हुआ है उनचो काज बल नियम बनवात कि आमी ए शिकार नहीं हो वन्य जीव बाचोत उनचो काज बल गांव ले स्तर ने नियम बनवात और उनचो बाद ने फिर पानी ने बोले काई चीज चो नुकसान नहीं हो
1: अच्छा।
0: चाहे कई लोग मछली मार तो काज बोले दवाई बल डालुआ।

0: ग्राम सभा चो एक समूह या फिर एक गांव चो माध्यम ने इकट्ठा भी कुआ, क्योंकि अभी तक काय हुआ बिचोलिया औने पौने भाव ने धरे सोत तो हूं चो काज बल ग्राम सभा ने बोसुआत और उन चुकाज बोला मैं सांगो कि नहीं असन असन करा बोलते उन मन फिर बोसुन बारी विचार करून एक ग्राम सभा के नाव ने खाता खोल तो काज तय हुआ, क्योंकि कानून ने आसे धारा चार ने ये सीधा सीधा चारिकी ने समिति बनान ग्राम सभा के नाव ने खाता खोल तो
1: अच्छा
0: तो हुन के बोला मैं सांग उलू तो हुन के बोले कर ला कि ग्राम सभा के नाव ने खाता खोल ला जोन खाता खोल ला तो उनके बाद खाता खोलू नियम बल बन ली खाता बोले तो उनके बाद एमन संचालित काजे बोले एक ग्राम सभा बस्तो नियम बनवा कि आम के ग्राम सभा कितलो दिन ने बस्तो रहे तो कई जगह अमन मन दखवा कि 10-15 गांव ने उन मन का एक ग्राम सभा नियम बना ला से कि आम के महीना दिन ने एक हार ग्राम सभा बस्तोर अनिवार्य है।
1: अच्छा
0: तो महीना दिन ने हम काय काय काम होली से और आगे आम के काय काम करते रहे।
1: अच्छा
0: तो लिखित रूप ने उन मन फिर रजिस्टर बोले संधारण करून पूरा सही चीज करून उमन संगात जवात और फिर उन ग्राम सभा बैठ तो काज बल नियम बनाते गेलास।
1: अच्छा
0: तो हुनके बोला मिसा हम गेलो कि यहाँ तू मन मन कर तो असन कर तो रहे बनते तो ये बोले हम चो ये भी तक चो प्रक्रिया ये चल ली।
1: अच्छा अच्छा संतु जसन की थी 2018 ले लगभग एदाय चो 5 साल असन होली हाँ, हो तो बोलो भी काय प्रभाव दिखा दे से ये चो
0: ये भी तक चो दादा अमन मन बल देखो और तुमन मन बल सफाई जाऊ देखो दखा से कि मैं कुछ असन गांव के सांगुक सके जहाँ जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिरलो गांव मिरलो बाजुन गांव जहाँ आगे बोडन बारी सामुदायिक वन संसाधन के प्रबंधन और आपलो हिसाब ने उन मन राखा जागा करुन बारी कर सो तो हुन असन गांव मन प्रभाव देखुक मिरली से जसन ये देखुआ धुड़मा रास जाऊन देखुआ हूँ ता आप लोग गांव ने ग्राम सभा ही सशक्त करून बारे उन मन नियम बल बनान खाता बल खोलून एक आजीविका नागे बढ़ लीस।
1: अच्छा
0: आजीविका नागे बढ़ लीस कसन बल एक पानी आस नाला जो तीरथगढ़ ले घसरू है पानी नाला आसे उन मन पानी के बल सुरक्षित करून साफ सुथरा करून हूँ ता एक बांस छो हमी बोलवा डोंगा बोलवा ले काया किंग असन नाम दिला से उन मन बनान हूँ ताले हूं मन आप लोग आजीविका बल कमा।
1: अच्छा
0: हाँ तो बाहरी लोग खूब विदेश ले बोले सोत खूब बड़े बड़े लोग जाए सोत तो हूँ सन ले जाऊ न देखो बोल सका कि आप मन अगर 30-35 घर आसे तो 30-35 घर लोग के सबके रोजगार मिले।
1: अच्छा
0: आगे हमी हूँ देखते रहो हूं गांव लोग सांगते रहो तो हमी आंध्रा उन बाटे रोजी जाते लेकिन जब ले आम के अधिकार पत्रक मिरली तब ले आम चो गांव चो आजीविका बोला छोले और गांव चो नीति नियम जो ना है व्यवस्था है ठीक ठाक आसे भी तो ये आम के उता देखो मिरली उसनी प्रकार चो तीरिया गांव है एक माचकोट जंगल ने एरियान पूरे उड़ीसा सीमा ने हुता बोल उसनी आए हुता बोल उसनी पानी के ही सुरक्षित कर हनुमान बोले अच्छा ले आजीविका के बढ़ावा दे सो।
1: अच्छा
0: तो जंगल के राखा तराखा कर सो थी उनके संगे संगे एक आप लोग गांव चो आजीविका के युवा वर्ग ने बोले समझ ऐसे कि नहीं अब आमन मन की जंगल के बचान जंगल ले आप लोग आजीविका मई बोले हो उन संग बोले ये चले से अभी तक तो दखा दी ले।
1: अच्छा तो संतु देख तुम चो बंधन जो सामुदायिक अभियान ये जो काम है बोले पूरे बस्तर संभाग ने बोले अच्छा जसन के अभी सांगलिस की कई गांव मन ने पर्यटन चो क्षेत्र ने बोले हन मन के रोजगार चो अवसर मिले से मानतर सरासरी ने बोले ने कोनी बोले पंचायत के बोले ने सामुदायिक बंधन जो अधिनियम चो अंतर्गत ये बना तो काजे तुम चो बाटले कहीं बलुक चाहे रेडियो चो माध्यम ले
0: अगर कोनी गांव अगर बना चाहे से और ये कानून चो माध्यम ने कि एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार धरुक चाहे से तो आमन मन बाटले हर तरीके ले सहयोग रह दे उन्हीं आमी बोलुक चाहूँ से कि गांव ने गांव चो लोग एक जागरूक हो तो आप लोग गांव के ग्राम सभा के जागरूक करो क्योंकि जल जंगल जमीन जो ना है अपन मन गांव बिता चुआ है न कि कोनी सरकार और शासन प्रशासन क्योंकि गांव ही आए जो जब ले गांव बोसली से तब ले आप लोग जल जंगल जमीन के आप लोग संस्कृति के गांव चो व्यवस्था के गांव बीता बचन संगालास उन्हीं का जो कानून बल बले से कि आपन गांव बीता मन ये अधिकार के धरोत और आपन मन जितलो ज्यादा अच्छा लो हुक सके ये अधिकार के धरून प्रबंधन संरक्षण करुन बारी हूँ आप लोग आजीविका बल बढ़ावत और कई अच्छा चीज चाहे पर्यटन हो चाहे पानी ले हो चाहे आप लोग

0: खान पान के बले हो एबे दखवा दखते जाऊं से कि खान पान के बले हम छो आदिवासी छे जोन व्यवस्था है खान पान है उनके अब बाहरी छो लोग बले अपना चाहत क्योंकि उन मन समझ ला कि आदिवासी जीवन ने ही पूरा मानव जीवन
1: आसे
0: उन्हीं का जे एवे बोले कई जगह देखुआ कि जहाँ मंडिया पे जाए धान कुटलो चाउर आए चाहे कोदा कुटकी आए चाहे हरवा दार हो कई जोन चीज आए उन बोले बाहरी चु लोग बोले अब उनके अपना चाहे तो ये अधिकार आए उन्हीं बोले कि जितलो तुम मन छो जीवन यापन बला से जीवन यापन जीवन देखी जीव तो बीत बोला हूं बोल तुम छो अधिकार ही के जितलो ज्यादा बचक सका से उतलो ज्यादा खूब बड़े गांव समृद्ध रहे थे और गांव सुरक्षित
1: रहे
0: तो वन अधिकार कानून उन्हीं आए उन खाली जंगल च बात नहीं करे ना जमीन च बात नहीं करे खाली जल च बात नहीं पूरे गांव च व्यवस्था के मजबूत कर तो काज बात करे से यही काज मैं पूरे गांव लोग के यही जानू संगुक चाहें दे कि जितलो ज्यादा हो सके ये वन अधिकार कानून चो माध्यम ले आप लोग गांव चो जितलो बोल सामुदायिक अधिकार है उनके बना तो प्रयास करो और ग्राम सभा ने बसुन गांव के कसन चलात रहे गांव के कसन प्रबंधन करत रहे ये चो बोले नियम बनान बारी एक संचालित आप लो तरीका करो तब कहीं ना कहीं ग्राम सभा के ये पांच अनुसूचित क्षेत्र ने शासन सौ शासन च बात करे उन्हीं तेवे दखा दे इसे।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमचो रान आमचो जीवना। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
0: नमस्कार। सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है, ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया सी याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
2: कृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ माचलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याप

0: सुबह उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार है। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से

0: जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
1: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं। वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है। यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
0: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ।

0: मेघ मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
2: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, वो बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थी जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में

0: ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है प्रेक्षकत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, और उसमें जो आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है, इसमें बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही है। अच्छा, शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को ठोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बुंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का, सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के कशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देख, ऐसी चिड़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कह लिखते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहु पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात ये है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखिए कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, इस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन ये है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य

0: नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं विवश उड़ने के पंख नहीं होने थे और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी 4 लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसर स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत

को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा।

0: कही भूखे बच्चे अकुलाते हैं। ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहाँ पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी। अपने समय का सूर्य हूं मैं, जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक, हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगत के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवाती।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात की 10 बजे हैं। प्रस्तुत है आदिवासी लोकवाद्य धुन का कार्यक्रम पाड़। वादक कलाकार हैं खगपति और साथी। आइए सुनते हैं परदेसिन माता पाड़ और फिरंता पाड़।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट।

0: एप्रोप्रिएट चॉइस।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

आप सुन रहे थे आदिवासी लोकवाद्य धुन का कार्यक्रम बाढ़। वादक कलाकार थे खगपति और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion.

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं।

किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं।